दोस्तों ये बात याद रखिएगा, भगवान हमसे जो भी लेता है उसे हमेशा कई गुना करके वापस करता है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: संत कबीरदास हथकरघे पर कपड़ा बुनते रहते थे। उनके पास रोज ही कई जिज्ञासु आते थे, जिन्हें तर्कपूर्ण प्रमाण देकर वो कल्याण का मार्ग बताते थे। अपने पास आने वालों को वो दुर्व्यसनों से, नशे से सदैव दूर रहने की प्रेरणा भी देते थे। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु काशी पहुंचे। वो कबीर के दर्शनों के लिए भी गए। उनमें से कुछ चिलम सुलगाकर तंबाकू पीने लगे। कबीर ने साधु से पूछा, तंबाकू के नशीले धुएं में तुम्हें क्या फायदा मिलता है, बताना तो? उसने कहा, कुछ क्षणों के लिए मस्ती में खो जाता हूं। कबीर ने कहा, इस विषैले पदार्थ के कारण तुम अपने शरीर को जला रहे हो। यदि वास्तव में सच्ची मस्ती का अनुभव करना है तो ऊपर वाले का नाम का नशा चढ़ाकर देखो। तंबाकू का विष मन, मस्तिष्क और शरीर को विकृत कर देता है, जबकि ऊपर वाले का नाम, उसका नशा ही कुछ और है। कबीर के शब्दों ने जादू का काम किया और वो साधु फिर कभी ना नशा करने का संकल्प ले बैठा। एक बार एक व्यक्ति ने कबीर से पूछा, सांसारिक प्रपंच में फंसकर भगवान को कैसे याद करें? कबीर ने कहा, जैसे पत्नी पोहर में रहते हुए भी पति के ध्यान में लीन रहती है, उसी तरह मनुष्य सांसारिक कार्यों में जुटे हुए भी भगवान का चिंतन में लगा रह सकता है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिबक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वो भी लाजवाब जमाना था, देश आजाद हो गया था। तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपए लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी ये मलयाली युवती क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फार्म भर सके। वो सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएगी? नए आजाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में भला क्या हर्ज है? एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, ना कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गई, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा? भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए। ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी, फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी? उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं, मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर, रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था। पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी? पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गई, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गई। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई,
अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: परम विरक्त संत राम सुखदास जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मान अपमान की भावना को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है उसे कोई अभाव हो ही नहीं सकता। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न कर लिया, मैं रोजी रोटी जुटाने के लिए इतना व्यस्त रहता हूं कि भक्ति उपासना कर ही नहीं पाता, मेरा कल्याण कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा, आप चार संकल्प ले लीजिए। पहला, किसी का जीना दुखाइए। दूसरा, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा कर दीजिए। तीसरा, सत्य बोलिए। और चौथा, सवेरे शैया त्यागने से पहले और रात में सोने के समय भगवान को याद कर लीजिए। कपट चालाक और छल से दूर रहिए। कपट चालाकी और छल से दूर रहिए, भगवान खुद ही मिल जाएंगे। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, वास्तव में भगवान ने सबको अपना मान रखा है, लेकिन हम अपनी असीमित इच्छाओं के लालच में चलकर झूठ कपट वगैरह की शरण लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि बिना झूठ कपट के सफलता ही नहीं मिलेगी। अब ये भ्रम ही हमारा पतन का कारण है। छल कपटी और दुराचारी को भगवान कदापि सहन नहीं करते, जबकि निर्मल हृदय वाले सदाचारी भक्त भगवान की कृपा के लिए हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: अजमेर में स्वामी दयानंद जी का निर्वाण अर्ध शताब्दी समारोह चल रहा था। देश भर के आर्य सन्यासी और विद्वान समारोह में थे। महान शिक्षा सेवी महात्मा हंसराज जी भी लाहौर से समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। स्वामी सर्वदानंद जी ने कुटिया में कुछ आर्य समाजी संतों को बुलाया और उनसे कहा, स्वामी जी, हम सभी की इच्छा है कि महात्मा हंसराज जी जैसी दिव्य विभूति से संन्यास ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इससे आर्य समाज को बहुत बल मिलेगा। स्वामी सर्वदानंद जी ने उनसे कहा, जिन महात्मा हंसराज जी ने अपना पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार और जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करने के लिए समर्पित कर दिया है, क्या उन्हें आप गेरुआ वस्त्र न पहनने के कारण सन्यासी नहीं मानते? कुछ देर रुककर स्वामी जी ने कहा, केवल कपड़े रंग लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। जिसका मन परोपकार और सेवा के कार्यों में लगा हो वो तो खुद ही सन्यासी हो जाता है। कपड़े रंगने के बाद भी अपना जीवन सेवा और धर्म प्रचार में नहीं लगाता, उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? सन्यासी की वास्तविक व्याख्या सुनकर सभी गदगद हो गए।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड

चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब भगवान के दरबार में एक छोटी सी भक्ति पहुंची। आपने कभी सोचा है भगवान के सामने भक्ति की कीमत होती क्या है? क्या बड़े बड़े फूल चढ़ाने से भक्ति बड़ी हो जाती है, या महंगी पूजा की सामग्री से भगवान ज्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर भक्ति बस भक्ति होती है? आज की कहानी एक ऐसी ही लोक कथा है, वृंदावन के एक पुराने मंदिर की लोक कथा। एक छोटी सी लोमड़ी की, एक पुजारी की, एक सांप की, और एक मोर पंख की। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, भक्ति करने वाला कौन है? शायद भगवान के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि वृंदावन के एक प्राचीन मंदिर में मुख्य पुजारी हर रात ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से चंदन घिसा करते थे। सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते तो कुछ अजीब सा नजर आता। भगवान के चरणों के पास रखा हुआ चंदन इधर उधर बिखरा हुआ होता था, और साथ में एक बहुत छोटे से जानवर के पंजों के निशान होते थे। पुजारी ने सोचा, अरे कोई चूहा मंदिर में घुसा रहा है, और उन्हें लगा कि वो पवित्र चंदन खराब कर रहा है। अब सच जानने के लिए एक रात पुजारी ने हाथ में डंडा लिया और मंदिर के एक कोने में छुपकर बैठ गए। रात गहरी हो चुकी थी, वृंदावन सो रहा था, मंदिर में सन्नाटा था, बस कहीं दूर से हवा की हल्की सी आवाज, और मंदिर के अंदर ठाकुर जी के सामने जलता हुआ एक दिया। तभी खिड़की से एक छोटी सी लोमड़ी अंदर आती है। पुजारी ने जैसे ही उसे देखा, डंडा उठाने वाले ही थे, लेकिन उनके हाथ वहीं रुक गए। और क्यों? क्योंकि लोमड़ी चंदन को बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी, वो धीरे से आई, अपने मुंह में एक छोटा सा तुलसी का पत्ता दबाया, उस पत्ते को चंदन में लगाया, और फिर अपने छोटे छोटे पंजों से भगवान कृष्ण के चरणों में उसे रख दिया। पुजारी बस देखते ही रह गए, जिसे वो अब तक शरारत समझ रहे थे, वो तो पूजा थी। सोचिए जरा, ना उस लोमड़ी को मंत्र आता था, ना उसे पुजारी की विधि पता थी, ना उसके पास फूलों की कोई टोकरी थी, ना कोई बड़ी पूजा की थाली थी, बस एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा चंदन, और शायद बहुत सारा प्रेम। और कभी कभी ना, भक्ति में हमें शायद इतना ही काफी होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अचानक मंदिर के एक कोने से काला जहरीला सांप बाहर निकला। उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी, लोमड़ी ने भी सांप को देख लिया। पुजारी डर के मारे जैसे जम गए वहीं, और लोमड़ी वो सीधा ठाकुर जी की मूर्ति से चिपक गई, जैसे कह रही हो, अब तो आप ही बचा सकते हैं प्रभु,

और फिर इस लोक कथा के मुताबिक एक अद्भुत घटना हुई। ठाकुर जी के मुकुट में लगा हुआ मोर पंख अचानक नीचे गिरा और ऐसे गिरा कि सांप और लोमड़ी के बीच एक दीवार की तरह आ गया। कहा जाता है कि उस मोर पंख से एक दिव्य प्रकाश निकला, सांप पीछे हटा और मंदिर से बाहर चला गया और उसी पल मंदिर में एक बहुत बहुत मधुर बांसुरी की गूंज उठी। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए, वो ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें जैसे एक बात समझ आ गई उस दिन, भगवान के लिए भक्ति का आकार नहीं होता, बस भक्त होता है। भक्त बड़ा हो या छोटा, इंसान हो या कोई छोटा सा जीव, प्रेम और भाव वही काफी है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप उस पुजारी की जगह होते और रात के सन्नाटे में एक लोमड़ी को मंदिर में आके पूजा करते हुए देखते तो आप क्या करते? डंडा लेकर भगा देते या चुपचाप खड़े होकर उसकी सारी प्रक्रिया देखते? और अगर आपको वो मोर पंख गिरते हुए दिख जाता तो क्या आप भी उसे संयोग समझते या ईश्वर का एक इशारा? इस कहानी को हम आस्था की नजर से देखें या एक लोक कथा की तरह सुने, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा और सुंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी बड़ी पूजा, बड़े बड़े चढ़ावे, बड़े बड़े मंत्र, लेकिन शायद सच्ची भक्ति का मतलब बहुत कुछ कर देना नहीं, सच्चे मन से याद करना है। एक तुलसी का पत्ता ही काफी हो सकता है अगर उसमें प्रेम हो और भाव हो। एक छोटी सी प्रार्थना भी काफी हो सकती है अगर उसमें विश्वास हो, और कभी कभी बिना कुछ कहे भी दिल की बात भगवान तक पहुंच जाती है। और शायद इसीलिए वृंदावन की गलियों में भक्ति को समझने के लिए बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी किसी मंदिर की घंटी सुन लीजिए, कभी यमुना के किनारे बैठ जाइए, कभी बांसुरी की धुन में खो जाइए और खुद से पूछिए, मेरी भक्ति में कितना दिखावा है और कितना प्रेम। भगवान को हम क्या दे रहे हैं? शायद उससे बहुत ज्यादा मायने ये रखता है कि हम किस भाव से दे रहे हैं। तो आज की बातें इधर की उधर की ये छोटी सी कहानी, इस छोटी सी बात ने अपने साथ ले जाइए। भक्ति को बड़ा बनाने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल सच्चा होना चाहिए। और हाँ, आपके लिए भगवान से जुड़ी ऐसी कोई छोटी सी कहानी, कोई याद या आस्था का किस्सा है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, मैं कहती हूँ हमेशा वो महसूस की जाती हैं अंदर तक। मैं हूँ आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहाँ कभी एक छोटी सी कहानी में एक छोटी सी बात हमारे दिल में एक बहुत बड़ी सी जगह बना लेती है, बनाती है ना। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सिंटू जो था चुनाव में खड़ा हुआ, उसे सिर्फ 3 वोट मिले। सिंटू ने पुलिस से जेड प्लस की सिक्योरिटी मांगी। पुलिस ने बोला, अबे तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए? सिंटू बोला, जिस शहर में इतने लोग मेरे खिलाफ हैं, वहां तो मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए ना।

0: और अब बातें इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: देश सेवा से कृषि सेवा तक। दोस्तों, कभी मेरी सुबह आसमान की तरफ देखते हुए शुरू होती थी, आज मेरी सुबह जमीन को देखते हुए शुरू होती है। कभी आंख खुलते ही दूर से आती जेट विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, कभी किसी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस एक्टिविटी की आवाज, टेक्निकल चेक्स की हलचल, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की आवाजें और अचानक बजता हुआ सायरन। इन दिनों जब मैं अपने खेत पर होता हूँ, सुबह होती है तो सबसे पहले सुनाई देती है गाय और बैलों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट, हवा में पत्तों की सरसराहट और कभी कभी खेत में चल रहे ट्रैक्टर की आवाज। अजीब लगता है, हाँ थोड़ा तो लगता है, क्योंकि मैंने जिंदगी के 35 साल भारतीय वायुसेना में बिताए हैं और अब मैंने खेती को अपना दूसरा करियर चुना है। जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जैसे मैंने दो बिल्कुल अलग जिंदगियां जी हैं। एक जिंदगी मशीनों और आसमान की थी, दूसरी जिंदगी जमीन और मिट्टी की है। पहली जिंदगी में मैं भारतीय वायुसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियर था। मेरी दुनिया एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम्स और रडार्स के मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस की दुनिया थी। मैं उन लोगों में था जिनकी जिम्मेदारी थी कि जो भी एयरक्राफ्ट और सिस्टम्स हमारे पास हैं, जब ज़रूरत पड़े तब वह ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार मिले। वायुसेना में मशीन केवल मशीन नहीं होती, उसके पीछे एक मिशन होता है और उस मिशन के पीछे आपकी जिम्मेदारी। एक छोटी सी टेक्निकल कमी को भी नज़रअंदाज करने की गुंजाइश नहीं होती। हर इंस्पेक्शन, हर चेक, हर रिपेयर का अपना महत्व होता है और शायद इसी ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई है, काम कोई भी हो उसे पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। मेरे करियर का सबसे यादगार और चुनौतीपूर्ण दौर था कारगिल युद्ध, ऑपरेशन सफ़ेद सागर और बाद में ऑप विजय। उस समय हम केवल अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे थे, हम एक ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा थे जहां हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हमारा काम था अपने एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम्स को ऑपरेशनली रेडी रखना। उन दिनों मशीन्स की एक एक आवाज़ का अपना ही अर्थ था। GPU और जेनसेट्स के इंजन की गड़गड़ाहट सुनकर पता चलता था कि कोई एयरक्राफ्ट या मशीन तैयार हो रही है। टेक्निकल टीम्स अपना काम करती थी, मेंटेनेंस चेक्स होते थे और फिर वही एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम अपने मिशन के लिए तैयार किए जाते थे। मुझे यह एहसास पूरी तरह से था कि मेरी मेज पर किया गया एक टेक्निकल डिसीजन कहीं बहुत दूर किसी मिशन का हिस्सा बन सकता है। और फिर 35 साल बाद अपने रिटायरमेंट के दिन मैंने अपनी यूनिफॉर्म हमेशा के लिए दीवार पर टांग दी। सच कहूँ तो वर्दी उतारना आसान था, लेकिन वर्दी वाली जिंदगी से बाहर आना बहुत मुश्किल था। अगले दिन अचानक सुबह की ब्रीफिंग नहीं थी, टेक्निकल इंस्पेक्शंस नहीं थे, एयरक्राफ्ट रेडीनेस की चिंता नहीं थी, मिसाइल सिस्टम्स के चेक्स नहीं थे। एक ऐसी दिनचर्या जिसमें 35 साल बीत गए थे अचानक बदल गई थी। कुछ समय के लिए लगा जैसे जीवन की आवाज़ धीमी हो गई है, लेकिन शायद जीवन खत्म नहीं हुआ था, बस उसकी आवाज़ बदल गई थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में आई अपनी पुश्तैनी खेती। शुरुआत में यह केवल एक नया काम था, धीरे धीरे यह एक नई जिम्मेदारी बन गया और फिर एक नया जुनून। आज मेरी दुनिया में रनवे नहीं है, मेरे सामने खेत है। एयरक्राफ्ट हैंगर नहीं है, मेरे सामने पशुओं का बाड़ा है। टेक्निकल मैनुअल्स नहीं है, मेरे हाथ में मिट्टी है। और अब मेरी सबसे बड़ी मशीन शायद मेरा अपना ट्रैक्टर है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना मैंने खेती को समझना शुरू किया, उतना ही महसूस हुआ कि वायुसेना और खेती एक दूसरे से उतनी अलग भी नहीं है जितनी पहली नज़र में लगती थी। वहाँ भी तैयारी चाहिए थी, यहाँ भी तैयारी चाहिए। वहाँ हर सिस्टम को समय पर सर्विस करना पड़ता था, यहाँ खेतों की समय पर जुताई, खाद, पानी और देखभाल चाहिए। वहाँ इक्विपमेंट की छोटी छोटी कमी बड़ी समस्या बन सकती थी। यहाँ मिट्टी, बीज, खाद, पानी या दवाई की छोटी सी कमी पूरी फसल को प्रभावित कर सकती है। वहाँ मेंटेनेंस शेड्यूल होता था, यहाँ मौसम अपना शेड्यूल खुद बनाता है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यही है, प्रकृति को आदेश नहीं दिया जा सकता, हमें उसके साथ काम करना पड़ता है। और काम करने के लिए चाहिए एक प्रभावी टीम। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि एयरफोर्स में मेरे साथ हमेशा एक बहुत ही प्रोफेशनल, प्रभावी और कर्मठ टीम थी। और यहाँ भी मेरे साथ बहुत ही अनुभवी, मेहनती और कुशल टीम है, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे कृषि कार्य की उन्नति के लिए पूर्णतः समर्पित है। वहाँ मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ब्रिलियंट सीनियर ऑफिसर्स का गाइडेंस प्राप्त था। और यहाँ मुझे अपने बहुत ही अनुभवी और उन्नत कृषि कार्य में सफल चाचा जी, बड़े भाई, कजिन्स और गांव के बुजुर्ग कृषकों का मार्गदर्शन प्राप्त है। खेती ने मुझे मिट्टी को पढ़ना सिखाया है, कब ज़मीन तैयार करनी है, कहाँ क्या उग सकता है, कब बीज डालना है, कब इंतज़ार करना है और सबसे महत्वपूर्ण, कब कुछ ना करके सिर्फ प्रकृति को अपना काम करने देना है। कभी सुबह खेत में जाकर मिट्टी हाथ में लेता हूँ, उसकी नमी महसूस करता हूँ, पौधों को देखता हूँ, कहीं नई कोपल निकली या नहीं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं, कहीं खाद या पानी की कमी तो नहीं, कहीं ज़मीन को और पोषण की ज़रूरत तो नहीं। अब मेरा काम केवल फसल उगाना नहीं है, अब मैं अपने फार्म लैंड को विकसित कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसे और बेहतर बना रहा हूँ, ज़मीन को समझ रहा हूँ, उसकी क्षमता को पहचान रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ, पानी और मिट्टी के बेहतर उपयोग के बारे में सोच रहा हूँ, पशुओं की देखभाल कर रहा हूँ और एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ खेती सिर्फ उत्पादन ना हो बल्कि एक जीवंत इकोसिस्टम हो। शायद यही इस दूसरी बड़ी पारी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ मैं केवल चीज़ों को मेंटेन नहीं कर रहा, मैं कुछ नया उगा रहा हूँ। वायुसेना में मेरा लक्ष्य था ऑपरेशनल रेडीनेस, यहाँ मेरा लक्ष्य है इंक्लूसिव ग्रोथ। कभी सुबह मुझे जेट विमानों की गड़गड़ाहट जगाती थी, आज सुबह पशुओं की घंटियाँ जगाती है। कभी मशीनों की आवाज़ मेरे दिन की पहचान थी, आज पक्षियों की चहचहाहट है। और सच कहूँ, आसमान की आवाज़ बहुत शानदार थी, लेकिन ज़मीन की यह खामोशी बहुत सुकून देती है। शायद यह रिटायरमेंट नहीं है, यह मेरी दूसरी पारी है। पहले एक पारी देश सेवा की थी, अब एक पारी कृषि सेवा की है। पहली पारी में राष्ट्र की रक्षा, दूसरी पारी में धरती और कृषि की सेवा। दोस्तों, मेरा सफ़र अभी बाकी है और अपनी अंतिम सांस तक मैं यही कहकर इसे जारी रखूंगा, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: देखो भैया, जो गिरने से डरते हैं ना, वो उठने का मजा कभी नहीं ले पाते।

इतनी ऊंचाई कभी मत देना। अटल बिहारी वाजपेयी और इंसानियत की एक खूबसूरत बात। जिंदगी में हम सब ऊंचाई चाहते हैं ना, हमारा नाम हो, कामयाबी हो, लोग पहचाने, हमारा एक स्तर हो। लेकिन एक बार सोचिए, अगर बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर हम जमीन से ही जुड़ना भूल जाएं, तो क्या होगा? अगर पद बड़ा हो जाए लेकिन दिल छोटा हो जाए, अगर हमारे पास पावर आ जाए लेकिन किसी आम इंसान को गले लगा लेने की जगह ही नहीं बचे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत खूबसूरत कविता की पंक्ति कहती है, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ही ना लगा सकूं। यानी प्रभु मुझे इतना बड़ा मत बना देना कि मैं दूसरों को अपनाना ही भूल जाऊं। कितनी अजीब बात है ना। हम भगवान से अक्सर कहते हैं, मुझे ऊंचाई दे, मुझे तरक्की दे, मुझे ये स्तर दे, वो स्तर दे, ये पोजीशन दे। और यहाँ एक आदमी कह रहा है, ऊंचाई देना लेकिन इतनी नहीं कि इंसानियत छूट जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिंदगी के कुछ प्रसंग इस बात को समझने का पूरा मौका देते हैं। उनका एक प्रमाण है, 1957 में जब वो पहली बार लोकसभा पहुंचे, तब वो जवाहरलाल नेहरू के विरोधी पक्ष के एक युवा सांसद थे। उनकी भाषण कला और संसद में उनकी उपस्थिति ने नेहरू का ध्यान खींच लिया। एक बार नेहरू ने उनका परिचय एक विदेशी मेहमान से करवाते हुए कहा, ये युवा आदमी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सोचिए, राजनीति में मतभेद थे, विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन एक नेता ने दूसरे नेता की प्रतिभा को पहचाना, और शायद यही होती थी लोकतंत्र की असली खूबसूरती। विचार अलग होते थे लेकिन सम्मान जरूरी है और अलग कभी नहीं हो सकता। फिर 1977 में वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने। साउथ ब्लॉक के दफ्तर में एक दिन उन्होंने दीवार पर एक खाली जगह देखी। उन्होंने पूछा, यहां पंडित जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी ना, वो कहां गई? कहा जाता है कि उन्होंने उसे वापस लगवाने को कहा और जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट फिर से वहीं लगा दिया गया। अब जरा गौर कीजिए, आप किसी से राजनीतिक रूप से सहमत नहीं हैं, आपने उसकी नीतियों की आलोचना भी की है, लेकिन फिर भी आप उसके सम्मान की जगह बनाकर रखते हैं। यही होता है मतभेद और मन भेद के बीच का फर्क। आप बताइए, आज के समय में अगर आप किसी से बिल्कुल सहमत ना हो तो क्या आप फिर भी उसके अच्छे काम की तारीफ कर सकते हैं? सिर्फ एक बार बिना लेकिन लगाए हुए, वो अच्छा था लेकिन। वो लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है जब हमें अंदर से पता है कि हम सामने वाले की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। हम सबके पास ये लेकिन बहुत जल्दी आ जाता है। शायद असली बड़ेपन की पहचान यही है कि हम ये कह पाए, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। 1984 के दिनों में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख समुदाय के खिलाफ बहुत हिंसा हुई। वाजपेयी जी के रायसेना रोड स्थित घर के पास सिख टैक्सी ड्राइवर्स को निशाना बनाने वाली भीड़ के सामने उनके हस्तक्षेप के प्रसंग कई वर्णों में किए जाते हैं। मिंट ने भी इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने उस समय की हुई हिंसा के बारे में खुलकर बात की। ये बात आसान नहीं थी दोस्तों, क्योंकि कभी कभी भीड़ के साथ खड़े होना बहुत आसान होता है, लेकिन भीड़ के खिलाफ खड़े होकर सही बात कहना बहुत मुश्किल।
और यही सवाल हम सब के लिए भी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी छोटी बड़ी भीड़ें होती हैं, कहीं ऑफिस की भीड़, कहीं परिवार की भीड़, दोस्तों की भीड़, सोशल मीडिया की भीड़, सब एक तरफ जा रहे हैं और हम बिना सोचे समझे उधर ही चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी दिल पूछता है, रुको रुको, कि क्या ये सच में सही है? खुद से पूछो, उस पल अपनी सोच के साथ खड़े रहना शायद वही असली हिम्मत है। 2003 में इराक को लेकर अमेरिका चाहता था कि भारत अपने सैनिक भेजे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी बाद में कहा था कि वो इंडियन ट्रूप्स चाहते थे, लेकिन भारत ने अपनी सहमति नहीं दी और भारत ने इराक में सैनिक भेजने का फैसला नहीं किया। यहां एक और बहुत दिलचस्प बात है, बड़े पद पर होने का मतलब ये नहीं है कि हर बड़े देश की बात मान ली जाए। कभी कभी अपना फैसला खुद लेना भी जरूरी होता है, आखिर हम एक सॉवरन स्टेट हैं। और 2004 के बाद एक और दिलचस्प प्रसंग सामने आता है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वाजपेयी जी से कश्मीर शांति की प्रक्रिया में एक स्पेशल एनवॉय की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। वाजपेयी जी ने वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये बात अपने आप में मायने रखती है कि एक नए प्रधानमंत्री ने अपने पुराने राजनीतिक विद्रोही की सलाह और भूमिका को महत्व दिया। और यहां एक और बहुत खूबसूरत बात निकल कर आती है, लोकतंत्र में विरोध का होना बहुत जरूरी है, लेकिन विरोध को दुश्मन समझना जरूरी नहीं। हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों को विरोधी बना लेते हैं, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, विरोधी, किसी ने हमसे डिसएग्री कर दिया, विरोधी, किसी ने व्हाट्सएप मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया। बस अब इसका चैप्टर यहीं क्लोज। लेकिन शायद हर डिसएग्रीमेंट को दुश्मनी बनाना जरूरी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 93 साल जिए, कवि रहे, सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी वो एक पंक्ति सबसे अलग खड़ी नजर आती है, मुझे उतनी ऊंचाई मत देना कभी कि गैरों को गले ही ना लगा सकूं, क्योंकि ऊंचाई का मतलब सिर्फ ऊपर जाना नहीं होता, ऊंचाई का मतलब है ऊपर जाकर भी नीचे खड़े इंसान को देख पाना, उसके लिए एक नजर रखना, एक नजरिया रखना, एक स्पेस रखना। तो आज का छोटा सा सवाल आपके लिए, बहुत जरूरी सवाल है, आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई चाहते हैं? जितनी मिले मिलती रहे, लेकिन साथ में एक और चीज भी मेरे कहने से मांग लीजिए, दिल में इतनी जगह बनी रहे कि हम अपनों को भी गले लगा सकें और गैरों को भी इंसान समझ सकें, क्योंकि आखिर में पद चला जाता है, तालियां रुक जाती हैं, नाम भी एक दिन सिर्फ किताबों में रह जाता है। लेकिन आपने किसी के साथ कैसा बर्ताव किया, ये बात किसी ना किसी के दिल में हमेशा रह जाती है। मैं हूं आरजे तनुषा, आप सबके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, कि आज की ये बहुत ही जरूरी कहानी। आज की बात इतनी सी थी, ऊंचाई जरूर मांगिए, बस इतनी नहीं कि इंसानियत नीचे छूट जाए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: आजकल के बच्चों से तो मच्छर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है भैया, शाम होते ही घर तो आ जाते हैं।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, जानते हैं जॉन डेवी जी के बारे में। शिक्षा की शरण में जाना मनुष्य होने की सबसे बड़ी शर्त है। वैसे तो शिक्षा सिलसिला है, लेकिन जिंदगी में सोचने समझने की शुरुआत के समय ही शिक्षा यदि शुरू हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अपने गुजारे के लिए हर सुबह अखबार बांटने वाला वो किशोर भी सोने पर सुहागी की तलाश में ही स्कूल जाता था। अमेरिका में तब स्कूली व्यवस्था जर्जर थी, देश गृह युद्ध में ही खर्च हुआ जा रहा था, मास्टर खासे रोष खाए रहते थे। कुछ मास्टर तो हर दम बस कोड़ा था में हाथ साफ करने की फिराक में ही दिखते थे, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो रोज पिटने के लिए ही शायद स्कूल आते थे। 54 गलती पर 16 आने पिटाई मामूली बात थी। हर बार कोड़े से ज्यादा जुबान बरसती थी। सब मानते थे कि चलो शिक्षक हैं तो कड़वा बोल सकते हैं, सीधे सीधे बेवकूफ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब पिटाई होती तब हर कोई बस तमाशा ही देखता। ज्यादातर लोग दूसरे की पिटाई देखकर मंद मंद मुस्कुराते थे, पर उस किशोर को पिटाई की व्यर्थता तब भी समझ में नहीं आती थी। वो सीधा साधा स्कूली किशोर बहुत बचकर चलता था। स्कूल में अच्छे अनुभव कम और बुरे अनुभव ज्यादा मिलते थे। पढ़ना अच्छा लगता था, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, लेकिन स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो हद हो गई, एक गरीब लड़के की जमकर पिटाई हो रही थी। सारे शिक्षक बेचारे लड़के को ऐसे पीट रहे थे मानो गृह युद्ध हो रहा हो। सामंत स्वभाव के शिक्षक अपने अहंकार पर पड़ी हुई किसी मामूली सी चोट का बदला ले रहे थे। पढ़ाई से दूर

दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो लड़का भय से और अपमान से थर्रा रहा था, उसकी सहमी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई सुनवाई नहीं। लड़का बचाव में जब भी मुंह खोलता और मार शरीर पर पड़ती। उस गरीब लड़के की पिटाई पर तब भी लोग मुस्कुरा रहे थे, पर ये संवेदनशील किशोर अंदर ही अंदर रो रहा था। कमजोर था ना, चुपचाप रह गया, क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो वो भी नहीं बचता। स्कूल की ये त्रासद घटना मानो दिल में बस गई। पिटने वाला बच्चा तो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक शिक्षा और स्कूल के प्रति जो सहज लगाव होना चाहिए वो तो कभी नहीं आएगा। दिल में गांठें रह गईं, कभी फिजूल डांट से तो कभी बेरहम मार से। कौन रोके डांट और कौन रोके पिटाई, बस चिंतन की धारा बह निकली। शिक्षक शायद इसलिए पीटते थे कि एक ही बार में सुधार देंगे, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने हमेशा के लिए कितना कुछ बिगाड़ डाला। पिटाई से सुधरने की गारंटी तो नहीं, पर बिगड़ जाना तो बिल्कुल तय है। और ऐसे बिगड़े माहौल में न जाने कितने स्कूल चल रहे हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, अपने चारों तरफ देखिए तो, बच्चों को स्कूलों में घसीट घसीट कर डरा धमका कर लाया जा रहा है। नहीं नहीं, शिक्षा का ये रूप तो बिल्कुल गलत है, एक नया रूप बनाना होगा। उस किशोर ने, यानी कि जॉन डेवी ने, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में ही टीचर बनना मंजूर किया। बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 2 साल में ही एहसास हुआ कि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। स्कूल में पढ़ाते रहने से कुछ नहीं होगा, दार्शनिक बनना होगा, तभी बड़े पैमाने पर लोग बात सुनेंगे और सुधार करेंगे। स्कूल की पक्की नौकरी छोड़कर जॉन डेवी उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में चल पड़े। शिक्षा सुधार के तमाम सुझावों प्रयासों के साथ उन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हम अनुभव से नहीं सीखते, हम अनुभव पर चिंतन करने से सीखते हैं। शिक्षा खुद की कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि क्रिया के चयन के माध्यम से बहती हुई हमेशा बहने वाली चीज है। शिक्षा की दुनिया में उनका नाम गूंजने लगा। वो उसी कोलंबिया कॉलेज में पढ़ाते थे जहां पढ़ने के लिए भारत से भीम राव अम्बेडकर जी गए थे। पूरे 2 साल जॉन डेवी ने अंबेडकर को अपने पास रखा और सिखाया कि शिक्षा ही लोकतंत्र की नींव है। बहुत प्यारे स्वभाव के प्रोफेसर जॉन डेवी की शिक्षा अंबेडकर के बहुत काम आई। अंबेडकर ने बार बार माना कि उन्हें बनाने में जॉन डेवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी अंबेडकर याद किए जाते हैं, जॉन डेवी जी भी ही याद आते हैं। जॉन डेवी 1859 से 1952 तक कोड़े मारने वाले उन शिक्षकों को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए बहुत काम किया, पर अभी भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चे, सारे लोग अभी भी पूरी तरह से शिक्षित और जागरूक हुए नहीं हैं। शिक्षा अभी भी पूरी स्नेहिल हुई नहीं है। एक दिन आएगा जब दुनिया के सभी स्कूलों में सारे टीचर्स कक्षा में आते ही सीधे पढ़ाने नहीं लग जाएंगे, बच्चों को कुछ करने के लिए देंगे और बच्चे कुछ कुछ करते हुए सच्ची शिक्षा पाएंगे।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी, कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। आइए दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो अपने आप में मोटिवेशन का एक स्तंभ बन चुका है। इस गांव से बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। मध्य प्रदेश का कांकड़ी गांव वैसे तो एक बहुत साधारण सा गांव है, पर यहां के आदिवासियों ने इसे हरा भरा करने और गांव की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ने की जो राह अपनाई है वो असाधारण है। काकड़ी गांव सतपुड़ा अंचल का एक छोटा सा गांव है जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कारण वहां बनाया गया था। इसमें बस 34 घर हैं, सभी कोरकू आदिवासी हैं। वो गांव के जयसिंह बताते हैं कि इस बदलाव की कहानी वर्ष 2015-16 से शुरू हुई, जब ये गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विस्थापित किया गया। यहां नए गांव के रूप में बसने के लिए सब तैयार हुए। जयसिंह बताते हैं कि आपसी विचार विमर्श के बाद गांव बसाने की पूरी योजना बनाई गई। सभी लोगों ने मिलकर बैठकों में सब कुछ तय किया। योजना के अनुसार जब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए तो पंक्तिबद्ध मकान बनाए गए, फिर उनके आगे 50 फुट जमीन खाली छोड़ी गई। इन खाली जगहों में दो पंक्तियों में फलदार और छायादार पेड़ लगाए गए। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि जब भी यहां किसी की बेटी की शादी होगी तो उसके ससुराल में दो फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे उसे इस गांव की याद हमेशा आती रहे। पुनर्वास समिति के अध्यक्ष लखनलाल कलमे ने बताया कि हमने वर्षा के पानी की बूंद बूंद को भूजल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यहां के हर घर की छत पर पानी जमीन के अंदर वर्षा जल संचयन पद्धति से डाला जा रहा है, जिससे कि भूजल का स्तर बढ़ रहा है। जयसिंह ने बताया कि उन्होंने जैविक खेती शुरू की, जिससे जैविक अनाज के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता। किसान आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता फाग राम जी कहते हैं कि उनका संगठन हमेशा से ही जंगल बचाने और हरियाली का पक्षधर रहा है। काकड़ी के लोग भी संगठन से जुड़े हैं। ये पहल दूसरे गांव में भी होनी चाहिए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस तरह की पहल बैतूल जिले में श्रमिक आदिवासी संगठन भी चला रहा है, जो बारिश के पहले गांव गांव में हरियाली यात्रा निकालकर पौधे लगाने का संदेश देता है। जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में पेड़ों और हरियाली से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने का एक तरीका है। जैविक खेती में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता ही नहीं, दूसरी ओर मिट्टी भी बेहतर रहती है। ये पहल सराहनीय होने के साथ साथ अनुकरणीय भी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की पहल हमारे ही देश में छोटे छोटे गांवों में शुरू हो चुकी है। क्या हमें थोड़ा और जागरूक नहीं होना चाहिए इस बारे में?

दोस्तों, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम पहचानें कि नेगेटिव चीजें हमारी तरफ आए ही नहीं, और अगर वो आए भी तो हम उन्हें अपने पास आने की इजाजत न दें। सावधान रहें दोस्तों, हमेशा खुश रहें, जोश से भरे रहें। आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ।

ना से ही है हां का अस्तित्व। दोस्तों, कभी सोचा है कि सच को कौन पसंद करता अगर झूठ ना होता, या उजाले की इज्जत कौन करता अगर अंधेरा ना होता? बुराई ना होती तो अच्छाई किस कोने में पनाह पाती? दर्द ना होता तो खुशियों की कद्र कैसे होती? धूप ना होती तो छाह में कौन जाकर बैठता? मृत्यु का भय ना होता तो हमारे जीवन का मूल्य कैसे समझते? इन और इन जैसी तमाम मिसालें गिनाने का मकसद यह है कि जब भी हम सकारात्मक चीजों को प्यार और नकारात्मक चीजों से नफरत करते हैं, तो इस सत्य और तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि नकार से ही सकार की सार्थकता है। अंधेरा प्रकाश को निखारता है, बुराई अच्छाई को मजबूती देती है, दर्द खुशियों को महत्वपूर्ण बना देते हैं। झूठ का होना हमें सच की पहचान, उसका सम्मान सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने की चीजों की पृष्ठभूमि में सुनहरे या पीले की बजाय, अथवा मोती के नीचे सफेद या रुपहले की बजाय स्याह गहरे रंगों के कागज या कपड़ा रखने से वो और ज्यादा चमक बिखेरने लगते हैं। लेकिन जीवन हमें सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही सार्थक बनाना सिखाता है। हम भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में झूठे ना होते तो सच्चे किस बात पर इतराते, बुरे ना होते तो अच्छे किस बात का गुरूर करते। हर नायक को लोकप्रियता पाने के लिए एक अदद खलनायक की जरूरत तो होती है। हर शय अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अपना खलनायक चुन लेती है। हमारी सकारात्मक और नकारात्मक की परिभाषाएं बहुत संकुचित हैं। मोटे तौर पर जो चीजें हमें सुख शांति और लाभ दें वे हमारे लिए सकारात्मक हैं, और जो कष्ट दें हानि पहुंचाएं वो नकारात्मक। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग नकारात्मक में भी सुख पाते हैं और बहुत से लोग सकारात्मक चीजों से भी कष्ट का अनुभव करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दो सापेक्ष चीजें हैं और दोनों की ही अपनी अपनी समयानुसार उपयोगिता है। कई बार हमें उजाले से ज्यादा अंधेरे की जरूरत महसूस होती है। कई बार हम सच की जगह झूठ बोलकर बहुत सी संभावित समस्याओं से बच जाते हैं। कई बार हमें छांव की बजाय धूप का होना ज्यादा उपयोगी लगता है। एक ही बारिश कहीं जीवन का संदेश लेकर आती है, कहीं प्रलय का कारण बन जाती है। जिस कुएं से लोग प्यास बुझाते हैं उसी कुएं में कोई अपनी जान दे देता है। लेकिन यह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक तो वही है जिस रूप में प्रकृति से हमें मिला है। हम ही हैं जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे अपने अनुरूप या प्रतिकूल मान लेते हैं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि नकारात्मकता हमें स्वतः मिलती है, हमें उसे और कहीं से प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम अंधेरे को उत्पन्न नहीं करते, उसे दूर करने के लिए प्रकाश के स्रोत रचते हैं। खुशियों की तलाश में हम ताजिंदगी जतन करने में लगे ही रहते हैं, लेकिन दुख खुद ब खुद हमारी राह में आ जाते हैं। अपनी परिवेश को सुगंध से भरने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन दुर्गंध के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं से घुसपैठ कर ही लेती है। जिस समय हम जीवन में सिर्फ सकारात्मकता चाहते हैं, उस समय जीवन को उसके अधूरेपन के साथ प्राप्त करते हैं, प्रकृति के नियम का निषेध करते हैं। जबकि सच तो यह है कि नकारात्मकता जीवन को संपूर्णता देती है, हमें उसका सम्मान करना सिखाती है। हम नकारात्मकता से कितना ही दूर भागें, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था निर्मित की है कि वो हमें नकारात्मकता को अनदेखा करने ही नहीं देती। जैसे कि कोई मां ये पसंद नहीं करती कि कोई उसके एक बच्चे को दुलार करे और दूसरे का तिरस्कार करे, प्रकृति भी हमारे सामने सकारात्मकता के साथ हमेशा नकारात्मकता परोसने में कभी कंजूसी नहीं करती। इसी व्यवस्था के कारण हम सकारात्मकता को जितना ज्यादा प्रेम करते हैं वो उतनी ही अस्थायी हो जाती है, जबकि नकारात्मकता
ज्यादा स्थायी और निश्चित होती है। सोचिए कि जीवन में ज्यादा सकारात्मक क्या हो सकता है, लेकिन मृत्यु कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, एक ना एक दिन इसका अंत कर ही देती है।

दोस्तों, खुश रहना, उत्साहित रहना, जोश से भरे रहना हमारे अपने हाथ में है। हम ये हक किसी और को कैसे दे सकते हैं कि वो हमारे मूड को जब चाहें बदल दें? नहीं, हमारा मूड हमारा है, हम जोश से हमेशा भरे रहेंगे, ये हमारा वादा है। मैं हूं आपका दोस्त समीर, बने रहिए मेरे साथ। मौन का महत्व। अंग्रेजी में इस कहावत को कि स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन को प्रथम दृष्टया आत्मसात कर पाना जरा कठिन ही है। इसकी वजह यह है कि एक ऐसी दुनिया जहां शब्द, भाषा, वाक्य चातुर्य एक निरंतर फलते फूलते उद्योग के रूप में प्रतिष्ठित है, हम खामोशी की हिमायत भला किस आधार पर कर सकते हैं? लेकिन हमारी संस्कृति में भी एक चुप सौ को हरावे की अवधारणा में विश्वास व्यक्त किया गया है। आखिर क्या है इस चुप्पी का रहस्य जो इसे शब्दों से ज्यादा ताकतवर और मूल्यवान बनाता है? मुझे चुप रहने वाले लोगों का भी सानिध्य मिला है और बड़बोलों का भी, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बड़बोले ज्यादा से ज्यादा आपकी खीज की वजह बन सकते हैं, लेकिन खामोश रहने वालों की चुप्पी आपको तरह तरह से तकलीफ देती है, अपमानित करती है। यूं ही नहीं कहते कि समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कई बार यह इतना लाउड हो जाती है कि आपके कानों के पर्दे फटने लगते हैं। दरअसल शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, मुंह से निकलने के बाद आप उनके दो तीन से ज्यादा अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन खामोशी अपने आप में असंख्य अर्थ लिए रहती है। आप इन अर्थों की भूल भुलैया में उलझकर अपना सुख चैन सब खो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि शब्दों को ऊर्जा नाहक ही कहा जाता है, खामोशी में तो उनसे ज्यादा ऊर्जा भरी हुई होती है। यूं भी कह सकते हैं कि शब्दों में अगर एक चिंगारी जितनी ऊर्जा है तो खामोशी में अणु जितनी। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ही का सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे संजीदा हालात तब पैदा होते हैं जब दोनों आमने सामने आते हैं। कई बार शब्दों को परास्त करने के लिए खामोशी का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार खामोशी को काटने के लिए शब्दों का। राजनीति को ही लीजिए, एक वक्त नेता बोलता है जनता चुपचाप सुनती है, तो एक वक्त जनता बोलती है और नेता को चुपचाप उसकी बात सुननी पड़ती है। खामोशी और शब्द एक ही तराजू के दो पलड़े हैं जो वक्त की नजाकत के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि अगर दुनिया को दोनों में से किसी एक को अपने लिए चुनने को कहा जाए तो उसके लिए क्या बेहतर होगा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहां हम देखते हैं कि प्रकृति ने मौन और कोलाहल दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करके रखा हुआ है। जैसे कि नदियां शोर मचाती हैं, सागर शांत रहता है, बादल गरजते हैं, आकाश अपने मौन व्रत पर अडिग रहता है, पत्तियां खड़खड़ाती हैं, वृक्ष चुप्पी साधे रहते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि खामोशी विशालता की द्योतक है? ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि विशालता चुप्पी की शर्त है या चुप्पी विशालता की जरूरत। पर जहां तक जीवित प्राणियों का संबंध है तो मेरा विचार यह है कि मौन हमारा नैसर्गिक गुण नहीं है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है तो हर क्षण उसका एहसास कराने के लिए शब्द भी दिए हैं, ध्वनियां भी दी हैं। हम बोलने के लिए बने हैं, मौन हमें ओढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि खामोशी का कोई मतलब नहीं। शब्द और ध्वनियां हमें हमारे परिवेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो खामोशी हमें अपने भीतर ले जाने का काम करती है, आत्म साक्षात में हमारी मदद करती है। ध्वनियां और मौन दोनों का अपना अपना महत्व है। खामोशी अगर अप्रिय स्थिति से बचाती है
तो संवाद उस अप्रिय स्थिति से बाहर निकालने में सहायक होता है। अगर आप इलाज से परहेज बेहतर वाली सोच के कायल हैं, तो खामोशी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि दोनों की ही अधिकता समस्याओं का कारक बनती है, इसलिए दोनों के मध्य एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: एकता और ऐश्वर्या,
3: कैसे हो बच्चों?
4: नमस्ते
3: नमस्ते।
4: अरे भैया,
3: आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हाँ, भैया।
3: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
4: नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे।
3: नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। वाह वाह वाह, कितने सुंदर फूल है। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
4: ये ऋचा के बाग के फूल हैं।
3: ऋचा के बाग के
5: हैं? हाँ भैया, ये मेरे बाग के फूल हैं।
3: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
5: भैया हम आपको उपहार देना चाहते थे।
3: अच्छा,
5: आप हमें कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
3: अरे वाह, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
5: ये कौन है भैया?
3: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
6: ए ए
3: ए ए। हाँ शाबाश, ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं, दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं।
5: ए से
3: ए से ए,
5: ए से एड़ी,
3: ए से एड़ी। हाँ तो बच्चों, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एक टक देखती रह गई।
5: ऐसे एकता,
3: ऐसे एकता,
5: एक टक,
3: ऐसे एक टक। शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे। हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है, माली काका मिले ही नहीं।
5: क्यों?
3: बताता हूँ बच्चों, उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत, खाली जगह। तो ए से
6: एकांत,
3: एकांत। शाबाश, ए से एकांत,
5: एकांत।
3: तब बच्चों, ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा,
7: माली काका, आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे?
3: तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहाँ से।
5: माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए?
3: अरे बताता हूँ ऋचा, लेकिन पहले बताओ ए से
6: एकदम।

0: ए से
1: एकदम
0: एकदम शाबाश। तो गुस्से में ऐंठ गए माली काका। ए से
2: ऐठा
3: ऐठना
4: ऐठ कर।
0: हाँ शाबाश
5: भैया। ऐसे ऐसा
6: भैया। ऐसे ऐसे
0: सही कहा तुमने। ए से ऐसे। ए से ऐसा बिल्कुल सही शाबाश। तो बच्चों एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले,
7: अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं। मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ
6: ये तो बहुत बुरी बात है भैया।
0: हाँ बहुत बुरी बात है।
5: मालिक आता दुखी होते होंगे।
0: बिल्कुल होते थे बच्चों।
6: उनको भी इतनी मेहनत करनी।
5: ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
6: मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता।
0: फूल नहीं तोड़ता। फूल
6: फूल
0: शाबाश। तो बच्चों तब एकता ने पता क्या किया।
1: बताता हूँ
6: जल्दी।
0: हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों एकता ने एक पेड़ की डाल पर यह लिखकर टांग दिया।
1: क्या भैया?
0: यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है। और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया।
1: क्या भैया?
0: उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
6: अरे वाह टिकट लगा दिया।
0: हाँ टिकट लगा दिया।
6: की तो कमाई हो।
0: बिल्कुल कमाई हो गई शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ ऐसे
1: ऐश्वर्या।
0: ऐसे ऐश्वर्या। ऐनक
3: ऐसा
0: ऐसा। और ऐसे ऐलान। ऐसे ऐलान। हाँ ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
1: अब लोग टिकट लेने लगे।
0: बिल्कुल सही।
6: माली काका को भी कमाई हो गई।
0: बिल्कुल कमाई भी हो गई।
6: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
0: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा। शाबाश।
6: अब खुश रहते हैं।
0: अब खुश रहते हैं
6: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
0: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ साथ साथ माली काका धन भी कमाने लग गए थे।
6: खुश हो गए।
5: उनके यहाँ चिड़ियाँ भी आने लग गई।
0: चिड़ियाँ आने लग गई।
6: टूरिस्ट आने लग गए। और उनकी फोटो बाहर छप गई।
0: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया। वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक।
8: ए ए

0: एकांत में
1: बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ऐसे एकांत और ऐसे ऐश्वर्या और

0: एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
2: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: तूतुन की रेल छूट गई, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे सभी।
2: अरे लो, आ गए बच्चे, आ गए। नमस्ते, आओ चलो अपने
3: जी। बच्चों आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हम पार्क में खेल रहे थे।
2: अच्छा, तो बहुत मस्ती की होगी तुमने पार्क में, है ना?
3: अच्छा ये बताओ, तुम और कहाँ कहाँ मजे करते हो?
4: झूले पर।
2: अच्छा, और
4: सहेली के घर पे, मामा जी।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ, नानी जी के घर कौन मजे करता है?
4: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
2: अच्छा,
4: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं। और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे। अच्छा। और मेरी मम्मी भी होती है।
3: अरे वाह। भाई वाह। अच्छा बच्चों पता है, तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था जिसका नाम था तूतुन।
2: क्या नाम था?
5: तूतुन।
3: तूतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
2: हाँ, और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
4: मेरा भी मन नहीं करता आने का। मैं तो सर्दियों में जाता हूँ।
3: तो ठीक ऐसे ही तूतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तूतुन नानी के घर गया तो छुट्टियां खत्म होने पर तूतुन की मम्मी ने तूतुन से कहा,
2: अरे अरे बेटा तूतुन, कहाँ हो? चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई, रेलगाड़ी आने वाली है 5:30 बजे, छूट जाएगी, कहाँ हो तूतुन?
3: और पता है बच्चों, 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
2: क्या होता है? हाँ
3: सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 क्या?
5: 5:30।
3: शाबाश,
2: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तूतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
6: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए, छूट जाए।
2: पर अब क्या हो सकता था, तूतुन को तो जाना था। तो तूतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तूतुन के पापा बोले,
7: अरे भाई तूतुन जल्दी करो। अरे 5:15 बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
2: और सुनो सुनो, आगे सुनो। ट्रेन छूटने की बात पर तूतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
8: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
2: तो बच्चों बताओ, क्या तूतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
4: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 निकलनी थी ना। अभी 5:15 ही तो बजे थे।
3: हाँ बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ, 5:30 का क्या मतलब हुआ?
5: 5:30।
3: शाबाश।
2: और 5:15 का मतलब क्या हुआ?
5: 5:15।
2: बिल्कुल सही,
3: इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों तूतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
2: और तब तूतुन के पापा ने तूतुन को बताया,
7: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 बाकी हैं, ट्रेन 5:30 पर आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
4: अब तो तूतुन दुखी हो गया होगा। उसे तो जाना होगा,
9: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
3: अरे नहीं बाबा, सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
2: हाँ क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वही इंतजार करना पड़ा।
9: अरे ये कैसे हुआ?
3: यही पूछने तो तूतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
7: स्टेशन मास्टर साहब ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक, हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
4: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
3: स्टेशन मास्टर ने कहा,
7: सर 5:30 का मतलब है 5:30, असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
3: क्या?
7: सर देखिए, रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17 घंटे 30 मिनट। क्या मतलब?
5: 17 घंटे 30 मिनट।
7: शाबाश।
4: 17 घंटे 30 मिनट काफी अजीब सा लग रहा है।
2: हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17 घंटे 30 मिनट सुनकर ना अजीब लग रहा था।
4: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
2: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
3: हाँ, 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है। जैसे सुबह के 9 बजे
2: और रात के 9 बजे,
3: सुबह के 5 बजे
2: और शाम के
5: 5 बजे।
3: शाबाश। अच्छा, सुबह के 11 बजे शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
4: तो तुतुन की रेल छूट गई थी ना? तुतुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
3: हाँ बच्चों, बहुत मजा आया था। लेकिन अब तुतुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
2: हाँ, और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
3: क्या कहते हैं?
5: 13 घंटे।
3: हाँ, यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे? 13 घंटे। शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
4: 4 बजे हैं।
3: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
4: शाम के 4 बजे हैं।
3: शाबाश गुड़िया, बजाओ इसी बात पर ताली।
2: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
3: बताओ बताओ।
4: 12, 13, 14, 15, 16 16 बजे हैं।
3: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
5: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे।
3: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
2: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
4: 18 घंटे 30 मिनट।
3: वेरी गुड।
2: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
4: 19 घंटे।
3: अरे वाह, शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद।

0: Buka amrud. एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनियां ना टूटें।

0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया, तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी हैं। और कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया, क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई, प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती है। और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना, मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए।
0: तो बच्चों चींची ये सुनकर बोली,
1: लेकिन अमरूद भैया, हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं, हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं?
0: गुनगुन ने पूछा,
1: और शुद्ध वायु कहाँ से लाएं?
0: ये सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमरूद का पेड़ गाने लगा।

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
2: आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लाओ ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: खोलो उसमें निकला बम्बे को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
2: एक दिन का

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना।

0: महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है।
1: भाई साहब आप किस बस में जाएंगे?
2: कौन से नंबर की बस निकली है अभी?
0: संजय पिताजी से पूछता है,
3: बाबूजी अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए।
4: आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं।
3: हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी?
4: हाँ ये तो है।
0: तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है,
5: आप दोनों बीच सड़क से हटकर फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी।
3: आप कौन है?
5: मेरा नाम आदित्य है। आप थोड़ा फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी ठीक है, आओ बेटा आओ, इधर ऊपर आ जाओ फुटपाथ पर।
5: भाई साहब अब आप भी आ जाइए फुटपाथ पे।
6: क्यों? इतने लोग खड़े हैं और तुम हमसे क्यों कह रहे हो भाई?
5: हाँ हाँ, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, आप तो आ जाइए।
6: भैया हम यही ठीक है, आप अपना काम।
5: हाँ आप अपना काम करिए। किनारे थोड़ा किनारे आ जाइए आप। भाई साहब फुटपाथ पे आ जाइए आप। बच्चे अब भी आ जाइए फुटपाथ पे। बहन जी फुटपाथ पे आ जाइए आप।
3: बाबूजी देखिए,
5: ये बहन जी
3: आदित्य भैया एक एक करके सबको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
4: हाँ और कुछ लोग उसकी बात मानकर फुटपाथ पर आ भी रहे हैं।
3: पर वो दो आदमी तो अभी सड़क पर ही खड़े हैं।
4: उस युवक ने उन्हें समझाया था पर वो नहीं माने तो क्या किया जा सकता है।
3: लो आदित्य भैया तो चले गए।
0: तभी एक बस इतनी तेज गति से आई कि पीछे हटने की कोशिश में बीच सड़क पर खड़े दोनों आदमी गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई।
7: अरे ये देखो ये क्या क्या हो रहा है? अरे चोट लग गई।
8: नहीं
7: नहीं कोई उठाओ तो सही है। अरे खड़े रहे खड़े।
4: अरे अरे अगर आपने उस युवक की बात मान ली होती तो ऐसे चोट तो ना लगती।
7: अरे वो भला आदमी तो कितनी बार समझा रहा था मगर यही नहीं माने, अब लग गई ना।

0: संजय स्कूल पहुंचा। वहां अध्यापिका जी कक्षा में पूछ रही थी,
1: बच्चों कल मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रुप बनाकर कक्षा के कमजोर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आपने ऐसा किया?
2: हाँ, मैंने तो किया है।
1: रानी तुम बताओ।
3: बहन जी, मेरे साथी रमेश ने पढ़ाने में कोई रुचि ही नहीं ली, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं पढ़ाया।
1: रानी, ये तो गलत बात है। देखो, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
3: जी बहन जी।
4: बिल्कुल ठीक, जैसे आदित्य भैया आज बस स्टैंड पर कर रहे थे।
1: आदित्य भैया कौन?
0: तब संजय ने अध्यापिका जी को बताया कि बस स्टैंड पर कैसे आदित्य भैया लोगों को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है।
5: भाई साहब।
6: जी, मुझसे कुछ कहा?
5: जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए?
6: मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए
5: जी,
6: लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूँगा सब खत्म हो गया है।
5: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं?
1: अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी, आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पढ़कर, हम तो चलते हैं।
7: रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है।
0: बहाना।
6: उषा जी।
1: जी सर।
6: ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये।
1: सर आज?
6: जी आज।
1: सर आज तो नहीं जा सकता।
6: पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे, तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना?
1: सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता।
6: पर क्यों?
1: सर अभी तो लाइट ही नहीं है।
6: लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं।
1: सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा।
6: पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी।
1: सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी। और
6: क्या?
1: तब तक चाय का
6: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या?
1: सर है तो,
6: पर क्या?
1: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं।
6: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है।
1: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है।
6: चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, चाय या अपनी बारी, किसी का इंतजार मत कीजिए। आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए, क्या ये हो सकता है?
1: हाँ सर, ये तो हो सकता है।
7: काम न करने के इतने बहाने, और काम करने का कोई बहाना नहीं। अकड़ा

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आप हमले रहा है रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नो यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम आप उन खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। तो किसान भाइयों, आप रोज हाजे 6 થી 8 વાગે तक इना कार्यक्रम ने हमलिए से अने आशा भी करी है कि इना कार्यक्रम ना माध्यम थी तमे घनी खरी महत्वपूर्ण जानकारियों हासिल करियो है। अने घणा खरा किसानों ही अपना सवाल भी मोकलाया है, तिनती अमू यूं मानिए है कि अपना किसान भाई कहीं ना कहीं हमारा इना कार्यक्रम थी लाभ ली रहा है। तो किसान भाइयों, आज फिर हम तुम्हारी आगाड़ी प्रस्तुत है, उपस्थित है एक हजू नवू बेहद नवू प्रोग्राम लेने। आज नो अपन प्रोग्राम है कूड़ा थी सूनू बनावानू प्रोग्राम। हाँ किसान भाइयों, की कम आपू जो अपन कसरू है, जो आपू जाता फेंकी दिए हैं, अगर आपू तिना कसरा ने व्यवस्थित रूप थी नाखवा शुरू कर दी, व्यवस्थित रूप से तिना कसरा नो आपू मैनेजमेंट करवा शुरू कर दी, ते आपड़ यू कसरू से जो आपड़ अधिकतर जो अपने रुपया में जो अपने खेतर में जितनी आखिर लागत लागी रही है, जितना रुपया लागी रहा है, तीन आपू कम करी सकी, ना केवल तीन आपू कम करी सकी लेकिन तीन आपू वेसी भी सकी। जेम के अपने किसान भाई जाने हैं, अपने गोबरी खाद कितनों लाभकारी है, हमारे किसान भाई घना खरा किसान भाई असल तरीके थी जाने हैं ना। आजकल वाकिफ से कि खातर वालों खावाती बीमारियों आवी रही, ने अपन अगर पेलखाना जो लोग हता जो गोबरी खातर ना इस्तेमाल करते ना, और हर घेरों में डगरा होतेला है रहतेला रहतेला। तो किसान भाइयों, समय इतना नहीं बदलो है, अब हमें भी ये संभावना है कि आप मनक जो है अपने खेतर में जो अवशेष नकली रो है तिंतु भी आप एक डगरू तो आराम था पाड़ी सकें, लेकिन आर की हमें जरूरत है कि जो दवाइयों आप सारू मारवानी दवाइयों नाखी रहा है, फसलों ने मोटी करवा हरू दवाइयों नाखी रहा, हर जगह आप दवा नाखी नाखी ना अपनी फसलों ने मोटी करी रहा है, तो तेज दवा खाई खाई ने आप शरीर भी कमजोर अने बीमार थातु जाइ रहे। तो किसान भाइयों, आर की आप जरूरत है कि अमोन आपड़ो रख रुख बदलवानी जरूरत है। तो किसान भाइयों, आज ना कार्यक्रम में आप जानिए कि कम तरीके थी आप अलग अलग कचरा नो उपयोग करीन उपयोगी खाद की कम बनावी सकी, ली विस्तृत जानकारी इना कार्यक्रम में।
2: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है जैविक खाद यानी कचरे से सोना। हरित क्रांति से पहले देश में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग खेती में अभी जितना नहीं होता था। खेती का तरीका काफी कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी, लेकिन समस्या ये थी कि इस तरह की खेती में उपज काफी कम होती थी। इतनी कम उपज देश की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में हरित क्रांति की जरूरत हुई। इस क्रांति ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन जल्द ही इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी और पानी को तो प्रदूषित किया ही, उपज को भी जहरीला बना दिया। इसलिए अब ऐसी खेती की बात की जा रही है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हो, लेकिन उपज के मामले में कोई कमी ना हो। जैविक खेती ऐसी ही तकनीकी है। इस तरह की खेती में कंपोस्ट खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। आज के वाद संवाद में हम कंपोस्ट खाद की उपयोगिता और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। जैविक खाद एक तरह से प्रकृति के लिए तेरा तुझको अर्पण जैसी ही है। इस पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर सोमपाल शास्त्री, साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्र, कृषि मंत्रालय में उप आयुक्त डॉक्टर ए.एस. राजपूत,

0: कंपोस्ट एक तरह की जैविक खाद है जो पौधों, पशु अवशेषों, अपशिष्ट यानी कचरे से तैयार की जा सकती है। अपशिष्ट में गोबर, फसल अपशिष्ट या बूचड़ खाना अपशिष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बिना छटाई का घरेलू कूड़ा करकट या सीवर साफ करने वाली इकाइयों से निकलने वाली गाद भी कंपोस्ट खाद बनाने के काम आती है। इन सब चीजों को धीरे धीरे सड़ाकर कोई भी किसान कंपोस्ट खाद तैयार कर सकता है। कंपोस्ट खाद मुख्य रूप से 6 तरह की होती है। ग्रामीण कंपोस्ट गोबर या खेती के कचरे से तैयार की जाती है। शहरी कंपोस्ट शहर की गलियों से निकलने वाली गंदगी और कूड़ेदान के अवशेषों से बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से तैयार होती है। नडेप कंपोस्ट मिट्टी, फसल अवशेष और गोबर से बनाई जाती है, जबकि संवर्धित कंपोस्ट रॉक फॉस्फेट या यूरिया के संवर्धन से तैयार की जाती है। अब सवाल उठता है कि कंपोस्ट खाद जरूरी क्यों है? दरअसल इसके कई फायदे हैं। इसमें 12-15% के बीच कार्बन होता है, जो पौधे की बढ़वार के लिए बेहद जरूरी है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में ज्यादा देर तक नमी बनी रहती है, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, पौधों को लंबे समय तक पानी भी मिलता रहता है। कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से उर्वरक का पौधों पर असर बढ़ जाता है। ये मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है, यानी मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाता है। इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये कूड़ा करकट जैसी बेकार और प्रदूषण फैलाने वाली चीज को भी उपयोगी बना देता है।
1: तो रिपोर्ट में देखा आपने कि कंपोस्ट खाद किस तरह से तैयार किया जा सकता है और उसकी क्या उपयोगिता है। आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले पूर्व कृषि राज्य मंत्री डॉ. सोमपाल शास्त्री जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हरित क्रांति जो समय की मांग थी, उस समय रासायनिक खाद थी और उसका इस्तेमाल भरपूर किया गया, लेकिन इसकी कीमत किस हद तक मिट्टी और पानी ने चुकाया है और कितना नुकसान हुआ है इससे?
2: जिस समय में कृषि मंत्रालय का प्रभार संभाल रहा था, उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत की गई थी
1: जी।
2: उसमें ये बात आई थी सामने कि जितने हरित क्रांति के तथाकथित अधिक उत्पादन के क्षेत्र हैं भारत के, उसमें 16 मिट्टी में उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 9 मुख्य हैं
1: जी,
2: जिसमें पहला नाइट्रोजन, फिर फास्फेट, उसके बाद पोटाश, उसके बाद मोलिब्डेनम, फिर सल्फर, फिर जिंक, फिर फेरॉन, फिर मैग्नीशियम और बोरॉन। ये 9 के 9 दीर्घकालीन दृष्टि से उनमें गिरावट आई है।
1: अच्छा।
2: और नाइट्रोजन की अधिकता हो गई है। उसके कारण एक तो ज्यादा कीड़े और परजीवी फसलों को और उनके ऊपर बीमारियां लगने लगी, दूसरे उससे सारी जितनी भी खाद्य श्रृंखला है जो आपने बात कही, उसमें विषैले तत्वों के अवशेष इतनी मात्रा में हो गए, तरह तरह की बीमारियां आने लगी
1: जी।
2: तो मिट्टी की जो प्रोफाइल थी, जो उर्वरकता थी, जो तत्व उसमें आवश्यक थे उत्पादन के लिए, वो घटे और नाइट्रोजन की बहुतायत हो गई, फास्फेट की भी हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि नाइट्रोजन तो नुकसान करती है पर फास्फेट नहीं करती, परंतु ये भी मिथ है, ये भी गलत है।
1: अच्छा।
2: फास्फेट के जो रेजिड्यू हैं, जितना वो दिल के ऊपर और शरीर की संरचना के ऊपर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, वो नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। नाइट्रोजन के कारण आपके जोड़ों के दर्द बढ़ना, आपकी कार्टिलेज स्टिफन होनी, आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस, आपके किडनी, गुर्दे और लीवर, सब चीज उससे खराब होती है। और ये बीमारियां ज्यादा आने के कारण कीटनाशक और परजीवी नाशक जो रासायनिक विषैले पदार्थ हैं, जिसे स्प्रे करके डालते हैं
1: जी।
2: आप आश्चर्य करेंगे कि सरसा, अबोर, फाजिलका, फरीदकोट, भटिंडा और गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो इलाका है और उधर नागपुर का जहां कॉटन कपास उगाई जाती है, 27 स्प्रे करते थे उनके ऊपर
1: जी।
2: और मालवा का

0: रीजन है पंजाब का जो सबसे तंदुरुस्त माना जाता था हिंदुस्तान में, पंजाब का इलाका, एक एक गांव में 250 से 500 कैंसर के मरीज हैं। और एक रेल है जो भटिंडा से बीकानेर जाती है, उसको वहां कैंसर ट्रेन का नाम दिया जाने लगा, ये बात सब जानते हैं। तो ये इतने सारे उसके दुष्प्रभाव हुए हैं, इससे जितना जल्दी बाहर आया जाएगा, एक समय लगा था कि उससे फसल का उत्पादन बढ़ा, परंतु फसल के उत्पादन के साथ जहर का उत्पादन भी बढ़ा, उसके साथ पानी भी प्रदूषित हुआ, उसके कारण जो सूक्ष्म जैविक संरचनाएं थी, जो माइक्रोब्स थी, जो इन उत्पादक पदार्थों को खाकर और बारीक करते हैं, वो पौधे में ऊपर चले जाते हैं, उनकी संख्या भी घटी है, वो सब मर गए इन जहरीले पदार्थों से। तो ये इतने दुष्प्रभाव हुए हैं, बड़ा भयावह स्थिति पैदा हुई है, उससे जितना जल्दी बाहर निकला जाए उतना बेहतर है। और एक बात आपने जो कही कि उत्पादन कम होता था, ऐसा नहीं है। तंजौर का और उत्तर भारत का, अल्बर्ट हावर्ड की एग्रीकल्चर टेस्टामेंट ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए आप, इतना उत्पादन विश्व में कहीं नहीं होता था। अगर जैविक सामग्री जमीन में जितनी आवश्यक है, जितनी आपने निकाली, और फसल चक्र आपका उचित है, जिसमें कभी दलहन की फसलें, कभी अनाज की फसलें, कभी गन्ने की, कभी कपास, ऐसे अदल बदल के और खेत को खाली करके रखें, तो कम लागत में इससे बेहतर और ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन हो सकता है। ये बड़ा भारी वैज्ञानिकों ने गलत फहमी फैला दी है कि इससे उत्पादन घटेगा।
1: बिल्कुल, तो खाद्यान्न की जो जरूरत थी उसे देखते हुए शिवादर जी, रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ एक वक्त पर, कब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि अब बहुत हो गया, दुष्परिणाम बहुत ज्यादा अब सामने आने लगे हैं और अब जैविक खेती का रुख किया जाए?
2: सबसे पहले ये देखा गया कि पहले शुरू शुरू में जब हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया तो लगा कि बहुत तेजी से पैदावार बढ़ रही है और ये लगातार टिकाऊ रहेगी, लेकिन 80 के दशक के बाद ये देखा गया, 80-90 के बीच में, कि धीरे धीरे जो हम जितनी नाइट्रोजन या जितनी भी ये उर्वरक डालते थे उसके तुलना में उससे दूनी भी डालने पे उतनी उपज नहीं बढ़ी
1: जी।
2: इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब हम जितनी पहले डालते थे, लागत लगाते थे, उससे दोगुनी लागत लगाने पे भी हमें उतनी बड़ी हुई उपज नहीं मिली,
1: नहीं मिल पाई।
2: तो तब से हमें लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसमें जो जो मुख्य कारण ये था कि हमारे किसान भाइयों ने 2-3 तरीके के ही पोषक तत्व प्रयोग किए, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रयोग किया, उसके बाद फास्फोरस कहीं कहीं प्रयोग हुआ और पोटास भी कहीं कहीं किसान भाई प्रयोग करते थे। अब पौधे को तो 16-17 तत्व चाहिए, अब 17 आजकल हो गए हैं एसेंशियल, पौधे को तो उतने चाहिए चाहिए, और हमारी जमीन में जो मौजूद थे उस नाइट्रोजन और उसकी तो भरपाई आपने कर दी, अलग से दे दिया, लेकिन जो बाकी पोषक तत्व थे वो भी तो जमीन से निकले, तो माइनिंग हुई, मतलब जमीन में कम हो गए और धीरे धीरे जो संतुलन था एक वो बिगड़ता गया। तो हमारा जो पोषक तत्वों का जो जो पौधों को मिलते थे संतुलित रूप से, वो मिलने बंद हो गए और उससे ये उपज घटनी शुरू हो गई, क्योंकि 16 में से अगर एक भी पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगा तो उपज घटेगी, तो इसके कारण घटने लगा और गुणवत्ता में भी कमी आने लगी।
1: तो एसपी सिंह जी, जैसे कि बता रहे हैं शिवाधर जी, 80 के दशक के बाद दुष्परिणाम जिस तरह से सामने आने लगे, उसके बाद के सरकारों ने किस तरह का प्रयास किया है इस दिशा में कि जैविक खेती को अब बढ़ावा दिया जाए?
3: अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एलेबोरेट किया और सोमपाल जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से पुराने इतिहास को पूरा दोहराया। और खेत की स्थिति क्या है, मिट्टी की, सॉयल का हेल्थ किस तरह से डाउन गया है, मिट्टी कैसे बीमार हुई है, इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो सबसे पहला काम किया कि कैसे खेत की सेहत सुधारी जाए।
1: बिल्कुल,
3: इसलिए पहले उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की बात है, पहले इसकी जांचो, पता करो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आज का जो चर्चा का विषय है कि इसमें कंपोस्ट खाद की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, बाकी चीजों लोगों ने बता दिया है भाई, तीन चीजें प्रमुख होती है मोटा मोटी, नत्रजन, पोटास और फास्फोरस, जिसका प्रयोग किसान भाई खूब जोर शोर से करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि बढ़ रहा है रासायनिक खादों का प्रयोग, बढ़ने के बाद भी हमारा प्रोडक्टिविटी हमारी घट रही है, बढ़ नहीं रही है जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए। पहले अगर हम 10 किलो डालते थे कोई चीज तो उससे प्रोडक्शन अगर हमारा 100 किलो होता था, और आज हम जब डालते हैं तो प्रोडक्शन 1/3 भी नहीं होता। उसकी वजह यही है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम आप किसानों को समझने के लिहाज से बताएं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई दवाई अगर हमें किसी इलाज के तौर पर देता है तो उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर विटामिन के गोलियां भी दी जाती हैं, विकासूल की, फला की, ढेका की, इसलिए दी जाती है ताकि वो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है बॉडी के अंदर खत्म हो रहा है वो उसको हो जाए। यही स्थिति कमोबेश जमीन की भी हुई है। जमीन के अंदर से अगर आप पर हेक्टेयर या पर एकड़ 12 टन 20 टन आप निकालते हैं, आप भूसा, अनाज, जितना चीजें निकलती हैं उसी रेशियो में उसमें जाना चाहिए। हो क्या रहा है कि हम अपनी खेती काटते हैं, खेती काटने के बाद उसमें से जो निकलता है उस रेशियो में ना हम गोबर डालते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कार्बन की कमी आ रही है। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ी कमी आई कार्बन, कंपोस्ट की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है पूरे इस रीजन में, जिसमें पहली हरित क्रांति आई उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब, इन स्टेट्स में सन 70 से पहले 1970 के पहले तक 0.5% कार्बन कंटेंट हुआ करता था। कार्बन मीन्स वही गोबर की खाद, ये जो कंपोस्ट खाद की जिसकी बात की, जिसके चलते 17-18% तक कार्बन मिलता है। कार्बन घट के आज की स्थिति में यह हो गया है कि 0.2% तक, अलार्मिंग, मतलब यह खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। आज देश का सबसे उपजाऊ इलाका कहा जाता है पंतनगर का इलाका, आज स्थिति, मैं अभी डॉक्टर मंगला राय से बात कर रहा था आज सवेरे ही इस पर चर्चा करने से पहले, डॉक्टर साहब इसमें क्या हुआ है, तो बोला पंतनगर की स्थिति यह हो गई है कि वहां पर 0.7-0.8% तक कार्बन कंटेंट हुआ था, आज वो घट के हो गया है 0.5%। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और पूरे नॉर्दर्न रीजन में, सॉरी ईस्टर्न रीजन में हरित क्रांति की घोषणा की गई है तो इसके लिए क्या होगा। तो उन्होंने कहा साहब वहां का कंटेंट 0.5% से आगे नहीं है और ये अलार्मिंग पोजीशन है, किसी भी हाल में अगर मिट्टी को स्वस्थ बनाना है तो 2% तक,
1: ऐसे में
3: 2% तक कार्बन कंटेंट होना चाहिए। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, और वो तब बढ़ेगा जब आप कंपोस्ट खाद डालेंगे और जो उसके निकाला जाता है जितना मिट्टी से उसी रेशियो में आप मिट्टी में डालेंगे।
1: बिल्कुल, तो इसके लिए किसानों को प्रेरित करना होगा राजपूत जी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है और आर्थिक सहायता भी क्या किसी तरह की मिल रही है इसके लिए?
4: जी मोनालिसा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जैसे कि शास्त्री जी ने बताया इससे पहले कि मैं क्या क्या आर्थिक लाभ किसानों को दिए जा रहे हैं, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात है। संस्कृत में अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम वनोधम, यत्र तत्र दुर्लभ वस्तु, इसमें इसका सार छुपा हुआ है। संसार में ऐसा कोई, इसका जरा सा मैं भावार्थ बताऊं आपको, संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसे मंत्र ना बन सके, संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसके अंदर औषधि गुण ना छुपे हों, इसी तरह से संसार में ऐसा कोई किसान या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ना छुपी हों। हमारे किसान भाइयों ने खुद बहुत सारे काम, अगर आप देखें तो जैविक खेती के लिए बहुत सारे काम किए गए। मैनेजमेंट की जरूरत है, जैसा कि सर ने बताया, जैसा कि बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां भी हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको लेके स्कीमें बनाई, जैसे खासतौर पे आप बात कर रहे हैं, हम जिसके सिटी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं हम, जो तो सिटी कंपोस्ट के लिए 1500 रुपए पर टन की प्रावधान है। इसके अलावा और भी कंपोस्ट हैं, स्पेशली जैसे बर्मी कल्चर हैचरीज, बर्मी कंपोस्ट के लिए, बर्मी कंपोस्ट से अच्छी कोई कंपोस्ट नहीं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंपोस्ट हैं, फास्फोरिज कंपोस्ट, जो ICR ने और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोगों ने कुछ ITKs भी डेवलप किए हैं जो किसानों के साथ मिलकर किए गए। तो सरकार इसी तरह की योजनाओं में अभी लगी हुई है। अभी परंपरागत किसी विकास योजना के अंतर्गत भी बहुत सारा प्रावधान है इसमें, उसमें लिक्विड बायोफर्टिलाइजर से लेके और इस तरह के कुछ ITKs बॉटनिकल एक्सटेट के लिए भी हम लोग उनको फंड यानी कि सहायता राशि दे रहे हैं। फिर अभी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट में भी पूरा किसान के प्रोडक्शन से लेके उत्पादन से लेके उस सब के लिए प्रावधान रखा गया है
1: जी। यानी कि सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। शास्त्री जी हमें बताएं जरा, जिस वक्त आप कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे उस दौरान किस तरह के प्रयास इस दिशा में हुए और तब से लेकर अब तक आप कितनी प्रगति इस क्षेत्र में देख रहे हैं की हुई है?
5: दो मुख्य प्रयास हुए थे उस समय। एक तो हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जैविक कृषि की आवश्यकता, उसके लिए तकनीकी उपाय और उनको आर्थिक दृष्टि से लाभ कर कैसे किया जाए, उसके लिए एक समिति बैठाई थी, उसकी रिपोर्ट आई
1: जी।
5: वो कुंवर जी भाई जाधव एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका पढ़कर आए थे, गुजरात के रहने वाले थे, उनकी अध्यक्षता में, और उस रिपोर्ट को लिखने में मैंने भी अपना बहुत सक्रिय सहयोग दिया था
1: जी।
5: वो रिपोर्ट आई, उसमें एक संस्तुति की गई थी कि एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान की हमारी जो व्यवस्था है ICR सिस्टम, उसी के तहत एक केंद्र स्थापित किया जाए जिसमें हमारे अधिकारी भी रहे हैं। उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि का राष्ट्रीय केंद्र जो गाजियाबाद में स्थापित हुआ है। मेरा मन उसको गाजियाबाद में स्थापित करने का नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिकों की भी ये प्रवृत्ति हो गई कि वो भी बाबुओं की तरह काम करें, मुझे क्षमा करेंगे आप दोनों। हम चाहते थे कि वो कहीं दूर किसान के खेतों के बीच में हो, इतनी जमीन हो कि उसमें वो प्रयोग वहां करके दिखाए, वहां जाइए, एयर कंडीशन रूम बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई है, और अगर प्रयोग की बात करें तो सिवाय टीवी के और वो दूसरे की प्रस्तुति के कोई व्यावहारिक वहां उसका प्रयोग नहीं है। तो फिर भी वो एक बना, 100 करोड़ उसके लिए निर्धारित किया गया। मैं फिर योजना आयोग का सदस्य बना, वहां भी उसको हमने समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया। वो केंद्र काफी अच्छा काम कर रहा है, सभी राज्यों को उसमें ला रहा है, राज्य सरकारों की उसमें, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में इस विषय के ऊपर प्रतिबद्धता रही है सभी स्तरों के ऊपर, उनके जो आनुषंगिक संगठन है उसमें भी और पार्टी में भी, ये एक सुखद बात है। परंतु कोई बहुत विशेष प्रगति अभी नहीं हो पाई।
1: अच्छा,
5: जैसे शहरी कूड़े की बात है तो एक छोटी बात आपको बताऊं, जब मैं उपाध्यक्ष था सरकारी योजना आयोग का मध्य प्रदेश शासन का, तो उस समय ने प्रस्तावित किया था कि भोपाल जैसे शहर में, और उसकी भी एक तो जहां सरकारी अधिकारी रहते हैं चार इमली और एक बहुत पॉश कॉलोनी है अरेरा, उन दो में हम प्रयोग करें,
1: ठीक है,
5: कि डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को घर के स्तर के ऊपर छांट दें
1: जी।
5: उसमें जो डिग्रेडेबल मटेरियल है जिससे खाद बन सकता है, उसका एक सप्ताह या महीने में हमको अंदाज हो जाएगा कि यहाँ से 50 टन रोज निकलता है, 30 टन रोज निकलता है। उसके शहर के बाहर जो परती जमीन पड़ी है पहाड़ी, जहाँ कुछ कोई चीज पैदा नहीं होती, वहां गड्ढे बनाए जाएं, और इस तरह के अब आजकल हमारे पास जैविक पदार्थ हैं कि 15 से 30 दिन में उसका खाद डिकम्पोज होके बन जाता है, तो उसको रिले में डालें, तो शहर के सारे कूड़े का प्रबंध हो गया, और किसानों को वहां छोटा 50, 51 या 100 रुपया का एक टोकन ले और वो वहां से भर के ले जाए।
1: अच्छा।
5: तो वो जगह भी, ये जो कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं दिल्ली में, गाजीपुर में आपने देखा, बादली में देखा है, सारा पानी खराब कर दिया, इसका स्थायी निदान हो जाएगा और किसान की रासायनिक उर्वरक के ऊपर निर्भरता न्यून हो जाएगी। और खेती में ये जो 16 तत्वों की चर्चा की मिश्रा जी ने, आपको आश्चर्य होगा कि गोबर की खाद अकेली ऐसी है जिसमें 17 के 17 तत्व उतने ही मात्रा में अनुपात में पाए जाते हैं जितनी जमीन को आवश्यकता है, और किसी रासायनिक की जरूरत ही नहीं है।
1: बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद जैविक खाद बनाते हैं, आइए उनसे भी जरा बात कर लें। हमें बताएं कि आप में से कौन कौन जैविक खाद बनाते हैं खुद, बहुत अच्छी बात है, और किस तरह बनाते हैं, क्या है आपका अनुभव, कुछ बताएं।
6: मैंने वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जैविक खाद
1: तैयार किया है
6: और एक बार नेडप के द्वारा भी किया है।
1: अच्छा।
6: नेडप में ज्यादा हमें जो मिलती है उस ऑर्गेनिक जो तत्व है उसके, नेडप के द्वारा जो तैयार खाद करी जाती है उसमें ज्यादा तत्व मिलते हैं।
1: अच्छा, ये कैसे आपने किया, जानकारी कहाँ से मिली, क्या कोई प्रशिक्षण भी लिया?
6: हाँ जी, कृषि विभाग के द्वारा प्रशिक्षण लिया था जिला स्तरीय, और उन्होंने ही हमें राज्य से दूसरी जगह भी भेजा है जहाँ पे हमने प्रशिक्षण लिया है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर और भी किसान मौजूद है, उनका भी अनुभव हम जान ले। जी बताएं।
7: ये नेडप तो करते हैं हमने, जो है 2009 में
1: जी
7: हमने राइस में हमारे में दिक्कत आई थी बहुत ज्यादा।
1: अच्छा।
7: मतलब धान की फसल में, तो उसमें जो बकाणी रोग लगा था हमारे वहाँ।
1: अच्छा।
7: तो हम पूसा NCIPM से मिले, उन्होंने हमारे वहाँ पे जो है गए और हमने कुछ किसान इकट्ठे किए, तो उस बकाणी रोग का हमें समाधान बताया।
1: अच्छा।
7: तो उस टाइम को हमको ज्ञान नहीं था, तो एक तो उन्होंने हमें ढेचा के लिए कहा।
1: अच्छा।
7: आज हम, मेरा गाँव बम्बावड़ है गौतम बुद्ध नगर में, 60% 70% मेरे गांव में ढेचा की खेती होती पहले।
1: अच्छा।
7: और उसकी जुताई करके और जब राइस लगाते हैं, और एक भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल,
7: एक
1: बहुत
7: तो हमको ज्ञान होगा और पहले हमको पता नहीं था कि वैसे ही आता धुंध, दुकानदार हमको दे देता पोटली बांध के और हम स्प्रे कर देते।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमें, और इसी तरह से आपके अनुभवों से भी मुझे उम्मीद है कि जो बाकी किसान हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। साथ ही ये चर्चा जो हमारी है उसे भी हम जारी रखेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ।
8: बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गर्माएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान, मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर।
1: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर हमारा विशेष कार्यक्रम वाद संवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो विषय हमारा है वो है जैविक खाद यानी कचरे से सोना। आइए इस विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद है, साथ ही कई किसान भी हैं। शिवादर जी, हमें ये बताएं कि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि यहां पर मौजूद किसानों से प्रशिक्षण की भी बात आई, तो जैविक खाद इस तरह की खाद है जिसे किसान खुद भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण की बात आती है, तो किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं किसानों को?
2: देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड ये बताना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई बहुत सारे बना रहे हैं
1: जी,
2: लेकिन आज भी आप किसी भी गांव में घुस जाइए और गांव के से जब शुरुआत करते हैं तो आपको एक बेतरतीब तरीके से गोबर के कूड़े के ढेर, जिन पर पॉलीथीन फैली हुई है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, और आज भी मिलेंगे, और हमारे किसान भाई उसमें से ही उठा के और उसको खेत में सीधा डालते हैं, आधी सड़ी हुई आधी गैर सड़ी हुई। जो सड़ी हुई खाद होती है डिकम्पोज्ड होती है और थोड़ा बहुत असर करती है, और बाकी जो डालने के तरीके होते हैं फैलाने के, उसमें भी होता है कि ऐसे डाल दिया, धूप उस पे पड़ती रही और 2-3 दिन में सारा का सारा उसमें नाइट्रोजन निकल गया और उसके बाद कह रहे हमने तो खाद डाली थी इसका कोई असर नहीं हुआ
1: जी।
2: और आधी कच्ची खाद पहुंच गई, उसे कहीं दीमक लग रही है और सारे रोग लग रहे हैं। तो ये ना तो हमारा नुकसान ही हो रहा है, साथ साथ जो हाइजीनिक कंडीशन, जो साफ सफाई का है, जो मक्खियां और बीमारियां सब कुछ फैलती हैं। तो हम किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि थोड़ा सा तरीका बदलें, उसको डालने का सही तरीका बनाएं। आजकल मैं बताना चाहूंगा, गड्ढे के अलावा जो गड्ढे में पहले डालते थे, साल भर पड़ा रहता था, पानी की बरसात हुई, न्यूट्रेंट सारे लीच होके नीचे चले गए, तो उसकी जो गुणवत्ता थी वो भी उतनी अच्छी नहीं रह जाती थी। लेकिन आजकल एक नई तरीका निकाला है जिसको हम बिंडरो मेथड या बायवी तरीके से रैपिड कंपोस्टिंग, बहुत त्वरित कंपोस्ट बनने वाला जो होता है तरीका, इस तरीके में हम पूसा इंस्टीट्यूट में, पूसा अनुसंधान संस्थान में, छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए, बहुत बड़ी लेवल पे जो म्यूनिसिपैलिटी का वेस्ट है उसको सबको किस तरीके से मैनेज करें, पूरा बायवी विधि से होता है। ना गड्ढा बनाने की आपको जरूरत है, ना कोई विशेष तैयारी की जरूरत है, आपको सीधा सरफेस प्लेन एरिया आपको चाहिए, उसमें आप 2.5 से 3 मीटर ऊंची और इतनी चौड़ी, जितनी आपके पास जगह हो उतनी लंबी लाइनें लगा लें, उस लाइनों की उल्टाई पलटाई करें बार बार, और साथ में एक माइक्रोबियल कंसोर्सियम आता है जिसमें हम कहते हैं कई तरीके के जीवाणु होते हैं जो कि सड़ाने में सहायक होते हैं, उनको डाल देते हैं शुरू में ही और वो अपना काम करते रहते हैं। वो बायवी से ये 30 से लेके, जैसा शास्त्री जी ने अभी बताया था, जिनका इनकी पहले की परिकल्पना थी वो अब साकार हो रही है कि वो 30 से लेके 90 दिन के बीच में किसी भी तरीके का खेती वाला जो भी पैदा हुआ अवशेष है वो सारा का सारा सड़ा के अच्छी खाद बनाई जा सकती है, और उसमें जो न्यूट्रेंट हैं, जो पोषक तत्वों की मात्रा जो आम कंपोस्ट हम गड्ढे में बनाते थे उससे भी थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि लॉस होने का टाइम कम मिलता है।
1: ठीक है,
2: तो इस तरीके के साथ में बर्मी कंपोस्ट भी कई तरीके लोग बताते हैं कि इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर पक्का हो, कच्चा हो, हमने इस तरीके का बताया कि किसान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेड़ की छाया है, हम उसमें भी बर्मी कंपोस्ट अच्छी बना सकते हैं।
1: अच्छा,
2: तो कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाली खाद कैसी बनाए, इस तरीके की हमारे पूसा संस्थान में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और भी बहुत जगह जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और भी अगर आपको चाह है तो बहुत सी जगह आपको मिल जाएंगी सीखने के लिए।
1: जी राजपूत जी, मैं चाहूंगी कि आप भी इसमें कुछ जानकारियां और जोड़ दें, प्रशिक्षण की कितनी आवश्यकता है, क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं, साथ ही जैसे कंपोस्ट यूनिट की बात बताई है शिवादर जी ने, बहुत आसान है इसे बनाना, तो किसान खुद भी अपने स्तर पर ऐसा करके लाभ भी कमा सकता है।
4: सबसे पहले तो जो मिश्रा जी ने बात बताई
1: जी,
4: मैं बोलना चाहूंगा कि किस खाद क्या है ये पहले किसान भाई जान लें।
1: अच्छा,
4: हम सबको जानने की जरूरत है, गर्म है तो खाद नहीं, खाद है तो गर्म नहीं।
1: अच्छा,
4: बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, हम सोचते हैं कि हम डाल रहे हैं खाद लेकिन हम डालते हैं बीमारियां।
1: जी,
4: तो उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे एनसीओ ने भी और हमारी दूसरी एजेंसियां आईसीआर वगैरह ने, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारी लेटेस्ट मेथड अभी आ गई हैं। जैसे कि आपको बताऊं, आपके पास कितना भी गोबर है, सबसे पहली बात खेती करना है तो गाय होना ही चाहिए, गाय से मतलब गाय बैल भैंस सब होना चाहिए। तो एक बहुत बहुत छोटी सी परिकल्पना है जिसको लेके अभी काफी मंत्रालय में भी बहुत सारा इस पे काम चल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि बिना गाय के तो खेती अधूरी है, तो ये गोबर होगा, और गोबर मान लीजिए कितना भी है आपके पास, क्वांटिटी की कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए 50 किलो है, 60 किलो है, तो उसकी कैसी खाद बनाए। मैं अभी एक दो मिनट में इनको बताना चाहूंगा कि खाद जहां भी आती है आप उसको समतल कर लीजिए गोबर की खाद को, और उसमें 60 डिग्री पर आप किसी बांस से किसी लकड़ी से उसमें होल कर दीजिए, और फिर उसमें आप करके देखिए, इतना अच्छा फायदा मिलेगा आपको, इतनी बढ़िया कंपोस्ट तैयार मिल जाएगी। हमारे पास जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, लिक्विड होता है, इसके अलावा हम जीवामृत बनाना सब जानते हैं, हमारे किसान भाई सब जानते हैं कि जीवामृत कैसे बनता है। अगर जीवामृत, और मैं तो कहूंगा कि गौमूत्र से अच्छी कोई खाद नहीं संसार में, अगर कोई अच्छी खाद है तो गौमूत्र है। उस गौमूत्र के को और जीवामृत को मिला के उन जो जो छेद आपने किए हैं होल 60 डिग्री पे, उसमें आप जो है उसको डाल दीजिए, एक एक एक होल में लगभग 200 ml के आसपास जो भी आएगा उसमें आप जीवामृत डाल दीजिए। गौमूत्र है तो गौमूत्र डाल सकते हैं आप, आप लाइन से डाल सकते हैं, एक रो में आपने गौमूत्र डालिए, दूसरे में आप जीवामृत डालिए, तीसरी में आपके पास में हमारी जो राख होती है गांव घर की, उसमें पोटेशियम उससे मिलता है। ये जैविक खेती का एक अनुसंधान करके ऐसा हम लोगों ने डेवलप किया है, इसमें साइंटिफिक वैलिडेशन भी हो रहा है। तो ये सब करके 40 दिनों के अंदर, जैसा कि सर ने बताया, 40 दिनों के अंदर इतनी बढ़िया खाद किसान भाई बना सकते हैं, और आपको कहीं फैलाने की भी जरूरत नहीं है। आपका मान लीजिए खेत है, तो कुछ उस खेत में आप अलग अलग जगह पे, और गाय को आपको खेत पे रखना चाहिए एक शेड बना के, गाय बैल भैंस को कुछ आपको घरों में नहीं रखना चाहिए, वहां रखिए, तो ताकि गोबर आपका वहीं खेत पे रहे, लाने की जरूरत नहीं, वहां पर आप अलग अलग जगह पे रखिए और उसको इस तरह से समतल करके, और वहीं पर आप 8-10 एरिया मान लीजिए एक एकड़ में करना है तो आप 4-5 जगह पे करिए, फिर उसको फैलवा दीजिए वहीं पे, इतनी बढ़िया खाद आपके उसमें पहुंच जाएगी जमीन में अपने आप, और फिर उसमें केचुए भी आ जाएंगे, उसमें अपने आप अच्छे, जैसे हम कहते हैं अगरबत्ती लगाते हैं तो अच्छी चीजें आ जाती हैं, ऐसे अगर हमारा गोबर की खाद पहुंच गई तो सारे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो सर ने बताया कि बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म जीव बहुत बड़ा काम करते हैं। आप कहते हैं कि जैसे बात गाय की आ गई, इसलिए मैं बताऊंगा कि जो सबसे अच्छी खाद होती है वो गाय की, देसी गाय की क्यों होती है, आप जरूर पूछना चाहेंगे कि गाय की ही क्यों होती है, क्योंकि गाय के सीकम में जो कहते हैं कि 34 करोड़ देवताओं का वास होता है, वो 34 करोड़ देवता एक्चुअली ये सूक्ष्म जीव होते हैं
1: जी,
4: जो उसके जो किसी दूसरे जानवर में नहीं होते, तो इसलिए
1: कई फायदे हैं इस तरह से जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्री जी, आप ये बताएं कि ये एक मानसिकता बदलने की भी बात हो जाती है, हम चर्चा कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि बहुत सारे फायदे होते हैं जैविक खाद से, लेकिन एक आदत पड़ी हुई है लोगों की कि वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी उपज आ जाएगी, तो ये जो आदत पड़ी हुई है ये कैसे आदत बदलेगी और ये कितना आसान है?
0: आदत डाली किसने? आदत डाली वैज्ञानिकों ने, आदत डाली अधिकारियों ने, पहले उनकी आदत बदलने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, माफ कीजिए मैं एक भद्दा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है फर्टिलाइजर के ऊपर एक साल के अंदर। अगर इतना पैसा आप जैविक खेती के लिए दे दें और ये सब्सिडी खत्म कर दीजिए, किसान को आदत पड़ी है 360 रुपए का एक यूरिया का कट्टा मिलता है, उठा के उसे फेंक देते हैं, फसल उससे काली हो जाती है, देखने में उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है फोलियर वो अच्छी लगती है, तो हमें भी आसान काम हुआ हुआ है। उसी का केवल अगर 15 या 10 किलो यूरिया पानी में घोल के स्प्रे करें तो वो उससे बेहतर काम करेगा। किसान की आदत बदलने के बजाय जो नीति निर्धारक हैं और ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है जिसमें सारे फर्टिलाइजर के उत्पादक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सरकारों से पैसा चो रहे हैं, ये पहले इनका जो हित है, जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे, जब तक सरकार की और नीति निर्धारकों की आदत नहीं बदलेंगे, किसान की आदत बाद में बदलेगी, बदलेगी नहीं तो विलंब से बदलेगी। सरकार की नीति की समीक्षा हम यहाँ कर रहे हैं, तो पहले सरकार की नियत और नीति बदलने की।
1: सिंह जी, आप इस विमर्श को किस तरह से देखते हैं?
3: देखिए, सरकार की नीतियां और सरकार के काम जो पहले से हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी इस देश को? कटोरा लेके भीख मांगते थे हम देश देश घूम के अनाज के लिए और लाइन में लग के अनाज लेते थे। वही हरित क्रांति, जिस जो हरित क्रांति उस समय लाई गई, हमारे वैज्ञानिकों ने लाया, तो पूरे देश ने ताली बजाई और खुशी जताई, और डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी भी उस कतार में रहे होंगे ताली बजाने वालों में। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका बिल्कुल ये कहना है कि उस समय संतुलन बनाने में गलती हुई। जितना प्रयोग होना चाहिए, जिस अंधाधुंध प्रयोग किया गया, एक शब्द यूज कर रहा हूँ, अंधाधुंध दोहन किया गया उस मिट्टी का, उस जमीन का, संसाधनों का,
1: कमी रही कि इसके दुष्परिणाम
3: मैं बता रहा हूँ। दुष्परिणाम उसका यही हुआ कि जब हम दोहन किसी चीज का ज्यादा करेंगे और इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, करेंगे क्या? देखिए असंतुलन किस लेवल पे हुआ, सिर्फ संसाधनों का नहीं हुआ, मिट्टी का हुआ, पानी का हुआ, यही नहीं, आप दाल और तेल, खाद्य तेल, आज स्थिति है कि हम लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं सिर्फ उसी असंतुलन के चलते, क्योंकि सारा का सारा जोर हमने अपने किसानों पर इस बात के लिए दिया कि साहब गेहूं और चावल पैदा करो देश भर में। और गेहूं चावल पैदा करने के चक्कर में जिस पंजाब और जिस हरियाणा में मोटे अनाजों की, दलहन की, तिलहन की खेती हुआ करती थी और बाकायदा फसल चक्र के तौर पर खेती होती थी और मिट्टी की उपजाऊपन को, उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की क्षमता थी उस मिट्टी में, आज वो मिट्टी बांझ होती जा रही है, वहां की पैदावार घट रही है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बढ़ाए नहीं बढ़ रहा है। तो हरित क्रांति के दौरान जब उसे ठीक है, उस समय की जरूरत रही होगी, और आज जितने डॉक्टर साहब बैठे हैं और ये हमारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और अधिकारी बैठे हुए हैं कृषि मंत्रालय के, मैं इनसे जानना चाहूंगा, जरा समझिए एक्सटेंशन के नाम पर क्या हुआ। यहां हम ज्ञान दे रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब और ये सारे लोग, मैं सबसे जानना चाहूंगा ये सारे ज्ञान, सारी जानकारी क्या किसानों तक पहुंची है? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि कुछ ही किसी स्टेट के, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक ये जानकारी हो।
1: ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं।
3: देश में जानकारी होगी,
1: लैंड टू लैब टू लैंड की बात तो कहीं नहीं पहुंची है, लेकिन ये गैप का जो शिकायत है वो लगातार आती रहती है।
4: ऐसा है, हमारा पूरा एक एक्सटेंशन डिवीजन है, इसके लिए हर एक मंत्रालय में अपना एक डिवीजन होता है, सर को पता है और आपको भी पता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट इनको पता होना चाहिए, होगा कि एक पूरा एक डिवीजन होता है, वो यही काम करता है, मैंने जो कुछ भी नई स्कीम्स आ रही हैं वो सबको उनको किसानों तक लैब टू लैंड पहुंचाने का काम, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारा काम तो किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेके उसको बनाने का काम हम देखते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम देख रहे हैं, पर हमारा जो एक्सटेंशन डिवीजन है वो आपको डिटेल में बताएंगे, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो काम चल रहा है इसमें।
1: बिल्कुल शिवाधर जी, आपका भी मैं जरूर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इतने वैज्ञानिक है, लेकिन शिकायत यही रह जाती है कई बार कि जो लैब टू लैंड का जो गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा है।
2: जहां तक तकनीकी जानकारी का सवाल है, हम कह रहे हैं कि बहुत हद तक पहुंची हुई है हमारे किसान भाइयों के पास। इनमें से कौन सा किसान भाई ऐसा है जिसे ये पता नहीं कि जैविक खेती या जैविक पदार्थ प्रयोग करने से, जैविक पोषक तत्वों का प्रयोग करने से ज्यादा फायदा है? सबको पता है, लेकिन उसके कई ऐसी भी समस्याएं हैं जिससे कि प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
1: जैसे कि
2: गोबर की खाद बनाना, आजकल जब प्रेशर है कि हम ज्यादा पैसा कमाएं, इनका एक होड़ लगी हुई कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ऐसी फसलें उगाएं जिसमें तुरंत पैसा मिल जाए।
1: बिल्कुल।
2: तो उसमें दूसरी बात, जो श्रमिकों की कमी है, खेती के लिए श्रमिकों की संख्या पहले क्या थी, आज क्या है, और आज उसकी रेट क्या है, पहले क्या रेट थे, इन दोनों को देख ले तो 50 किलो का कट्टा यूरिया का डालना बहुत आसान है, खुद ही जाके डाल आएगा, लेकिन जब गोबर की खाद, जब 50 किलो की जगह जब हमें 5 टन या 10 टन डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें बुग्गी भी चाहिए होगी, ट्रैक्टर भी चाहिए होगा, हमें 4 आदमी भी चाहिए होंगे, वो कहां से आए?
1: तो इसका कुछ व्यवहारिक समाधान,
2: उसका व्यवहारिक समाधान ये है कि हमारे सब किसान भाई एकजुट होके इसके दूरगामी परिणाम को अगर ध्यान में रखें,
1: अच्छा,
2: तो धीरे धीरे उसे फसल चक्र में भी अपनाएं, तुरंत लाभ पे ना जाएं, हमें अगली जनरेशन को अगली पीढ़ियों को क्या खिलाना है उस पे जाएं।
1: जैसे एक सोच ये भी है कि अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो जो उत्पादन जो उत्पादकता है वो घटती है, क्या ऐसी भी कोई बात है क्या?
2: नहीं, ऐसा इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैविक खाद का प्रयोग अब जैसे हम जमीन में डालते हैं, अब ऐसा एकदम जैसे आप दे रहे एलोपैथिक दवाई से एकदम आयुर्वेदिक दवाई पे आ जाएं, मैं एक सीधा सा एक उदाहरण ले रहा हूं।
1: अच्छा,
2: तो एलोपैथिक में कहते हैं एकदम असर होता है, इसमें जो यूरिया में और जिसमें भी ये फर्टिलाइजर तुरंत उपलब्ध होती पौधों को, तो सीधा असर एकदम काली फसल दिखाई देने लगती है, और इसमें धीरे धीरे इम्योबिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं, पहले शुरू शुरू में थोड़ा कम रिलीज होता है, बाद में एक स्तर आ जाता है जबकि प्रचुर मात्रा में सभी कुछ उपलब्ध होने लगता है। तो उस गैप को आप चाहें कि यूरिया वाला एकदम असर दिखाई पड़े वो तुरंत नहीं दिख सकता, उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा डालनी पड़ेगी, जो कि आजकल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी फसल अवशेष हैं उन सबका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रयोग होने लगा है, और उनको हम जानवरों के चारे के अलावा भी बाकी और चीजों में जगह बेच रहे हैं, और कुछ किसान भाई तो जल्दी में जला भी देते हैं जिसकी बहुत अच्छी खाद बनाई जा सकती है, लेकिन वो भी श्रमिक ही उसके पीछे कारण है।
1: पर्यावरण को नुकसान हो रहा वो अलग बात है, लेकिन क्या अनुभव है किसानों
0: का? ये सारा किसान की अर्थव्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा लागत ज्यादा आती है, परंतु अगर आप जैविक खेती की उत्पादन देखें, मान लीजिए गेहूं जो है वो 12 क्विंटल हुआ, दूसरा खाद डालने से 14 हुआ, तो इससे अगर 14 आप करेंगे तो इसमें लागत कम आएगी दूसरे के बजाय, और लंबी अवधि में इसकी लागत रासायनिक खेती की ज्यादा रहती है जैविक खेती के मुकाबले में। पोषक तत्व बेहतर आते हैं, पानी कम लगता है। अगर आप रासायनिक खाद डालेंगे तो पानी आपको गेहूं में 5 से 6 चाहिए, देसी खाद डालेंगे तो 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 में काम हो जाएगा, तो उससे जो जल स्तर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो भी एक सवाल है। फिर विषैले तत्वों के अवशेष है, उससे जो शरीर के, जैसे पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जहां मनुष्य का स्वास्थ्य पूरे भारत में सबसे बेहतर माना जाता था, केवल जिंक की कमी होने से डायबिटीज इतनी हो गई गांव में, जिसको कोई जानता नहीं था मधुमेह को, वो जिंक जो है वो गोबर के खाद डालेंगे तो कम नहीं होगा। और कितने भी आप सॉयल हेल्थ कार्ड बना लें, हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता कि एक एक चीज नाप के आप इतना जिंक डालना, इतना बोरोन डालना, इतना मोलिब्डेनम डालना, इतना सल्फर, आप देसी खाद डालिए सब अपने आप जितनी जरूरत है सब पड़ जाएगी, पानी की आवश्यकता घट जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी, किसान का प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों हमने आप एक सुंदर छू प्यारू छू आपड़ भीली गीत ने सांभ्यू इना गीत ने बाद अपना कार्यक्रम ने आगाड़ी बढ़ाए एक बार फिर तो हूँ स्वागत करूँ तमार सबूनो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर अना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में किसान भाइयों आपू लगातार जैविक खाद ना बारा में आपू चर्चा कर रहा है कि कम तरीके थी जो बाकी खाद की तुलना में जो आप जैविक खाद है जो आप गाय नु गोबर है वो कितरू गुणकारी है तेना बारा में आपू लगातार जानकारी हासिल कर रहा है। किसान भाइयों ने जानकारी ने आगाड़ी बढ़ाता जाइ जानिए हजू महत्वपूर्ण जानकारियों ने।
2: आज हम जैविक खाद पर चर्चा कर रहे हैं तो जैविक खाद यानी कचरे से सोना, ये सोना कितना खरा है और कितना खोटा है इस पर वाद संवाद का सिलसिला फिर से शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: इसी साल 20 जनवरी को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की मीटिंग में नगर कंपोस्ट योजना को मंजूरी दी। इसके तहत ये तय किया गया कि सभी उर्वरक कंपनियों के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ नगर कंपोस्ट की मार्केटिंग भी जरूरी होगी। प्रोत्साहन के तौर पर सरकार 1500 रुपए प्रति टन के हिसाब से देती है। इसका मकसद किसानों को सस्ती दर पर कंपोस्ट खाद उपलब्ध कराना है। सरकार की ये भी कोशिश है कि किसानों को नजदीकी उर्वरक विक्रय केंद्र पर ही कंपोस्ट भी उपलब्ध हो जाए। साथ ही सरकार ने कंपोस्ट के फायदों के बारे में किसानों को जानकारी देने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी इस कोशिश में सहभागी बनाया। लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इस दिशा में शोध कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तो कम समय में कंपोस्ट तैयार करने के लिए सूक्ष्म जैवीय टीका भी विकसित किया है। इसके इस्तेमाल से 70 से 75 दिन में अच्छी कंपोस्ट तैयार की जा सकती है। आम विधि से कंपोस्ट तैयार करने में 4 महीने यानी 120 दिन लगते हैं।
2: आपने देखी ये रिपोर्ट, आइए इसके बाद इस चर्चा को हम आगे ले जाते हैं। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है उसमें शामिल हुआ और अपने सवाल पूछे। जी पूछे अपना सवाल।
4: डॉक्टर साहब, जो अभी आप लैंड टू लैंड की जो बात कर रहे थे, लैब टू लैंड
2: जी,
4: उसमें कहीं ना कहीं कड़ी टूटी हुई है या अविश्वास पैदा हुआ है साइंटिस्ट और किसान के बीच की जो कड़ी है। आप लैब में काम कर रहे हो, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, बीच में कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ है और इस वजह से वो चीज किसान तक नहीं पहुंची। किसान अगर जाते हैं तो डॉक्टर साहब किसान को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता वहाँ पे जिस तरह से होना चाहिए। अगर मैं 50 किलोमीटर चल के जाता हूँ तो हो सकता है आपका ऑफिस का गेट ही ना खुले, आप अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं, बाहर वाले नहीं जाने दें। उसके लिए डॉक्टर साहब मैं किसान हूँ, हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 15,000 किसान हमारे ग्रुप में सर, 1,000 उसमें कृषि विशेषज्ञ हैं, आप जैसे साइंटिस्ट भी हैं, और शुगर केन ग्रोवर्स ऑफ इंडिया के नाम से है, उसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं। आप जो हमें एक चैनल के थ्रू नहीं बता पाते हो वो हमें फटाक से आप कमेंट करते हो, हम आपको प्रॉब्लम दी, हमने आपने कमेंट कर दिया और हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, मैंने किया ठीक हुआ, मैंने दूसरे साथी को बता दिया, पूरे ग्रुप में वो चीज़ फैल जाती है। तो इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल रहा है सोशल मीडिया का। दूसरा सर, प्रिंट मीडिया है, आप बहुत सारी मैगजीन निकालते हो, पूसा से बहुत सारी मैगजीन निकलती हैं, मैं भी मेंबरशिप ले रखी है, साल में 2 या 3 पहुंचती हैं, वो वहां से डिस्पैच करते हैं, मुझे रिसीव नहीं होती, बीच में खो जाती है। क्यों ना फिर इसका हम तरीका बदला जाए, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू या फिर सोशल मीडिया पे आया जाए।
2: मतलब जो एक गैप है, जो कड़ी टूटी हुई है लैब टू लैंड का, उसे कैसे पाटा जाए, अगर कोई सुझाव आपके पास है या आपको क्या लगता है?
5: जहाँ तक सवाल है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं और आजकल एक MGMG है, मेरा गांव मेरा गौरव। हम सब लोगों ने कम से कम एक वैज्ञानिक के पास कम से कम 5 गांव, हम लोग गांव में जाते हैं सुबह से शाम तक, सबसे उनकी समस्याएं सुनते हैं, जो उनके लिए सुझाव हमारे पास तुरंत उपलब्ध होता है वो हम बताते हैं, और अगर उपलब्ध नहीं है तो हम अपने और वैज्ञानिकों से डिस्कस करके अगली विजिट में जाके उन सब बातों पे समाधान की बात करते हैं। इतने सारे किसान मेला लगते हैं, हमेशा किसान भाई वहाँ पे आते हैं और बहुत सारे किसान भाई मुझे रात में अगर 8 बजे 10 बजे 11 बजे भी मेरे पास फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें क्या करें, तो मैं तो कभी आलस नहीं करता हूँ। हमारी समझ से लोग आलस नहीं करते हैं, लेकिन कितने लोग संपर्क करते हैं और कितने कर, क्योंकि जितने किसान है उतने वैज्ञानिक तो नहीं है, तो 1-to-1 तो नहीं हो सकता है
2: जी।
5: तो जो जहाँ पे कलेक्टिव जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो हमारे ग्राम विजिट है, मेला है, इनमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर सहयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो मुझे लग रहा है आपको सारी जानकारी हो सकती है। ये आप ध्यान में रख के चलिए कि जितने किसान हैं उतने वैज्ञानिक नहीं हैं, तो 1-to-1 आपको नहीं हो सकता
2: जी। अगला सवाल लेते हैं हम लाइव। अगला सवाल,
6: मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ, संजीव कुमार रूपबास दादरी गौतम बुद्ध नगर से। जैविक खेती करने में हमको अपना एक जैविक उत्पाद तैयार करने में अपने खेत में 4 से 5 साल लग जाते हैं। जैसे कि अभी बात आ रही थी कि भाई हम अगर रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दें और जैविक पे ले आए तो एकदम पैदावार घटती है, उसके लिए हमें 4-5 साल का इंतजार करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको रासायनिक खाद की मात्रा घटानी पड़ती है और जैविक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। अब हमने जैविक खाद तो हमने डाल के खेत में उत्पाद तो तैयार कर लिया, लेकिन समस्या आती है किसान के सामने जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, एक रासायनिक खाद के द्वारा प्रयोग किया हुआ प्रोडक्ट है हमारा और हमने जैविक से किया है, और रेट जब जाते हैं तो हमें दोनों के बराबर मिलते हैं, उसका हमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती, उसके ऊपर सरकार
2: ठीक है। दो महत्वपूर्ण सवाल आपके निकल के आए हैं। एक तो वक्त लगता है, सूक्ष्म जैविक टीका भी विकसित की गई है ताकि कम समय लगे, जहां तक मेरी जानकारी, अगर आप इसके बारे में और भी विस्तार से बता सकें।
5: देखिए ऐसा है कि जो एक भ्रांति है, मुझे लग रहा है कि उपज बहुत ज्यादा कम हो जा रही है। आप जैसे रासायनिक खादों से, रासायनिक खाद का मैं ये कह रहा हूँ कि प्रयोग जब करते हैं तो एकदम असर दिखाई, इसका असर नहीं दिखाई देता हो, और हम जो पहली साल या दूसरी साल या तीसरी साल अगर भरपूर मात्रा में हम उनका प्रयोग करेंगे खादों का, जैविक खादों का, तो ऐसा नहीं कि उपज में बहुत कमी आएगी, उपज उतनी ही रहेगी। आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये एक भ्रांति है, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा उपज कम हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि अगर सड़ी हुई खाद नहीं डालोगे, अगर सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं करोगे, तो हो सकता है आपके खेत में जाके वो सड़ने में जो बैक्टीरिया वगैरह वो काम करते हैं उसे सड़ाने का, तो सारी एनर्जी उधर लग गई, तो जो न्यूट्रिएंट रिलीज एक होता है कि पहले सड़ता है उसके बाद उसमें से पोषक तत्व निकलते हैं।
2: सही विधि जानना भी बेहद जरूरी है।
5: आपके पास जानकारी तो पूरी उपज मिलेगी।
7: मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो मुझे सरकार के अंदर हो रहा है, मैं उसके भी थोड़ा सा आ रहा हूँ। किसान ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। निश्चित रूप से प्रोडक्शन कम होता है डॉक्टर साहब जो भी कहें, लेकिन पहले दूसरे तीसरे साल में घटता है, चौथे पांचवें साल पे वो आता है। सरकार ने एक योजना अभी शुरू की है, उसमें क्या है कि पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल पे पर हेक्टेयर में 20, 15 और 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है उस किसान को, लेकिन तब दी जाएगी जब वो किसान क्लस्टर बना के कम 50 किसान एक साथ हो, और एक निश्चित है कि भाई 50 किसान हो या एक निश्चित रकबा हो खेत का, इतने लोग क्लस्टर बना के अगर आएंगे तो उनको इस तरह की सुविधा दी जाती है और उन्हें बैंक से बेहतर मतलब रियायती दर पे उनको लोन भी उपलब्ध हो रहा है। उन किसानों के प्रोडक्ट को एक ऐसे डेडिकेटेड मार्केट के लिए वो सरकारी तौर पर इन्होंने व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये कितनी कारगर होगी ये तो आने वाले दिन बताएंगे।
2: बिल्कुल राजपूत जी बताएंगे, क्योंकि बाजार और मूल्य इसकी भी चिंता है जो वाजिब है।
8: जहाँ तक जैविक खेती के उत्पादों की बिक्री की बात करें, अपन मार्केट की बात करें
2: जी,
8: तो अभी सरकार ने कुछ बहुत अच्छी स्कीम, अभी एक मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग ले गए हैं। उत्पादन से लेके वैल्यू एडिशन से लेके उसका सर्टिफिकेशन भी करा रहे हैं, और उसको जो एजेंसियां हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके माध्यम से एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा रही है
2: जी।
8: इसके अलावा कुछ प्राइम अच्छी लोकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर और आपके दिल्ली, आपका चेन्नई, इस तरह की मेट्रो सिटीज में इनके आउटलेट्स भी खोले जा रहे हैं। कुछ मॉल्स में अभी इवन हमने एक कृषि भवन में भी एक शॉप खोल रहे हैं, अभी उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसमें सिक्किम या जिस तरह के और भी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वहाँ हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जैसे, जहाँ पर पूरा जैविक ही होता है, जहाँ कोई केमिकल नहीं डाला जाता, उन सब के प्रोडक्ट्स को वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग भी की जा रही है। पर एक बात मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, हर पूरे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के आप एफपीओस बनाइए, एफपीओस का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे आपने बताया क्लस्टर्स। जब आपके 100-500 हजार किसान मिलके कोई काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो क्वांटिटी में ज्यादा आता है, बल्क में आता है। और जब बल्क में आता है, जब आपके पास बल्क में जब कोई प्रोडक्ट आएगा तो मार्केट चल के आता है। जैविक खेती करने वाले किसानों को मैं ये कहूंगा कि आपका मार्केट आपके घर चल के आता है, आपको मंडी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे शास्त्री साहब बैठे हुए हैं जो जैविक खेती करते हैं, उनके खेतों पर लोग जाके पहले से बुकिंग करा देते हैं।
2: बिल्कुल,
8: ऐसे बहुत सारे किसान हैं, मैं जानता हूँ आपके यहाँ बुलंदशहर में है कुछ किसान, जैसे मिस्टर त्यागी करके हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं, करीब 1000-1200 किसानों को तो मैं बाई नेम जानता हूँ, जो जिनके पास लिस्ट होती है उनको बाजार में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी को गेहूं चाहिए, हर आदमी को फल चाहिए, हर आदमी को सब्जियां चाहिए, उनके पास लिस्ट पहुंच जाती है और वो हमें भरोसा होता है।
2: साथ साथ किसानों को शास्त्री जी थोड़े मार्केटिंग के गुर भी सीखने होंगे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जैविक उत्पाद से।
9: सबसे बड़ी कठिनाई है कि किसान के उत्पादन का जो विपणन है मार्केटिंग, उसकी जो पहली व्यवस्था थी वो शोषण पर आधारित थी। व्यापारी उससे खरीद लेता था, मनमाने दाम पे बेच देता था। कृषि उपज मंडी का कानून लाया गया था उस शोषण से किसान को मुक्त करने के लिए, परंतु हो क्या रहा है कि वही व्यापारी आज सरकार का लाइसेंस लेके किसान का शोषण कर रहे हैं। आज भी छूट नहीं है किसान को सब जगह। अगर मेरा गांव जमुना के ऊपर है, मैं अपना गन्ना जमुना के पार हरियाणा के मिल को दे दूं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। अगर अपनी मंडी के बाहर ले जाके बाहर बेचूं तो मंडी टैक्स की चोरी में गिरफ्तार हो जाऊंगा। एक तरफ सारी सरकारें दम भर रही हैं कि हम वैश्वीकरण कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का किसान एक मंडी से दूसरी मंडी के क्षेत्र में ले जाकर बेच नहीं सकता।
2: ई-नैम इस दिशा में एक सराहनीय पहल है कहना पड़ेगा केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना।
9: वो जो एक टैली उस पे किया है, किसान के पास इतना साधन नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि बल्क जब तक नहीं होगा, न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा न राष्ट्रीय व्यापार होगा, उसके लिए आप खोल दीजिए, वो स्वतः ठीक हो जाएगा। जब तक आप सब चीज में कंपटीशन कर रहे हैं तो किसान में क्यों नहीं कर रहे हैं?
2: बिल्कुल, कहा भी जाता है एकता में बल है, तो इसमें भी सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। जब सब किसान सामूहिक तौर पर आए

इना तिनो प्रयोग करें आपड़ जो रासायनिक खाद नी जो समस्या है तिनता आप वसी सकी। तो किसान भाइयों आज ना इना कार्यक्रम में बस इतनु तमारती फिर काल मुलाकात था है इना समय पर इतरे बने लारो हमारी हाथे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नी हाथे झाबवानी आवाज पर।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं उन सभी लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी होती है। जी हाँ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं रखी, बिल्कुल नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 35 ईयर्स से भी ज्यादा का सफर, रिजेंसी हॉस्पिटल से लेकर नियॉन लैब्स, पनेशिया बायोटेक, डाबर फार्मास्यूटिकल्स, रैनबेक्सी, ग्लेनमार्क, इंटास और कई प्रमुख संस्थानों में नेतृत्व की जिम्मेदारियां निभाते हुए इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को छुआ है। शिक्षा की बात करें तो सर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज के IIT BHU से बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद PGDBA किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन हासिल किया और हाल ही में फार्मास्यूटिकल्स में मास्टर्स की डिग्री भी पूरी करी है। ये उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के एक जज्बे को खूबसूरती से दर्शाता है दोस्तों। लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो एक ऑथर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, NLP और एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं और सबसे खास बात, हमारे SN रेडियो के फाउंडर हैं, जो कई लोगों को अपनी आवाजों की पहचान देने में उनका साथ देते हैं, उनको हाथ बढ़ाते हैं और उनको एक खूबसूरत सा मंच देते हैं। तो चलिए आज स्वागत करते हैं हमारे खास दोस्त जिंदगी अनप्लग्ड में समीर गोयल सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के जिंदगी अनप्लग्ड में।
1: आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने खुद के प्रोग्राम में आज इंटरव्यू में बन के आने में? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी आपसे।
2: बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, मैं यूजुअली टेबल के इधर रहता हूँ लेकिन आज टेबल के उधर हूँ। सो ऑफ कोर्स, जैसा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि बहुत अजीब सा लगता है, एक नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, काफ़ी कुछ वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। इट हैपेंस। मतलब मैंने कई सारे लोगों से बातचीत की ना, तो वो लोग इतने बड़े बड़े उम्र के हैं, पढ़े लिखे हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लेकिन फिर भी वो लोग क्वेश्चंस को लेकर इतने घबराए रहते हैं। तो दैट कुड हैपन टू एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, व्हाई एम आई शुड बी अ एक्सेप्शनल, मैं भी तो इंसान ही हूँ।
1: बट आप IIT ग्रेजुएट है, इसलिए आप हमसे अलग है, ट्रस्ट मी।
2: नो, डोंट से दैट, आई एम जस्ट एजुकेटेड पर्सन, दैट्स इट। अब IIT कह लीजिए, IIM कह लीजिए, एम्स कह लीजिए या फिर और कुछ, ये तो एक आई मस्ट से एक अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि ठीक है, राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे मैं वहां था तो वो चीज मेरे हाथ आ गई। वरना बहुत बहुत सारे लोग बहुत केपेबल हैं जो उनको शायद नहीं मिल पाए।

0: नेवर माइंड, चलिए आप बताओ नाउ, थ्रो योर क्वेश्चंस ऑन मी।
1: जी मेरे लिए तो ये माइलस्टोन इंटरव्यू है, तो मैं डीप डाइव करूंगी डायरेक्टली और मैं स्टार्ट करूंगी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से
0: जी।
1: आज हम बात करेंगे आपकी पहली किताब का, माय डियर एमआर के बारे में। उससे पहले मैं आपकी थोड़ी जर्नी, जैसे हम हर गेस्ट को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं उनकी जर्नी जहां से शुरू हुई। तो सर आपका सफर रिजेंसी हॉस्पिटल में फार्मेसी इंचार्ज से शुरू हुआ, फिर आप नियॉन लैब्स, पनेशिया बायोटेक, डाबर फार्मास्यूटिकल्स, रैनबेक्सी, ग्लेनमार्क और इंटाल जैसे इतने बड़े नामों तक पहुंचे। तो सर इतने सालों का जो आपका सफर रहा उसमें आई एम श्योर आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव और पड़ाव देखे होंगे जीवन के। तो अगर आपकी पूरी जो प्रोफेशनल जर्नी है आज जब हम इस इंटरव्यू में बैठे हैं और आप सोचते हैं और आप थोड़ा पलट के देखते हैं, तो वो कौन सी एक सीख है जो आज के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपने करियर की शुरुआत में हैं उनको आज ही समझ लेनी चाहिए कि ये तो होने ही वाला है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें, ऐसा कोई मोमेंट अगर आप साझा करें।
0: ऑलराइट, बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझको, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स जो थे जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरी टर्न अराउंड कर दी, जाहिर से बात है प्रोफेशनली वर्किंग करते हुए ही तभी हुआ ये। कुछ मोमेंट्स ऐसे आए और सिमिलर मोमेंट्स थे, दो ज्यादा नहीं, दो तीन ही, जब लगा कि इट्स अ टोटल वेस्ट, आई एम अननेसेसरली वेस्टिंग माई एनर्जी हियर, और फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड या फिर ये जो प्रोफेशन है ये मेरे लिए नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आई वो ये कि आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, बेचूलाल नहीं हूं मैं। बार बार ये दिमाग में आया कि यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, अरे को छोड़ो, कुछ और काम करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट कप ऑफ योर टी। उल्टा बोल गया ना मैं। लेकिन फिर जैसे उस डिप्रेशन वाले पीरियड से अब जॉब में थे, इस चीज को ज्यादा देर ओढ़ के नहीं चल सकते थे, अगले दिन सुबह उठ के जाना ही है फील्ड में या जाना ही है ऑफिस में, काम करना ही है, तो छोड़ा उसको और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो वो डिप्रेशन ऑफकोर्स कुछ दिनों तक एक बोझ की तरह सर पे टंगा रहा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकल गया। फिर अब ये कह देना बड़ा आसान सा लगता है कि साहब डिप्रेशन आया था और ऐसा हो गया था और दो तीन दिन बाद निकल गया, सबकी जिंदगी में होता रहता है, लेकिन सेंस ऑफ रियलाइजेशन कब होता है ना, व्हेन आई यूज्ड टू मेक कॉल्स ऑन द डॉक्टर्स और ऑन टू द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और टू द क्लाइंट्स, और आउटकम बहुत अच्छा निकल के आता था, और उसके बाद स्पेसिफिकली मेरे कलीग्स आकर ये बोलते थे कि यार समीर जी आपने उस वक्त ये ना बोला होता ना तो बॉस लोचा हो जाता, ये डील क्रैक नहीं होती, खराब हो जाती। और हाउ डिड यू से दैट, ये आपने कहा कैसे, ये दिमाग में आया कहां से आपके? तब ये रियलाइज होता था, ये दो तीन बार हुआ कि यार देयर इज अ सेल्समैन इन मी है, मैंने उसको डिनाई क्यों किया, इट इज देयर इन मी। सो जो आपने बात पूछी उसको अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो हर इंसान के अंदर उसकी शख्सियत में, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोफेसर हो, थिंकर हो, फिलोसोफर हो, एक सेल्समैन होता है, एक सेल्स पर्सन, ओके, एक सेल्स पर्सन होता है, यू कैन नॉट डिनाई इट। आप उसे नहीं मार सकते, नहीं दबा सकते, उसे मना नहीं कर सकते दैट आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रेजेंट करना ही है। तनुषा तुम्हारी बात ले लेना यार, यू आर यूजिंग योर वॉइस, योर स्टाइल, योर पंक्चुएशन, योर कॉन्टेंट एज वेपन्स टू यू नो टेल पीपल दैट आई एम हियर, लिसन टू मी। सेम वे फिर वो चाहे अकाउंटेंट हो, वकील हो, डॉक्टर हो, लेखक हो, पोएट हो, शायर हो, नेम एनीवन यार, हर बंदे को अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए किसी लैब में घुसा हुआ कोई एक साइंटिस्ट बिल्कुल टेस्ट ट्यूब हिलाता हुआ और उसने एकदम शानदार कोई डिस्कवरी कर ली, देन क्या उसको दुनिया के सामने आकर बताना नहीं होगा दैट आई डिड इट, इस बीमारी का इलाज निकाल लिया मैंने, हु विल डू इट, द सेल्स पर्सन इन हिम। सी ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिस वक्त मुझे रियलाइज हुआ दैट आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम माई एम आर। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, लेट्स एंजॉय इट, लेट्स डू इट, इसको ही शार्प करते हैं।
1: राइट राइट। और यही अगर आप इसी से कनेक्टेड कोई एक ऐसा लेसन या कोई ऐसा सेटबैक जो आपको लगा हो, जो उस टाइम बहुत मुश्किल लगता था बट आज लगता था कि यही तो टर्निंग पॉइंट था, यही तो गेम चेंजर था और यही तो मेरी ताकत बन गया, वो क्या था? और आई एम श्योर आजकल जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास पेशेंस नहीं है, वो इतना टाइम नहीं देना चाहते जितना आपने और मैंने एक कंपनी को दिया है, तो उनके लिए अगर आप विथ सो मच एक्सपीरियंस एक सलाह देना चाहें तो वो क्या होगी सर? आपकी इतनी लीडरशिप काउंसलिंग की जो इतनी लंबी जर्नी है 35 ईयर्स की, तो क्या होगा सर?
0: द वेरी फर्स्ट थिंग इज, यूं तो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है या ट्रेट जिसको कहेंगे, ये किसी भी प्रोफेशनल की जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेल्स में हो या ना हो. बट मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि हम लोग सेल्स में हैं. मुझे ठीक से याद है, आई गिव यू द लाइव एग्जाम्पल, उसमें कुछ छुपाने वाली मुझे डरने वाली कोई बात ही नहीं है. आई यूज टू वर्क इन राजस्थान बीकानेर में, एक डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ मेरे ठीक ठाक अच्छे ही रिलेशन कह लीजिए. यूज टू बी प्रेटी स्ट्रिक्ट बट ओके, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया भी रिलेशन नहीं थे और खराब तो थे ही नहीं. ओके, एक बार उनको मुझे मिलने के लिए जाना था शाम को और मैं शाम को टाइम से नहीं पहुंच सका. ओके, आई गॉट लेट, 15 मिनट्स लेट. और जबकि मुझे ये पता था कि वो डॉक्टर साहब पंक्चुअल हैं, और वैसे ही वो देखा जाए तो डॉक्टर साहब क्यों कह लो यार, किसी भी आप जिससे भी मिलने जा रहे हो, पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट. बड़ा आसानी से कह दी जाती है ना, पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट. लेकिन उस दिन मैं लेट हुआ और बहुत गलत हो गया. डॉक्टर साहब भयंकर नाराज हुए और उन्होंने मुझसे साफ साफ मेरे मुंह पर मिलने से मना कर दिया कि नहीं समीर, आई डोंट वांट टू मीट यू एंड नेवर कम अगेन.
1: ओहो
0: वो डेट आज भी मुझे याद है, वो जो वाकया हुआ वो आज भी मुझे याद है, और मेरे दिल को अंदर तक दुखता है वो, कि यार मेरी 15 मिनट की बेवकूफी की वजह से एक अच्छा रिलेशन, एक मेरे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन, चलिए कस्टमर भी छोड़िए, एक अच्छा इंसान जानता था मैं, खत्म हो गया. तो दैट इज स्टिल पेनिंग इन माई हार्ट राइट नाउ, जबकि इस बात को प्रैक्टिकली 25 साल गुजर चुके हैं. लेकिन सभी लोगों को मैं बात, अगर आपने बोला तो यंग प्रोफेशनल्स को ये जरूर जरूर बोलना चाहूंगा कि आप लोग हो सकता है कभी ना बताएं किसी को, लेकिन ऐसी गलतियां सबके साथ हो जाती हैं, तो ऐसी गलतियां ना करें तो अच्छा है. ओके, ऐसा भी कहा जाता है ना कि गलतियों से ही हम सीखते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम गलती ही ना करें? तो एक दाग तो एक आध गलती तो हो जानी चाहिए.
1: राइट,
0: नो प्रॉब्लम. वो एक गलती हुई जिससे मैंने कान पकड़े, उठक बैठक करी कि आगे कुछ भी हो जाए मैं बता दूंगा, फोन करके पहले बोल दूंगा या कैसे भी करके मैं बता दूंगा कि आई एम सॉरी सर, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, आई एम लेट. लेकिन किसी बंदे को इंतजार नहीं कराऊंगा. एज अ प्रोफेशनल ये डिजास्टर है, दिस इज डिबाकल, ये क्या बोलना चाहिए, वो मतलब खत्म हो जाने वाली बात है. सो यंग यस यंग प्रोफेशनल्स को यही है कि दे नेवर एवर डू दैट. घड़ी को हमेशा 5 मिनट आगे रखिए प्रैक्टिकल, ठीक है ना? तो उसमें आपको कभी नुकसान नहीं होगा.
1: ब्यूटिफुली पुट सर, और बहुत ही खूबसूरती से आपने ये वाक्य हमारे साथ साझा किया. आई एम श्योर ये अगर कोई समझ ले, इसको गुन ले, बुन ले और अपनी जिंदगी में उतार ले, तो ये बहुत आगे ले जाने वाली बात है. पंक्चुअलिटी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप नहीं जानते क्या प्रोफेशनल इंप्रेशन पड़ता है जब आप लेट पहुंचते हैं. हमेशा जैसे सर ने बताया, 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें, लेट ना हो. तो इसी खूबसूरत मोड़ पे हम सुनना चाहेंगे हमारा पहला गीत आज का जिंदगी अनप्लग में. सर आपकी पसंद का कोई गीत जो हम आज सुनाना चाहें.
0: ओके, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि म्यूजिक इज गुड. म्यूजिक, जैसे मैं हमेशा मानता भी हूं कि म्यूजिक मेडिटेशन है, देयर इज अ क्वेश्चन लाइज ऑफ द सॉन्ग व्हिच यू विश टू प्ले हियर. एग्जैक्टली इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है.
1: हाँ जी बिल्कुल.
0: ये जो जितेंद्र के ऊपर फिल्माया गया था, किशोर कुमार ने गाया था, मुसाफिर हूं यारो, नगर है ना ठिकाना, दैट इज क्यूट, क्योंकि उसमें बंदा अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करता है. पर्सन ने अपने आप को कुदरत के हवाले किया हुआ है, वो जैसा कुदरत उसको चलाती है वो वैसा चलता है. तो इज नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू मेक हिज ओन वे कि जी आई विल री इन्वेंट द व्हील, ऐसा कुछ नहीं है.
1: ही इज जस्ट फ्लोइंग,
0: ही इज जस्ट फ्लोइंग,
1: यस ही इज जस्ट फ्लोइंग, यस यस, ब्यूटीफुल सर.
0: वेल, मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में सारे के सारे जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे ये एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप ऐसा कोई गीत बताइए जो आपकी शख्सियत पर पूरा सूट होता हो, आपकी शख्सियत को बयान करता हो, आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता हो, और वो बहुत सारे सॉन्ग्स बताते हैं। तो अगर यही सवाल मेरे से पूछा जाए तो ये सॉन्ग जो है ये मेरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो इस सॉन्ग को सुनते हुए जरा एक बार मेरे को इमेजिन कीजिए। यू विल कम टू नो हु एम आई।
1: तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, मुसाफिर हूँ यारो।

0: सर आगे चलते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतने सालों तक जब आपने काम करा, तो उसके बाद राइटिंग में आना, वॉइस ओवर करना, पॉडकास्टिंग एंड देन द एक्चुअल ड्रीम जिसकी आपने स्थापना की, SN रेडियो, जो हम सबके लिए एक टेम्पल है ऑफ यू नो वर्किंग आर वर्किंग एंड आर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम अपनी यू नो वॉइसेस को वॉइस कर पा रहे हैं। तो इस खूबसूरत सफर में एक बहुत दिलचस्प सा ट्रांजिशन है फ्रॉम द फार्मेसी वर्ल्ड टू दिस। तो क्या आपके लिए SN रेडियो, क्या मैं जानती हूँ SN रेडियो क्या मायने रखता है आपके लिए, बट मैं हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहूंगी कि ये क्या एक मिशन है, एक विजन है, एक ड्रीम है, या आपके लिए भी एक टेम्पल है जो आप यू नो विच इज एवरीथिंग टू यू, जो आपकी जिंदगी का एक माइलस्टोन है। तो इस सफर के बारे में थोड़ा सा बताएं और SN रेडियो के बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: ओके, इंटरेस्टिंग। ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी लोगों को बताना।
0: जी
1: जिस वक्त मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, काफी वक्त गुजरा लोगों के साथ मिलना, पूरे इंडिया में, पूरे शहरों में डीप घूमना, ये सब हुआ। और फिर इसके बाद जैसे जैसे पोजीशन बढ़ी, मीटिंग्स अटेंड करना हुआ, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेना हुआ, फिर थिंक टैंक्स के साथ डिस्कशंस हो गए, फिर इसके बाद ऊपर MDs के साथ, प्रमोटर्स के साथ डिस्कशन टू डेवलप द बिजनेस, और वो थोड़ा ऊपर लेवल पर भी चला गया। हुआ क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सारे ओकेजन्स पे टाइम एंड अगेन लोगों की फीडबैक से ही, जाहिर सी बात है मुझे तो पता चला नहीं, क्योंकि मैं तो बस कर रहा था, मजे ले रहा था कह लीजिए, या फिर काम कर रहा था, लेकिन लोगों के फीडबैक आते रहते हैं, इधर से उधर से घूमते हुए, कॉम्पिटिटर्स के भी आते रहते हैं। किसी ऑलराइट यू स्पीक गुड, मोटे मोटे तौर पे ही आता था कि यू स्पीक गुड, हाउ एग्जैक्टली यू पुट योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी इज रियली वेरी वेरी कन्विंसिंग। अगर आप
0: इम्प्रेसिवनेस।
1: झूठ भी बोल रहे हैं तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि वो सच लगने लगता है।
0: जी।
1: टाइम एंड अगेन ये, मतलब मीटिंग्स में भी, बोर्ड मीटिंग्स में भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी ये चीज हुआ। जबकि ट्रेनिंग प्रोग्राम कहना बड़ा ड्राई सा लगता है कि जी मैं ट्रेनर हूं और आपको मैं सिखा रहा हूं, तो बड़ा बड़ा बोरिंग सा लगता है। ट्रेनर जो ट्रेनीज होते हैं वो कहते हैं अरे यार ये दिमाग चाट रहा है यार, कब बंद करेगा, चाय कब पीने को मिलेगी, वगैरह वगैरह। बट कितनी ही मीटिंग्स गुजरी, कितनी ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गुजरे, जितने भी ट्रेनीज थे वो वापस कॉल करके, और ऐसा नहीं कि उसी दिन, महीनों महीनों बाद भी कि सर हमें याद है कि उस ट्रेनिंग में आपने ये कहा था, ये चीज बोली थी, तो आई हैव यू नो इनकलकेटेड दिस थिंग इन माई लाइफ, ऐसा करके। तो मुझे लगा कि यार ये फीडबैक झूठ नहीं हो सकता। एक साल के बाद अगर बंदा ये बोल रहा है कि मैं आपने उस मीटिंग में ऐसा बोला था, तो दैट मीन्स मैंने उसको कहीं तो टच किया। ऑलराइट,
0: एब्सोल्युटली।
1: इस चीज ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। फिर इसके बाद जब मौका मिला एक रेडियो स्टेशन पे काम करने का, व्हेन आई थॉट ऑफ टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल फील्ड, तो रेडियो यूं तो बचपन से ही सुनते आए थे, लेकिन कभी उसकी रेडियो की आत्मा को, उसकी सोल को समझा नहीं था ठीक से। जब बिल्कुल उसके पास गए ना, तो जैसे होता है ना किसी ईश्वर के कदमों में जब आप बैठ जाते हैं, तो उनके उनके उनके पूरे ऑरा से निकलती हुई एक ठंडक आपको अपनी गोद में लेती है ना, तो आपको महसूस होता है कि व्हाट इज गॉड, वेयर एम आई, मेडिटेशन का मतलब क्या है, उस ऑरा का मतलब क्या है। उसी तरीके से मुझे रेडियो फील हुआ। तब मुझे लगा कि, और फिर आज के जमाने में जब पीपल आर नॉट लिसनिंग टू रेडियो, फिर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा नहीं यार, अब इसको वापस रिवाइव करना है। और अरे देखो ना तनुषा, इट्स सो डैम इजी। आजकल देखो ना सारे के सारे टीनेजर्स बच्चे, और इवन अक्षय कुमार जी को भी देख लो, और सारे के सारे वो ट्राउजर्स पहनने शुरू कर चुके हैं जो किसी जमाने में बेल बॉटम कही जाती थी। दैट मींस द
0: चाहे
1: सेम थिंग,
0: लड़कियां चाहे
1: चाहे
0: लड़के।
1: यस यस, अभी कुछ समय पहले तक तो लड़कियां चिपकी हुई जींस पहनती थी, अभी ढीली ढीली पहनने लग गई। ये क्या हो रहा है? सो दैट मींस द सेम थिंग इज कमिंग, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके,
0: करेक्ट।
1: सो आई बिलीव इन दैट, और रेडियो वापस आएगा, क्योंकि बहुत हो गया इंस्टाग्राम, बहुत हो गया फेसबुक, बहुत हो गया यूट्यूब, लोग बोर होने शुरू हो चुके हैं। दे'ल कम
0: एब्सोल्युटली।
1: बैक टू समथिंग रियली वेरी फ्रेश, जो कि एक रेडियो ही दे सकता है। सो इस सब चीजों को लगते हुए मुझे लगा, एंड देन कंबाइनिंग विद यू नो द कॉन्फिडेंस आई गॉट फ्रॉम ऑल दीज फीडबैक्स की दैट आई स्पीक गुड. रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी तो कहानियां और कंटेंट सारे पॉजिटिव कंटेंट्स रिकॉर्ड करने ऐसे आउट ऑफ शीयर पैशन. सो सब चीजें अच्छी लगने लगी और फिर इसके बाद रेडियो वाला मामला आ गया तो मैंने कहा अरे वाह ये तो यहाँ यूज हो सकती हैं. तब रेडियो SNN रेडियो टांटिया भील का विचार आया. बस ठीक है फिर चले तो लोग बाग जुड़ते चले गए. हमारे मेरे जैसे सोचने वाले आप जैसे लोग नितिन जैसे लोग जुड़ने लगे तो बस कॉन्फिडेंस आ गया. अब तो ये जर्नी चलती जाएगी रुकेगी नहीं.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल. टच फुट सर कारवां बढ़ता जाए और लोग ऐड होते जाए हमारे स्टेशन पे और SN रेडियो सच में उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाए जो आप विजन देखते हैं जिसका आप मिशन लेके चले हैं. आगे चलते हैं. जी जी आगे चलते हैं सर. फार्मा इंडस्ट्री के एक सफल प्रोफेशनल होने के बाद आपने ऑथरशिप में भी कदम रखा और आज हम आगे की जो चर्चा करेंगे वो आपकी ऑथरशिप और आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में करेंगे और आपकी किताब माई डियर MR. अगर आप इन सभी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जर्नी कहां से शुरू हुई कैसे शुरू हुई और माई डियर MR का जो थॉट था जो सीड था वो कैसे डल.
1: ऑलराइट दैट्स वेरी नाइस. यहाँ पर दो बातें आपने पूछी हैं लेकिन जवाब दो दोनों का एक ही हो जाएगा बड़े आराम से. द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑथरशिप एंड द सेकंड थिंग इज माई डियर MR है ना.
0: जी बिल्कुल.
1: सो जिस वक्त मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लेवल से ऊपर उठा और

0: जहां पर भी जिस भी पोजीशन पर गया, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ डिजिग्नेशंस, मुझे बहुत मजा नहीं आता है. ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है डिजिग्नेशन के पीछे जो व्यक्ति है उसको पहचानो. आई डोंट नो, समहाउ जब भी कोई भी कहता है ना आई एम समथिंग समथिंग समथिंग समथिंग, तो मुझे ना बहुत जबरदस्त सेटबैक होता है. मतलब इरिटेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ना बोर हो जाता हूं इमीडिएटली. आई लूज इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू द पर्सन, क्योंकि वो पर्सन ना अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, अपने बारे में नहीं बात कर रहा है, वो उस बारे में बात कर रहा है जो वो करता है,
1: कुर्सी के बारे में. जी, हाँ. जी.
0: So, मेरा एक बहुत प्यारा सा सवाल होता है, हर किसी से होता है जिसको मैं टीज करना चाहता हूं, दैट हु आर यू. तो 99.99% जवाब आता है आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ कुक, आई एम अ राइटर, आई एम अ टीचर, है ना, आई एम अ लॉयर, है ना, या फिर आई एम अ पॉलिटिशियन,
1: राइट.
0: तो मैं उनसे नेक्स्ट करता हूं कि देखो साहब, ये तो वो सारी चीजें हैं जो आप करते हो, आप कौन हो. मैं आपसे ये पूछा हु आर यू, मैंने ये नहीं पूछा व्हाट डू यू डू.
1: करेक्ट,
0: मैंने ये पूछा ही नहीं है आपसे. तो व्हाई आर यू टेलिंग मी दैट यू आर अ डॉक्टर.
1: करेक्ट.
0: तो एक तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है. तो ये थॉट काफी समय से, बहुत समय से जब मैं काम कर रहा था तभी से चलता था. तब हम कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपस में जो होते ही हैं, सब लोग बातचीत करते रहते थे कि यार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हमारी जिंदगी में वैसा होता है, किसी को समझ में नहीं आता कितनी मुसीबतों से हम आगे बढ़ते हैं, कितनी परेशानियां झेलते हैं, वगैरह वगैरह. तो कई बार ये भी बात उठती थी कि यार कोई लिखता क्यों नहीं है इसके बारे में, इट शुड बी नोन टू द वर्ल्ड इन राइटिंग. तो उस वक्त दिमाग में कहीं कहीं एक छोटा सा कीड़ा उठता था कि चलो कभी आएगा ना वक्त तो मैं लिखूंगा. फिर वो धीरा वो कीड़ा ना धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता हुआ हाथी बन गया. इवेंचुअली वो सर पे इतना भारी हो गया कि मुझे लगा कि भैया इसको लिखना पड़ेगा,
1: अब लिखना पड़ेगा.
0: कोई बात नहीं, उस दौरान कुछ बुक्स भी मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहा तो पढ़ता बहुत था. तो एक बुक हाथ में आई, अब उस राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सम स्प्रिंगफील्ड, स्टीव स्प्रिंगफील्ड ऐसा कुछ नाम है. तो उन्होंने बताया कि किताब कैसे लिखनी चाहिए. मैंने कहा वाह गुड, थैंक यू सो मच सर, बताइए कैसे लिखनी चाहिए. तो उन्होंने बताया कि आप तो लिखना शुरू करो, पन्ना उठाओ, कागज पेन उठाओ, लिखो, और कुछ भी लिखो सो तो आपका जो पहला ड्राफ्ट बनेगा दैट वुड सर्टनली बी अ शिटी ड्राफ्ट, बिल्कुल बकवास होगा, लेकिन पहला लिखना तो पड़ेगा. उसके बाद उस पन्ने को फेंक देना, दूसरा लिखना, तीसरा लिखना, चौथा लिखना. ओके, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया तो कोई लाइन इधर जा रही है, कोई लाइन इधर जा रही है, थॉट प्रोसेस इतनी तेजी से आते थे कि समझ में ही नहीं आता था.
1: ओवरवेल्म हो जाते हैं,
0: समझ में नहीं आता. मतलब ये लगता कि ओह पहले ऐसा करूं, नियॉन के बारे में लिख दूं, नहीं नहीं नहीं रेनबक्सी वाज गुड, नहीं नहीं नहीं इंटास वाज द बेस्ट. तो ऐसे ऐसे भाग रहा था. ओके
1: जी.
0: अब नाउ आई एम ट्राइंग टू कंबाइन दीज बोथ क्वेश्चंस ऑफ योर्स की माय डियर एमआर कैसे आई और ऑथरशिप, यानी कि ऑथरशिप कैसे शुरू हुई, मतलब ऑथर कैसे बने. तो जब ये लिखा तो हो गया कई, मतलब एक डेढ़ साल हो गया. पन्ने के पन्ने भरते रहे, डायरिया के डायरिया भरती रही. अब उनको मैं देखूं तो कहीं से कोई सिरा ही ना मिले. कौन सा पन्ना पहला होना चाहिए, कौन सा बाद का होना चाहिए, कुछ ना पता चले.
1: सबसे डिफिकल्ट. यस.
0: तो मुझे लगता था ये सब लिख तो डाला लेकिन इसका फायदा क्या, इसका क्या फायदा, ये तो मतलब ढंग से रख ही नहीं पा रहा हूं मैं इसको. तब इसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया, ओके ओके रुको रुको रुको होल्ड ऑन, ऐसा करो आपने ये सब कुछ लिखा है, ये आपने एक्सपीरियंस से लिखा है. मैंने कहा हाँ जी. तो ऐसा करो ना, आप अपनी ही कहानी लिखो ना, दैट यू हैड बीन देयर, ट्रू सच्ची कहानी, झूठ इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने ही तो जिंदगी दी जी है. तो कहां से शुरू हुए थे, वहीं से शुरू करो और फिर उन पन्नों को उठा के वहां रखते चलो, नंबर देते चलो. ऑल राइट, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर. ओके डन. तो पहला चैप्टर रीजेंसी का आ गया, आपने वहां पर वो चीज लिख दी. तो उसके बाद नियॉन हो गया, तो चलो नियॉन. तो जब इस तरह से करना शुरू किया तो टाइम लगा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से किताब बैठने लग गई. ऑफकोर्स क्योंकि मेरी लाइफ स्टोरी थी. तो यूं होता है ना, इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरे बारे में जाने, एवरीबडी विशेस टू बी लिसेंड. हाँ जी, मैं सुनाऊं और आप सुनो, ऐसा सब चाहते.
1: यस
0: तो ठीक है, मैं भी फूल कर कुप्पा हो गया और अपने बारे में लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा. अजी मैं अपने बारे में आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड ऑन दिस अर्थ लिखता गया. नहीं एवरीबडी,
1: जो आप कहते हैं गिफ्ट टू मैनकाइंड.
0: यस गिफ्ट टू मैनकाइंड. सो बट आई मस्ट यू नो प्रे यू नो गिव दिस क्रेडिट टू वन ऑफ माई सीनियर इन इंटास, जिन्होंने मुझे ये टर्म सिखाया गिफ्ट टू मैनकाइंड ऑन अर्थ. तो इज अ वेरी नाइस पर्सन. आई मस्ट कंग्रेचुलेट तो नहीं कहूंगा, मतलब ऑफकोर्स आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट. मोर ओवर या आई वुड लाइक टू टेल हियर कि माई डियर एम आर का जो फॉरवर्ड है वो उन्होंने ही लिखा है. आई रिक्वेस्टेड हिम इफ इट ऑल ही कुड डू इट. एंड डॉक्टर मनोज कुमार उनका नाम है, ही इज स्टिल इन इंटास. तो उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा. आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. तो ठीक है, लिखने लगे तो थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते पढ़ते फिर किताब ने शेप लेना शुरू कर दिया. बस
1: हाउ ब्यूटीफुल सर जी,
0: एग्जिस्टेंस में आ गई
1: जी जी. और यूनिवर्स ने थ्रो कर दी अपनी इंटेंशंस कि आपको ऑथरशिप में आना है, और आपने उसको कैच किया और आपने खूबसूरत किताब लिखने की जर्नी शुरू की. एंड फिर तो आपने चार किताबें लिखी जिनके बारे में हम और आगे के जो हमारे एपिसोड्स हैं इंटरव्यूज हैं उसमें जरूर बात करेंगे सर. तो इन्हीं खूबसूरत बातों के बीच में एक और आपकी पसंद का गाना हो जाए.
0: ओके, फर्स्ट सॉन्ग मैंने आपको बताया था कि मुसाफिर हूं यारो, करेक्ट. देर इज येट अनदर सॉन्ग आजाद फिल्म का जो धर्मेंद्र पर फिल्माया गया. धर्मेंद्र वॉज ऑलवेज ऑलवेज माई यू नो काइंड ऑफ अ ड्रीम गॉड कह लीजिए, ड्रीम एक्टर, एकदम एंजेलिक और क्या बोला जो रोमन चीजल्ड फेस एंड बॉडी, क्या बात है. राइट, तो और तो आजाद फिल्म में व्हाइट कलर के घोड़े पर बैठ के उनके ऊपर ये गाना फिल्माया गया था जिसको सुनता हूं मैं. तो ये गाना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं जब कभी भी डिप्रेशन में जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो मैं इस सॉन्ग को ही अपने फोन में हमेशा रखता हूं, सो दैट आई कैन प्ले एनी टाइम. तो इमीडिएटली उस सॉन्ग को चलाता हूं. वो है राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू. तो मैसेज आई गेट कि अरे यार अपने में मस्त रहो यार, दुनिया इधर की उधर हो, जाने दो जहां जो जा रहा है, अपने में मस्त रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आई विजुलाइज दैट सॉन्ग द वे धर्मेंद्र हैड बीन राइडिंग द हॉर्स एंड ही वाज सो कूल, एकदम मस्त अपने में, अपनी दुनिया में, अपनी महफिल में. तो इस वजह से सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है.
1: ब्यूटिफुल सॉन्ग,
0: प्ले दैट.
1: तो चलिए सुनते हैं. यस, राजू चल राजू फ्रॉम द फिल्म आजाद.

0: आगे चलते हैं समीर सर. आपने अपनी किताब में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को मैसेंजर ऑफ हीलर्स का एक यू नो एक दर्जा दिया है, एक ओहदा दिया है, जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं जी बल्कि ज्ञान और जानकारी को डॉक्टर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं. बट जो आज का युग है, जिस युग में हम रह रहे हैं, डिजिटल युग, जहां टेक्नोलॉजी और सेल्स टारगेट्स का दबाव बहुत ज्यादा है लोगों पे, तो क्या आपको लगता है कि आज भी एक एमआर सच में ये काम कर सकता है, जहां पे वो एक सेतु, एक ज्ञान के सेतु का काम कर सकता है, अपने प्रोफेशनलिज्म और अपने टारगेट से बढ़कर ये अचीव कर सकता है सिर्फ नंबर्स को नहीं ध्यान में रख के? क्या ये पॉसिबल है सर?
1: धनुषा, एक एनालॉजी की बात करते हैं. फर्ज कीजिए कोई एक थोरो ब्रेड अरबी घोड़ा, ओके, जो कि रेस कोर्स में दौड़ने के लिए बना हो. या फिर चलो एक मिनट इसको जरा सा चेंज करते हैं. राजस्थान में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक.
0: यस जी.
1: चेतक किस लिए बना था? व्हाट वाज ही फॉर? He was for fighting.
0: Correct.
1: He belonged in the war. वो battlefield के लिए था वो.
0: Yes.
1: उसने अपनी जान लगा दी, महाराणा प्रताप को बचाया कितने ही मौकों पर.
0: बिल्कुल.
1: Okay. Because he was made for that. अब फर्ज कीजिए चेतक को आप खेत में जोत दें, खेती करने के लिए कि साहब अब जमीन की गुड़ाई कीजिए और यहां पर हमें फसल उगानी है. तो इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए. आई एम अ बिग फैन ऑफ विजुलाइजेशन. कि चेतक right. वो खेत का जो हल है उसको भी खींच देगा. आई एग्री
0: जी.
1: क्योंकि उसको करना ही होगा, उसके मास्टर ने कहा है.
0: Correct.
1: वो खींच देगा. देन इमेजिन, देन जस्ट इमेजिन कि उसको दिखाई दे कि कुछ ही दूर पर कोई एक युद्ध हो रहा है, या उसको सुनाई भी दे जाए कि उतनी दूर पर जाकर एक युद्ध होना है और उसको हल से खोल दिया जाए और महाराणा प्रताप उसके ऊपर फिर से बैठ जाएं और उसको पुकारे कि चल चेतक, तो क्या करेगा वो? सोचो, वो छलांगे मारता हुआ, कुलाचे भरता हुआ, फुल एनर्जी के साथ वो कूद पड़ेगा बैटलफील्ड में.
0: करेक्ट.
1: तो अब इस एनालॉजी को बताते हुए मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जब शुरुआती दौर में आए थे, देवर मैसेंजर्स ऑफ द नॉलेज ऑफ मेडिकल फील्ड टू द डॉक्टर्स कि दवाइयां सर ये हैं, ये इस तरह से काम आती हैं, इनका असर ये है, इनका डोज ये है. वरना डॉक्टर्स तो काटा पीटी और डायग्नोसिस में लगे हुए थे ना, उनके पास इतना वक्त कहां था कि वो मेडिसिन में भी घुसे,
0: मेडिसिन को स्टडी.
1: तो देर हैज टू बी अ मैसेंजर.
0: बिल्कुल.
1: वरना वो चिट्ठी कैसे पहुंचती डॉक्टर्स तक कि ये इस तरीके का इलाज संभव है, ये रही इसकी दवाई. चलो, आपने आज के जमाने की बात की, सेल्स प्रेशर, कॉर्पोरेट प्रेशर और टारगेट, ये सब के चलते वो सारे के सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि चेतक हल में जोत दिए गए.
0: जी,
1: वो सिर्फ हल खींच रहे हैं और खेत को जोत रहे हैं जिससे कि फसल उग जाए, यानी कि टारगेट पूरे हो जाए.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन जिस वक्त महाराणा प्रताप उन्हें पुकारेगा, गिव मी द नॉलेज,
0: वो जरूर वापस आएंगे.
1: तो वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे और बताएंगे. इस वजह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको ये बतलाने के लिए कि तुम एक्चुअली क्या हो, भूल बैठे हो वो चीज मैंने वहां, तुम कौन हो, इसलिए मैंने वो चीज वहां लिखी. आज तभी मैं सारे लोगों को बोलता हूं कि यू डोंट गेट इट, तुम्हारे अंदर जो है वो तुम्हें नहीं पता. नॉलेज इज द की. अरे यार, डॉक्टर्स के आप पार्टनर हो उन्हें बताने के लिए. आप डॉक्टर्स को अपना बाप मत समझो, अपना मालिक मत समझो. वो तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए बैठे हैं, बस बोल नहीं पा रहे हैं. करेक्ट. एक सारथी हो. ब्यूटिफुल. आप उनके चैरियट के एक सारथी हो, चैरियटियर हो. अगर आप नहीं चलाओगे तो वो कैसे चलेंगे? यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस. तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों एक छोटा वर्ड नहीं है. किसी हालत में किसी डॉक्टर से नीचे नहीं है वो.
0: बिल्कुल.
1: मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना होते ना तो डॉक्टर्स के पास दवाइयों की नॉलेज होती ही नहीं. आई कैन बेट ऑन इट बिकॉज आई हैड बीन देयर अप टू द position where I used to train, I used to meet doctors who actually acknowledged कि हाँ यार आप लोग नहीं होते तो हमें पता भी नहीं होता.
0: Correct.
1: So that was the reason I mentioned the messengers of
0: beautiful knowledge. Right. And यही जानने के लिए MRs जो हैं, I think not just MRs, आपकी book एक I think Bible तो नहीं कहूंगी, एक parable है. Correct. एक textbook है जो सब management students को, सब corporate level लोगों को, MRs को तो पढ़नी ही चाहिए of course, because naturally the book is my dear MR, but management students को भी, और जो लोग top tier management में हैं, corporates में हैं, corporate roles में हैं बड़े बड़े, तो top down जो approach है उस सभी को समझने के लिए I think my dear MR is a parable which you can go, you can refer to and you can read to understand कि किस तरह से ये journey होती है. I hope you agree sir.
1: Absolutely. You are absolutely right. Moreover, I would just like to say one thing here. Abhi, I've been talking to some very good friend of mine and unhone mujhe ek book ke bare mein suggest kiya. The name of the book is The Case of the Bonsai Manager. R. Gopalakrishnan sahab hain jinhone Tata mein bahut samay tak kaam kiya, Hindustan Lever wagera. So unhone jo ye book likhi hui isme ek cheez mention ki hui hai ki ऊपर जो टॉप डाउन अप्रोच की जो अभी आपने एक टर्म यूज किया, दैट इज अ ब्यूटीफुल. लोग बाग जो टॉप पे बैठे हैं ना, वो दरअसल बोनसाई मैनेजर्स बन चुके होते हैं. यानी कि पौधा जो है वो एक ग्रो, एक लेवल, यू अंडरस्टैंड बोनसाई, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उसको दबा दिया जाता है. तो वो बोनसाई, वो समझते तो अपने आप को बहुत समझदार है कि वो बहुत बिग गन्स हो गए हैं, है ना. उन्हें सब स्ट्रेटेजाइज करना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज उन्हें पता नहीं होती. ठीक है, किसी जमाने में वो ग्राउंड से ही उठे हैं, लेकिन वक्त गुजर गया, वक्त, जमाना बदल गया, अब ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं,
0: और भूल जाते हैं,
1: वो भूल जाते हैं, एंड दे डोंट ट्राई टू स्टूप डाउन टू फाइंड आउट.
0: यस,
1: तो इस वजह से आई सिंसियरली सजेस्ट कि इवन टू द वाइस प्रेसिडेंट लेवल ऑफ द कंपनीज should actually go through this book to find out how should they stoop down to find out what exactly is happening on ground level. Otherwise, zameen khisak jayegi doston pairon tale, pata bhi nahi chalega. Aur aap vice president se kab ludkoge, malum bhi nahi padega. To behtar hai na, dekh lijiye. I'm trying to tell you what should you actually do. Ha, ab aap ego mein aa jaoge, who the hell will actually tell me what to do? To baat alag.
0: Yes.
1: फिर तो आपको भगवान भी आ जाए उतर के तो भी नहीं सिखा पाएगा.
0: Yes, तो फिर सेल्फ हेल्प बुक्स क्या कोई भी हेल्प नहीं कर सकता?
1: कोई नहीं हेल्प कर सकता.
0: करेक्ट. आगे चलते हैं सर, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह से आपने ये एनालॉजी ड्रॉ की है, बहुत सारी एनालॉजीज हैं, बहुत सारी एलिग्रीज हैं बुक में, तो आपने करियर ग्रोथ के दो रास्ते बताए हैं बहुत क्लैरिटी से, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. आपने जी आपने कहा है सचिन तेंदुलकर का जो उदाहरण है उसको अगर हम लेके चलें, तो जरूरी नहीं है कि सफल व्यक्ति को मैनेजर या कैप्टन बनना ही जरूरी है. अगर हम सचिन का एग्जांपल लें तो आज जब, जैसे हमने शुरुआत में भी बात की कि सब लोग डेजिग्नेशंस और प्रमोशंस के पीछे भागते हैं और उसी को पैमाना मानते हैं सफलता का, तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से एक अपने काम के सिर्फ एक्सपर्ट बनके, अपना जो आपका कोर, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके एक्सपर्ट बनके भी आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं, ये सोच कितनी चैलेंजिंग है, कितनी अनकन्वेंशनल है और कितनी डूएबल है आपके हिसाब से?
1: ऑलराइट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एंड सच बोलू धनुषा, ये जो सचिन तेंदुलकर वाली जो एनालॉजी है और धोनी वाली जो एनालॉजी है, मेरे हार्ट, मतलब दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है. जहां पर भी मैं मैनेजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कहीं पर भी मौका मिलता है जाता हूं, तो ये बात जरूर जरूर लोगों को कहता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो एक अंधेरे में जीते हैं, एक बगबियर कह लीजिए, या नहीं, नॉट बगबियर, मृग तृष्णा के पीछे चल रहे हैं. हमें प्रमोट होना है, हमें प्रमोट होना है, हमें प्रमोट होना है, हमें फ्लाई करना है, हमें फाइव स्टार में रुकना है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: फाइव स्टार में रुकना, फ्लाई करना, बड़ी अच्छी बात सुनाई देती है दोस्तों, लेकिन रात को 12 बजे पहुंचकर एक किंग साइज बर्गर खा के सुबह 4 बजे उठना, और 20 साल के बाद जब आप डायबिटिक और हाइपरटेंशन के मरीज होते हो ना, ये जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता. सो दोस्तों, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट ग्रो, इंपॉर्टेंट थिंग इज सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी की एनालॉजी यूज करके मैंने यहां बताने की ये कोशिश की थी कि यू आइडेंटिफाई योर कैपेबिलिटीज योर टैलेंट. सचिन वॉज नेवर मेंट टू

0: be our skipper. सचिन वॉज अ फैंटास्टिक बैट्समैन और आज के डेट में सचिन को कोई टच भी नहीं कर सकता, उसके रिकॉर्ड्स कोई ब्रेक भी नहीं कर सकता. डॉन ब्रैडमैन के बाद सचिन इज द बेस्ट,
1: राइट?
0: लेकिन ही वॉज नॉट अ कैप्टन. तो अननेसेसरली अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में एक बैट्समैन भी चला जाता और एक अच्छा कैप्टन तो मिलता ही नहीं. तो फायदा क्या? आपने अपनी जिंदगी प्रमोट होकर कैसे भी येन तेन प्रकारेण पॉलिटिक्स खेल के और क्या नाम है, सीकोफेंसी दिखा के और सब करके आप पहुंच गए, है ना? बट इवेंचुअली आप कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हो तगड़े वाला. क्यों? क्योंकि आप परफॉर्म तक, हाँ, स्किल्स ही नहीं है आपके अंदर, आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो. तो आप इवेंचुअली आप कंपनी को तो नुकसान कर ही रहे हो, कंपनी के छोड़ो, आप इवेंचुअली मारे जाओगे बहुत बुरी तरीके से. और शर्म के मारे कभी किसी को शक्ल नहीं दिखा पाओगे.
1: बिल्कुल.
0: सो बेहतर है डोंट डू इट, पहचानो अपने आप को. हाँ, आपने दूसरी बात कही हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड वर्टिकल ग्रोथ की. आई ब्यूटिफुली लव इट. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वो है जो सचिन तेंदुलकर ने की, कि वो उसी पोजीशन पर रहे, हॉरिजॉन्टली वो ग्रो करते रहे और आज के डेट में वो 1500 करोड़ के मालिक हैं.
1: Yes.
0: जबकि धोनी बींग कैप्टन 750 करोड़ पर ही बैठा है.
1: ओके,
0: सो पॉइंट इज यू नीड टू आइडेंटिफाई की डेफिनेशन क्या है आपकी सक्सेस की. भाई,
1: यस,
0: वुड यू वांट टू बी द बेस्ट बैट्समैन और द बेस्ट कैप्टन?
1: करेक्ट. एंड डू यू हैव द स्किल्स टू बी अ कैप्टन? मोर सो आई थिंक.
0: आप अपने आप को पहचानने में बुराई नहीं है, झूठ बोलना बंद करो.
1: करेक्ट.
0: सबसे ज्यादा तकलीफ दे यही बात है, 90% लोग झूठ में जीते हैं कि अरे नहीं यार मैं तो मैनेजर हूं.
1: करेक्ट
0: भाई.
1: करेक्ट.
0: आप अपने को भी नुकसान पहुंचा रहे हो और दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहे हो. डोंट डू इट.
1: बिल्कुल.
0: ऑलराइट.
1: बहुत ही खूबसूरती. यस, बहुत खूबसूरती से आंसर्ड सर. और बहुत ही प्यारा पार्ट है ये बुक का. आई थिंक दिस शुड बी रेफर्ड बाय एवरीबॉडी, आई थिंक, इन अ कॉर्पोरेट, हु इज वर्किंग टुडे इन अ कॉर्पोरेट, इवन इफ नॉट अ कॉर्पोरेट. आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में है जहां पे एक हायरार्की है, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि आप कहां लाइक करते हैं और किस तरह से अपने ग्रोथ मॉड्यूल को देखते हैं.
0: Correct.
1: तो अगेन सर जी, इन्हीं प्यारी बातों के बीच बीच हम एक और गाने का रिक्वेस्ट करेंगे, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो हम इस मुकाम पे सुनना चाहें.
0: ऑलराइट, आई विल थ्रो दिस गॉन्टलेट टू यू, यू प्ले योर फेवरेट सॉन्ग हियर.
1: ओहो सर, मेरे तो फेवरेट सॉन्ग बहुत ही थोड़े से सैड होते हैं, तो इफ यू अलाउ मी.
0: ओके,
1: तो मेरा एवर फेवरेट सॉन्ग है, जो मुझे फेवरेट सॉन्ग बोलते ही याद आता है, वो है दो नैना और एक कहानी, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी.
0: ऑलराइट,
1: मासूम चंद का. तो अगर आप चाहें तो हम ये प्ले कर सकते हैं.
0: श्योर, विल गो फॉर दैट, विल गो फॉर दैट.
1: जी जी.

0: आगे चलते हैं सर. अगेन ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और मैं जानना चाहती हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, पहले तो शायद फिर भी इसको गो टू करते थे. जैसे आपने बताया आपकी बुक में सुप्रिया का बर्थडे कार्ड और उससे उसके बिहाइंड की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपने कस्टमर प्रोफाइलिंग में डॉक्टर गुप्ता की 7 ईयर्स की जो बेटी थी सुप्रिया, उसको बर्थडे कार्ड भेजने वाला एक किस्सा बताया है किताब में. तो आज का जो जमाना है जहां सब कुछ डेटा ड्रिवन है, एआई है, एल्गोरिथम से चलता है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या एक एमआर सच में एक ह्यूमन टच, एक इमोशनल प्रोफाइलिंग को यूज कर सकता है जो मशीन से बहुत आगे है आज भी?
1: तनुषा, 300%. देखिए
0: जी,
1: मैंने पहले भी कहा, एवरीबॉडी विशेस टू बी हर्ड इन दिस वर्ल्ड, लिसन्ड इन दिस वर्ल्ड. और व्हाट एग्जैक्टली डज द मीनिंग ऑफ फेसबुक, फेसबुक का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग, फेस, फेस पहला वर्ड ही उसका फेस है, यानी कि यू शो योर सेल्फ देयर, राइट. आप अपने आप को रील्स बनाते हो इंस्टाग्राम पे, अपने आप को दिखाते हो,
0: टू बी सीन,
1: टू बी सीन, टू बी हर्ड, ओके. और टू बी सीन एंड टू बी हर्ड क्या चीज है, ये है ह्यूमन सेंसिटिविटीज,
0: एलिमेंट्स,
1: एलिमेंट्स. चाहे कितना ही भी एआई आ जाए, कितने भी लॉगरिथम्स आ जाए, कितना भी मॉडर्नाइज हो जाए, हमारे अंदर का ये ह्यूमन एलिमेंट कभी नहीं मरेगा, नेवर एवर, कभी नहीं मरेगा. आपको उसको टच करना ही करना है. सो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है ये चीज, जो चैप्टर आया एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. एंड लेट मी टेल यू दिस, ये जो स्टोरी है जो मैंने मेंशन किया है, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस विच आई डिड. ओके, द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाज माय सेल्फ, आई डिड इट, सो ऑफ कोर्स आई जस्ट चेंज द नेम, लेकिन आई डिड इट. और आई स्टिल बिलीव इवन टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ लॉगरिथम्स एंड एआई एंड एवरीथिंग, आई स्टिल बिलीव. तनुषा, इफ एट ऑल आई सेंड यू वन लेटर टुडे बाय पोस्ट, मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी इंसान को इस दुनिया में, किसी भी इंसान को, चाहे आप इंद्रानी जी, इंद्रानी को भेज दो, आप नितिन को भेज दो, आप आलोक जी को भेज दो, आप किसी को भी, उनको क्या नाम है, देशपांडे, कविता जी को भेज दो, एक चिट्ठी भेज के देखो, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक एंड हाउ मच मनी इट इज गोइंग टू टेक, मे बी नॉट मोर देन 5 रुपीज
0: एक्चुअली.
1: या और उसके बाद इम्पैक्ट देखना, आप उसका रिस्पॉन्स देखना.
0: यस, सो आई थिंक वो इंसान आपकी जीवन में एच हो जाएगा हमेशा के लिए.
1: पॉइंट यही है. देन मुझे याद है अच्छी तरीके से, व्हेन आई वाज वर्किंग इन डाबर ऑन्कोलॉजी, वहां पर हमारे जनरल डिप्टी जनरल मैनेजर साहब अभी भी हैं वैसे तो, ईश्वर की दया से, दिलीप कुमार चतुर्वेदी साहब, मैं बिल्कुल शान से फख्र के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा, इज अमेजिंग अमेजिंग बॉस, अमेजिंग अमेजिंग टीचर, अमेजिंग ओरेटर. तो उन्हीं से सीखा मैंने काफी कुछ बोलना. तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक बात सिखाई जो मुझे को जिंदगी भर के लिए चिपक के रह गई. देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन एम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट. ये बात मैंने अपने चैप्टर में भी लिखी हुई है. एम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट में जो डिफरेंस है दोस्तों, वो समझ लीजिए आप. एंटरटेनमेंट होता है कि मैंने आपको 2 टिकट भेज दिए मूवी के और कहा कि लो जाए आप मूवी देखाना. दिस इज एंटरटेनमेंट, आप गए, मजा किया, लौट आए.
0: करेक्ट.
1: एम्यूजमेंट सेम चीज में, आई कम टू योर डोर, नॉक, आप बाहर निकले और मैंने कहा चल मूवी देखने चलते, मैं 2 टिकट लेके आया हूं.
0: यू
1: वर नॉट प्रिपेयर्ड, आप बिल्कुल तैयार ही नहीं थे और आप एकदम झटके में, सरप्राइज, राइट. तो इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं. देखो मजा, बात मजे की हुई, आप एंटरटेनमेंट में भी मजा किया आपने, एम्यूजमेंट में भी मजा किया आपने, लेकिन उस मजे में फर्क हो गया.
0: यस, ओके, यस.
1: व्हाई डू वी ऑल थिंक कि ये जो मजे करने वाले पार्क्स होते हैं, इनका नाम एम्यूजमेंट पार्क रखा जाता है? क्या कभी किसी ने सोचा इसका नाम एंटरटेनमेंट पार्क क्यों नहीं रखा जाता?
0: राइट, राइट.
1: व्हाई अम्यूजमेंट? क्योंकि अम्यूजमेंट इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन फीलिंग, दैट इमोशन. वी ऑल विशेस टू बी अम्यूज्ड नॉट एंटरटेन्ड.
0: करेक्ट
1: सो
0: इवेंचुअली ऑल फाइंड दैट सोच दैट यस.
1: अगर कस्टमर प्रोफाइलिंग में आज भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिखाता हूं कि यू टच अ कस्टमर ऑन द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप चांद पर भेजोगे तभी वो खुश होगा.
0: right.
1: कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप मैकबुक दोगे तभी वो खुश होगा. नहीं भाई.
0: right.
1: अगर उसके पसंद के टेक्सचर की, उसके कलर की एक शर्ट भी आपने गिफ्ट की ना उसको, वो टच्ड होगा.
0: यस
1: दैट इज द रीजन आई मेंशन दैट स्टोरी कि उसकी बेटी के लिए एक बर्थडे कार्ड वॉज अ बिग थिंग. लेकिन किसी को भी, किसी को भी. अब जैसे तनुषा और मैं, ऑलराइट, मतलब इफ एट ऑल आई विश टू यू नो मेक तनुषा हैप्पी, सो आई कैन सिंपली सेंड वन विजिटिंग का सॉरी ग्रीटिंग कार्ड.
0: करेक्ट,
1: दैट इज गुड इनफ.
0: करेक्ट.
1: मजेदार वाली बात है ना, अभी देखिए मेरा बर्थडे गुजरा है. दोस्तों को मैं सुनने वालों को चिढ़ाना चाहूंगा. तनुषा ने मेरे को बहुत प्यारा सा गिफ्ट भेजा फादर्स डे पर. आई मीन शी कंसिडर्स मी एज अ फादर, सो आई रियली लाइक्ड इट. कि यार देखो, तो आई रियली लव्ड इट. वो छोटा सा कार्ड वो अभी भी मेरे टेबल पे मेरे सामने है. सो यू नो दिस आर फ्यू थिंग्स जो कि किसी इंसान को टच करती हैं. सो दोस्तों ढूंढो ढूंढो, लॉगरिथम्स में आप खो मत जाओ, बिकॉज यू आर स्टिल अ ह्यूमन.
0: यस यस. और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे मत भागो, अम्यूजमेंट
1: के पीछे भागो.
0: ब्यूटिफुल सर, ब्यूटिफुली पुट. एंड ये सच में बहुत यू नो एक लेसन लर्नड है मेरे लिए भी, लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड अप्रोचिंग इट इन दिस वे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. आगे चलते हैं सर, आज का हमारा आखिरी सवाल जो अगेन बहुत फिलोसफिकल है. आपने बहुत सारी जगह बताया और अपने खुद के अनुभवों से बहुत ईमानदारी से आपने साझा किया है कि जब आपका जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर था वो सक्सेस नहीं हुआ, तब आप कॉर्पोरेट दुनिया में वापस आए एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ यू नो अप्स एंड डाउन्स. तो आपके हिसाब से क्या जरूरी नहीं है जीवन हमारे मुताबिक चले, और वो जो असफलता का जो मोमेंट होता है तभी वो दौर होता है, तभी वो मौका होता है, वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां आप एक्चुअली जिंदगी को थोड़ा सा अनप्लग करते हो और अपने पैशंस को फॉलो करते हो, जैसे कि आपने किया अपने पैशंस को, वॉइस ओवर के पैशन को, रेडियो के पैशन को और बहुत सारे और चीजों को. तो क्या एक यू नो असफलता एक यू नो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? इसको फिलोसफिकल मोड पे हम अगर डिस्कस करना चाहें और एक लेसन की तरह से छोड़ना चाहें, क्योंकि आपने बहुत ऑनेस्टली अपनी जर्नी के बारे में यू नो बुक में भी लिखा है, तो मैं उसी ऑनेस्टी से आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी कि क्या आपका टेक है इस पे.
1: द वेरी फर्स्ट थिंग इज अनुषा, आई वुड लाइक टू गो बैक टू सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल हियर. सचिन तेंदुलकर ने भी असफलता देखी. एज अ कैप्टन ही फेल्ड मिजरेबली.
0: एब्सोल्युटली.
1: देन वो शर्म के मारे मर नहीं गया. ही रियलाइज्ड, ही आइडेंटिफाइड हिज कैपेबिलिटीज एंड देन ही इम्प्रोवाइज्ड ऑन दोज कैपेबिलिटीज एंड फिर वो आगे बढ़ा. तो वो एनालॉजी को यूज कर मेंशन करने के बाद आई कम हियर. मैंने अपना बिजनेस शुरू किया एंड आई फेल्ड मिजरेबली. आई एक्सेप्ट दैट. और मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है. सो लेट मी एक्सेप्ट दिस ऑडेशियसली, ओपनली, लाउडली. मैं शर्म खा के मुंह छिपा के कि जी मेरा बिजनेस नहीं चला, 3 साल मैंने क्या किया. नो व्हाई, लेट मी एक्सेप्ट इट यार.
0: करेक्ट.
1: उस एक्सेप्टेंस ने क्या क्या तनुषा मुझे बहुत ताकत दी. ट्रस्ट मी, ये हवा में बोलने की बात नहीं है. मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोलता हूं. जब मेरा बिजनेस फेल हुआ, आई अप्रोच्ड कॉर्पोरेट अगेन टू गिव मी अ जॉब. तो प्रैक्टिकली वही इंचार्ज में मनोज सर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड देन एचआर में मेरा जो इंटरव्यू आया, तो वहां से मुझे पता चला व्हाई एग्जैक्टली दे कंसिडर्ड मी फॉर दैट पोस्ट. एचआर मैनेजर ने मुझसे कहा कि समीर हमें ये बात अच्छी लगी दैट यू ओपनली एक्सेप्टेड दैट यू फेल्ड.

0: तब जब ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, तब मेरे को लगा कि भाई वक्त आ गया है, अब मुझे अपनी कैपेबिलिटीज को और पहचान लेना चाहिए। अभी तक तो मैं छुपा हुआ था, मतलब एक टर्टल शेल में, अब जरा कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब कमाल है, 3 साल में मेरी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई, मैं सड़क पर आ गया, तो क्या बचा? नंग बड़ा भगवान से, अब क्या कोई उखाड़ लेगा मेरा? तो लेट मी, क्या बचा? सो लेट मी फाइंड माई पैशन, लेट मी फाइंड वाई वट वे एग्जैक्टली आई विश टू लिव माई लाइफ। तो चल पड़े, तो सामने आ गया कि भाई ठीक है, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाओ, रेडियो ये वो, मैंने डन, देखा जाएगा। खाते तो सब वही दो रोटियां
1: है ना, कोई बहुत नहीं।
0: कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा मतलब कि 10-12 फीट का होता है क्या? बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है और 10-12 फीट का हो गया, वो 20-25 रोटी खाता है क्या? मेरे को दिखा दो कोई बड़ा आदमी 20-25 रोटी खाते हुए। साला खाने वही 2 रोटी है, तो वो तो मैं, मुझे भगवान बहुत आराम से देता है,
1: देता है राइट।
0: तो मैं प्यार से अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, यही चीज मैंने बुक में मेंशन की है
1: जी,
0: कि मृग मरीचिका के पीछे दोस्तों मत भागो, कुछ हासिल नहीं होगा, वक्त गुजर जाएगा, बाद में रोते रहोगे।
1: बिल्कुल, और अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो, आई थिंक दैट इज अ गेम चेंजर, टू डाइन योरसेल्फ बी ट्रू, आई थिंक दिस अबव ऑल टू डाइन योरसेल्फ बी ट्रू,
0: एब्सोल्युटली। इसमें यहाँ पर एक बस लास्ट में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, कई बार मैं बोल भी देता हूँ कि दोस्तों आप इस दुनिया में, संसार में, इस यूनिवर्स में सिर्फ 2 लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य हो। यू आर आंसरेबल ओनली टू 2 पीपल, नंबर 1 योरसेल्फ, नंबर 2 योर गॉड, काम खत्म। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जो आके तुमसे पूछा है तुमने ये क्या किया, नो यू आर नॉट आंसरेबल, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नहीं जी। आप अपने अंदर अपने को जवाब दो, व्हाई डिड यू डू इट, और अपने भगवान को जवाब दो, व्हाई डिड यू अलाउ इट।
1: Correct. How beautiful. Why did you allow it? Yes.
0: Simple.
1: So beautiful. Yes. Yes. Beautiful. Beautiful. So such a enlightening, such a lively interview. Aaj mere liye sach mein milestone interview tha. I can't thank you enough for being here as a guest in your own show, like I said. Aur mere liye Zindagi Unplugged is one of the most special episodes that there can be. Thank you so much for being with us and sharing so beautifully all your experiences and of course about my dear MR, जो मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोग पढ़ें और समझें जीवन के ग्राफ को, अपनी वर्क लाइफ के ग्राफ को, और उससे कुछ सीख लेके जाएं, क्योंकि एक्चुअली अगर सेल्फ हेल्प बुक भी आप नहीं पढ़ सकते अपने लिए, तो आई थिंक आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने लिए। सो दिस इज द इजिएस्ट वे, यू कैन जस्ट गो पिक अ बुक, रीड इट एंड अंडरस्टैंड योर जर्नी थॉरली, एंड आई थिंक मेक यूज ऑफ थिंग्स दैट आर मेंशनड इन द बुक। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, आई रिकमेंड इट टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू अस।
0: Thank you so much.
1: Thank you, sir. Thank you, sir.
0: Pleasure. Thank you.
2: समीर सर से आज की बातचीत में हमने सिर्फ एक प्रोफेशनल कहानी नहीं सुनी दोस्तों, बल्कि एक ऐसे इंसान से मुलाकात की जो लगातार सीखता रहा, बढ़ता रहा और अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता रहा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जिंदगी के इतने अनमोल अनुभव हम सभी के साथ साझा किए और अपनी खूबसूरत किताबों के जरिए हम तक अपने जज्बात, अपने तजुर्बे को पहुंचाया। दोस्तों मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलेंगे फिर एक नए मेहमान, एक नई कहानी और एक नई जिंदगी के रंगों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जिंदगी को दिल से जीते रहिए, क्योंकि जब जिंदगी अनप्लग होती है तभी कहानियां सच में बोल उठती हैं। नमस्कार।

हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है।

फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, जानते हैं जॉन डेवी जी के बारे में। शिक्षा की शरण में जाना मनुष्य होने की सबसे बड़ी शर्त है। वैसे तो शिक्षा सिलसिला है, लेकिन जिंदगी में सोचने समझने की शुरुआत के समय ही शिक्षा यदि शुरू हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अपने गुजारे के लिए हर सुबह अखबार बांटने वाला वो किशोर भी सोने पर सुहागी की तलाश में ही स्कूल जाता था। अमेरिका में तब स्कूली व्यवस्था जर्जर थी, देश गृह युद्ध में ही खर्च हुआ जा रहा था, मास्टर खासे रोष खाए रहते थे। कुछ मास्टर तो हर दम बस कोड़ा था में हाथ साफ करने की फिराक में ही दिखते थे, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो रोज पिटने के लिए ही शायद स्कूल आते थे। 54 गलती पर 16 आने पिटाई मामूली बात थी। हर बार कोड़े से ज्यादा जुबान बरसती थी। सब मानते थे कि चलो शिक्षक हैं तो अकड़वा बोल सकते हैं, सीधे सीधे बेवकूफ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब पिटाई होती तब हर कोई बस तमाशा ही देखता। ज्यादातर लोग दूसरे की पिटाई देखकर मंद मंद मुस्कुराते थे, पर उस किशोर को पिटाई की व्यर्थता तब भी समझ में नहीं आती थी। वो सीधा साधा स्कूली किशोर बहुत बचकर चलता था। स्कूल में अच्छे अनुभव कम और बुरे अनुभव ज्यादा मिलते थे। पढ़ना अच्छा लगता था, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, लेकिन स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो हद हो गई, एक गरीब लड़के की जमकर पिटाई हो रही थी। सारे शिक्षक बेचारे लड़के को ऐसे पीट रहे थे मानो गृह युद्ध हो रहा हो। सामंत स्वभाव के शिक्षक अपने अहंकार पर पड़ी हुई किसी मामूली सी चोट का बदला ले रहे थे। पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो लड़का भय से और अपमान से थर्रा रहा था, उसकी सहमी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई सुनवाई नहीं। लड़का बचाव में जब भी मुंह खोलता और मार शरीर पर पड़ती। उस गरीब लड़के की पिटाई पर तब भी लोग मुस्कुरा रहे थे, पर ये संवेदनशील किशोर अंदर ही अंदर रो रहा था। कमजोर था ना, चुपचाप रह गया, क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो वो भी नहीं बचता। स्कूल की ये त्रासद घटना मानो दिल में बस गई। पिटने वाला बच्चा तो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक शिक्षा और स्कूल के प्रति जो सहज लगाव होना चाहिए वो तो कभी नहीं आएगा। दिल में गांठें रह गईं, कभी फिजूल डांट से तो कभी बेरहम मार से। कौन रोके डांट और कौन रोके पिटाई, बस चिंतन की धारा बह निकली। शिक्षक शायद इसलिए पीटते थे कि एक ही बार में सुधार देंगे, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने हमेशा के लिए कितना कुछ बिगाड़ डाला। पिटाई से सुधरने की गारंटी तो नहीं, पर बिगड़ जाना तो बिल्कुल तय है। और ऐसे बिगड़े माहौल में न जाने कितने स्कूल चल रहे हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, अपने चारों तरफ देखिए तो, बच्चों को स्कूलों में घसीट घसीट कर डरा धमका कर लाया जा रहा है। नहीं नहीं, शिक्षा का ये रूप तो बिल्कुल गलत है, एक नया रूप बनाना होगा। उस किशोर ने, यानी कि जॉन डेवी ने, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में ही टीचर बनना मंजूर किया। बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 2 साल में ही एहसास हुआ कि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। स्कूल में पढ़ाते रहने से कुछ नहीं होगा, दार्शनिक बनना होगा, तभी बड़े पैमाने पर लोग बात सुनेंगे और सुधार करेंगे। स्कूल की पक्की नौकरी छोड़कर जॉन डेवी उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में चल पड़े।
शिक्षा सुधार के तमाम सुझावों प्रयासों के साथ उन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हम अनुभव से नहीं सीखते, हम अनुभव पर चिंतन करने से सीखते हैं। शिक्षा खुद की कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि क्रिया के चयन के माध्यम से बहती हुई हमेशा बहने वाली चीज है। शिक्षा की दुनिया में उनका नाम गूंजने लगा। वो उसी कोलंबिया कॉलेज में पढ़ाते थे जहां पढ़ने के लिए भारत से भीमराव अंबेडकर जी गए थे। पूरे 2 साल जॉन डेवी ने अंबेडकर को अपने पास रखा और सिखाया कि शिक्षा ही लोकतंत्र की नींव है। बहुत प्यारे स्वभाव के प्रोफेसर जॉन डेवी की शिक्षा अंबेडकर के बहुत काम आई। अंबेडकर ने बार बार माना कि उन्हें बनाने में जॉन डेवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी अंबेडकर याद किए जाते हैं, जॉन डेवी जी भी ही याद आते हैं। जॉन डेवी 1859 से 1952 तक कोड़े मारने वाले उन शिक्षकों को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए बहुत काम किया, पर अभी भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चे, सारे लोग अभी भी पूरी तरह से शिक्षित और जागरूक हुए नहीं हैं। शिक्षा अभी भी पूरी स्नेहिल हुई नहीं है। एक दिन आएगा जब दुनिया के सभी स्कूलों में सारे टीचर्स कक्षा में आते ही सीधे पढ़ाने नहीं लग जाएंगे, बच्चों को कुछ करने के लिए देंगे और बच्चे कुछ कुछ करते हुए सच्ची शिक्षा पाएंगे।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर

रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। आइए दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो अपने आप में मोटिवेशन का एक स्तंभ बन चुका है। इस गांव से बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। मध्य प्रदेश का कांकड़ी गांव वैसे तो एक बहुत साधारण सा गांव है, पर यहां के आदिवासियों ने इसे हरा भरा करने और गांव की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ने की जो राह अपनाई है वो असाधारण है। काकड़ी गांव सतपुड़ा अंचल का एक छोटा सा गांव है जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कारण वहां बनाया गया था। इसमें बस 34 घर हैं, सभी कोरकू आदिवासी हैं। वो गांव के जयसिंह बताते हैं कि इस बदलाव की कहानी वर्ष 2015-16 से शुरू हुई, जब ये गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विस्थापित किया गया। यहां नए गांव के रूप में बसने के लिए सब तैयार हुए। जयसिंह बताते हैं कि आपसी विचार विमर्श के बाद गांव बसाने की पूरी योजना बनाई गई। सभी लोगों ने मिलकर बैठकों में सब कुछ तय किया। योजना के अनुसार जब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए तो पंक्तिबद्ध मकान बनाए गए, फिर उनके आगे 50 फुट जमीन खाली छोड़ी गई। इन खाली जगहों में दो पंक्तियों में फलदार और छायादार पेड़ लगाए गए। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि जब भी यहां किसी की बेटी की शादी होगी तो उसके ससुराल में दो फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे उसे इस गांव की याद हमेशा आती रहे। पुनर्वास समिति के अध्यक्ष लखनलाल कलमे ने बताया कि हमने वर्षा के पानी की बूंद बूंद को भूजल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यहां के हर घर की छत पर पानी जमीन के अंदर वर्षा जल संचयन पद्धति से डाला जा रहा है, जिससे कि भूजल का स्तर बढ़ रहा है। जयसिंह ने बताया कि उन्होंने जैविक खेती शुरू की, जिससे जैविक अनाज के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता। किसान आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता फाग राम जी कहते हैं कि उनका संगठन हमेशा से ही जंगल बचाने और हरियाली का पक्षधर रहा है। काकड़ी के लोग भी संगठन से जुड़े हैं। ये पहल दूसरे गांव में भी होनी चाहिए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस तरह की पहल बैतूल जिले में श्रमिक आदिवासी संगठन भी चला रहा है, जो बारिश के पहले गांव गांव में हरियाली यात्रा निकालकर पौधे लगाने का संदेश देता है। जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में पेड़ों और हरियाली से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने का एक तरीका है। जैविक खेती में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता ही नहीं, दूसरी ओर मिट्टी भी बेहतर रहती है। यह पहल सराहनीय होने के साथ साथ अनुकरणीय भी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की पहल हमारे ही देश में छोटे छोटे गांवों में शुरू हो चुकी है। क्या हमें थोड़ा और जागरूक नहीं होना चाहिए इस बारे में?

दोस्तों, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम पहचानें कि नेगेटिव चीजें हमारी तरफ आए ही नहीं, और अगर वो आए भी तो हम उन्हें अपने पास आने की इजाजत न दें। सावधान रहें दोस्तों, हमेशा खुश रहें, जोश से भरे रहें। आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ।

ना से ही है हां का अस्तित्व। दोस्तों, कभी सोचा है कि सच को कौन पसंद करता अगर झूठ ना होता, या उजाले की इज्जत कौन करता अगर अंधेरा ना होता? बुराई ना होती तो अच्छाई किस कोने में पनाह पाती? दर्द ना होता तो खुशियों की कद्र कैसे होती? धूप ना होती तो छाह में कौन जाकर बैठता? मृत्यु का भय ना होता तो हमारे जीवन का मूल्य कैसे समझते? इन और इन जैसी तमाम मिसालें गिनाने का मकसद यह है कि जब भी हम सकारात्मक चीजों को प्यार और नकारात्मक चीजों से नफरत करते हैं तो इस सत्य और तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि नकार से ही सकार की सार्थकता है। अंधेरा प्रकाश को निखारता है, बुराई अच्छाई को मजबूती देती है, दर्द खुशियों को महत्वपूर्ण बना देते हैं। झूठ का होना हमें सच की पहचान, उसका सम्मान सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने की चीजों की पृष्ठभूमि में सुनहरे या पीले की बजाय, अथवा मोती के नीचे सफेद या रुपहले की बजाय स्याह गहरे रंगों के कागज या कपड़ा रखने से वो और ज्यादा चमक बिखेरने लगते हैं। लेकिन जीवन हमें सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही सार्थक बनाना सिखाता है। हम भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में झूठे ना होते तो सच्चे किस बात पर इतराते, बुरे ना होते तो अच्छे किस बात का गरूर करते। हर नायक को लोकप्रियता पाने के लिए एक अदद खलनायक की जरूरत

होती है। हर शय अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अपना खलनायक चुन लेती है। हमारी सकारात्मक और नकारात्मक की परिभाषाएं बहुत संकुचित हैं। मोटे तौर पर जो चीजें हमें सुख, शांति और लाभ दें वे हमारे लिए सकारात्मक हैं, और जो कष्ट दें, हानि पहुंचाएं, वो नकारात्मक। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग नकारात्मक में भी सुख पाते हैं और बहुत से लोग सकारात्मक चीजों से भी कष्ट का अनुभव करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दो सापेक्ष चीजें हैं और दोनों की ही अपनी अपनी समयानुसार उपयोगिता है। कई बार हमें उजाले से ज्यादा अंधेरे की जरूरत महसूस होती है। कई बार हम सच की जगह झूठ बोलकर बहुत सी संभावित समस्याओं से बच जाते हैं। कई बार हमें छांव की बजाय धूप का होना ज्यादा उपयोगी लगता है। एक ही बारिश कहीं जीवन का संदेश लेकर आती है, कहीं प्रलय का कारण बन जाती है। जिस कुएं से लोग प्यास बुझाते हैं उसी कुएं में कोई अपनी जान दे देता है, लेकिन यह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक तो वही है जिस रूप में प्रकृति से हमें मिला है। हम ही हैं जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे अपने अनुरूप या प्रतिकूल मान लेते हैं। सबसे विचित्र बात तो ये है कि नकारात्मकता हमें स्वतः मिलती है, हमें उसे और कहीं से प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम अंधेरे को उत्पन्न नहीं करते, उसे दूर करने के लिए प्रकाश के स्रोत रचते हैं। खुशियों की तलाश में हम ताजिंदगी जतन करने में लगे ही रहते हैं, लेकिन दुख खुद ब खुद हमारी राह में आ जाते हैं। अपनी परिवेश को सुगंध से भरने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन दुर्गंध के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं से घुसपैठ कर ही लेती है। जिस समय हम जीवन में सिर्फ सकारात्मकता चाहते हैं, उस समय जीवन को उसके अधूरेपन के साथ प्राप्त करते हैं, प्रकृति के नियम का निषेध करते हैं। जबकि सच तो यह है कि नकारात्मकता जीवन को संपूर्णता देती है, हमें उसका सम्मान करना सिखाती है। हम नकारात्मकता से कितना ही दूर भागें, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था निर्मित की है कि वो हमें नकारात्मकता को अनदेखा करने ही नहीं देती। जैसे कि कोई मां ये पसंद नहीं करती कि कोई उसके एक बच्चे को दुलार करे और दूसरे का तिरस्कार करे, प्रकृति भी हमारे सामने सकारात्मकता के साथ हमेशा नकारात्मकता परोसने में कभी कंजूसी नहीं करती। इसी व्यवस्था के कारण हम सकारात्मकता को जितना ज्यादा प्रेम करते हैं वो उतनी ही अस्थाई हो जाती है, जबकि नकारात्मकता ज्यादा स्थाई और निश्चित होती है। सोचिए कि जीवन में ज्यादा सकारात्मक क्या हो सकता है। लेकिन मृत्यु कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, एक ना एक दिन इसका अंत कर ही देती है।

दोस्तों, खुश रहना, उत्साहित रहना, जोश से भरे रहना हमारे अपने हाथ में है। हम ये हक किसी और को कैसे दे सकते हैं कि वो हमारे मूड को जब चाहें बदल दें? नहीं, हमारा मूड हमारा है, हम जोश से हमेशा भरे रहेंगे, ये हमारा वादा है। मैं हूं आपका दोस्त समीर, बने रहिए मेरे साथ। मौन का महत्व। अंग्रेजी में इस कहावत को कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन को प्रथम दृष्टया आत्मसात कर पाना जरा कठिन ही है। इसकी वजह यह है कि एक ऐसी दुनिया जहां शब्द, भाषा, वाक्य चातुर्य एक निरंतर फलते फूलते उद्योग के रूप में प्रतिष्ठित है, हम खामोशी की हिमायत भला किस आधार पर कर सकते हैं? लेकिन हमारी संस्कृति में भी एक चुप सौ को हरावे की अवधारणा में विश्वास व्यक्त किया गया है। आखिर क्या है इस चुप्पी का रहस्य जो इसे शब्दों से ज्यादा ताकतवर और मूल्यवान बनाता है? मुझे चुप रहने वाले लोगों का भी सानिध्य मिला है और बड़बोलों का भी, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बड़बोले ज्यादा से ज्यादा आपकी खीज की वजह बन सकते हैं, लेकिन खामोश रहने वालों की चुप्पी आपको तरह तरह से तकलीफ देती है, अपमानित करती है। यूं ही नहीं कहते कि समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कई बार यह इतना लाउड हो जाती है कि आपके कानों के पर्दे फटने लगते हैं। दरअसल शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, मुंह से निकलने के बाद आप उनके दो तीन से ज्यादा अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन खामोशी अपने आप में असंख्य अर्थ लिए रहती है। आप इन अर्थों की भूल भुलैया में उलझकर अपना सुख चैन सब खो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि शब्दों को ऊर्जा नाहक ही कहा जाता है, खामोशी में तो उनसे ज्यादा ऊर्जा भरी हुई होती है। यूं भी कह सकते हैं कि शब्दों में अगर एक चिंगारी जितनी ऊर्जा है तो खामोशी में अणु जितनी। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ही का सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे संजीदा हालात तब पैदा होते हैं जब दोनों आमने सामने आते हैं। कई बार शब्दों को परास्त करने के लिए खामोशी का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार खामोशी को काटने के लिए शब्दों का। राजनीति को ही लीजिए, एक वक्त नेता बोलता है, जनता चुपचाप सुनती है, तो एक वक्त जनता बोलती है और नेता को चुपचाप उसकी बात सुननी पड़ती है। खामोशी और शब्द एक ही तराजू के दो पलड़े हैं जो वक्त की नजाकत के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि अगर दुनिया को दोनों में से किसी एक को अपने लिए चुनने को कहा जाए तो उसके लिए क्या बेहतर होगा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहां हम देखते हैं कि प्रकृति ने मौन और कोलाहल दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करके रखा हुआ है। जैसे कि नदियां शोर मचाती हैं, सागर शांत रहता है, बादल गरजते हैं, आकाश अपने मौन व्रत पर अडिग रहता है, पत्तियां खड़खड़ाती हैं, वृक्ष चुप्पी साधे रहते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि खामोशी विशालता की द्योतक है? ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि विशालता चुप्पी की शर्त है या चुप्पी विशालता की जरूरत। पर जहां तक जीवित प्राणियों का संबंध है तो मेरा विचार यह है कि मौन हमारा नैसर्गिक गुण नहीं है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है तो हर क्षण उसका एहसास कराने के लिए शब्द भी दिए हैं, ध्वनियां भी दी हैं। हम बोलने के लिए बने हैं, मौन हमें ओढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि खामोशी का कोई मतलब नहीं। शब्द और ध्वनियां हमें हमारे परिवेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो खामोशी हमें अपने भीतर ले जाने का काम करती है, आत्म साक्षात में हमारी मदद करती है। ध्वनियां और मौन दोनों का अपना अपना महत्व है। खामोशी अगर अप्रिय स्थिति से बचाती है
तो संवाद उस अप्रिय स्थिति से बाहर निकालने में सहायक होता है। अगर आप इलाज से परहेज बेहतर वाली सोच के कायल हैं, तो खामोशी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि दोनों की ही अधिकता समस्याओं का कारक बनती है, इसलिए दोनों के मध्य एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: सायरा बानर्जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना। तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई,
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

0: रखिए।
1: धन्यवाद आरती जी।
0: जी माथुर साहब, आइए माथुर साहब, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला मेरा ये आपसे सवाल है कि भारत फोर्स में वीपी क्वालिटी एश्योरेंस के पद पर आपकी कॉर्पोरेट जर्नी कैसी रही, और ये भी कि इंजीनियरिंग की उस सख्त दुनिया से निकलकर सुरों और समाज सेवा की दुनिया में आने का ये ट्रांजिशन, ये सफर आपके लिए कितना खास रहा?
1: सबसे पहले तो आरती जी, मैंने भारत फौज में जब ज्वाइन किया था, कॉरपोरेट लेवल पर ज्वाइन नहीं किया था। मैंने ज्वाइन किया था एज ए सीनियर मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, जो उस समय
0: जी
1: के हिसाब से उस डिवीजन के लिए वो सबसे सीनियर पोजीशन थी, लेकिन कॉरपोरेट तो नहीं थी, कॉरपोरेट पोजीशन तो नहीं थी वो। लेकिन ये है कि 17 साल भारत फौज में काम करने के बाद मैं जरूर एक अच्छी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे पहुंच गया था। जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं जब वहाँ से रिटायर हुआ, तब मैं 17 साल बाद आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट क्वालिटी एश्योरेंस। और ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रही, बहुत टफ रही, क्योंकि मुझे उस तरह के पार्ट्स बनाने का कोई भी अनुभव नहीं था, जिस तरह के पार्ट्स के लिए मुझे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। मेरे लिए बिल्कुल ही वो टेक्नोलॉजी भी नई थी और वो पार्ट्स भी सब नए थे, तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा। लेकिन वो है कि जब आपको अपना पढ़ाई करी हो और आपको पता हो कि ये फोर्जिंग क्या होती है, कैसे बनती है, तो वहाँ मशीन्स के मैनुअल्स वगैरह पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसी के दम पर सीखकर मैंने पूरा डिपार्टमेंट 17 साल तक हैंडल किया। और जब मैंने शुरू किया तो वहाँ पर एक प्रेस लाइन थी, और जब मैंने छोड़ा तो वहाँ पर 17 प्रेस लाइन्स थी और 3 प्लांट्स थे। तो जब मैंने छोड़ा तो एक ही प्लांट था, लेकिन जब जब ज्वाइन किया तब एक ही प्लांट था, जब छोड़ा तो 3 प्लांट्स थे इंक्लूडिंग 17 प्रेस लाइन्स। तो आई थिंक जैसे जैसे मैं सीखता गया, मैं इम्प्लीमेंट करता गया अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो मेरी सीख थी, जो मेरी समझ थी, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया और सक्सेसफुल रहा बहुत कुछ। बाद में आपका सवाल था कि समाज सेवा की दुनिया में आने का ये सफर कितना खास रहा। तो समाज सेवा की दुनिया में आने का जो सफर था, वो तो अचानक 2020 में कोविड से शुरू हो गया, जब मैं भारत फोर्स से
0: जी
1: रिटायर हो चुका था और कंसल्टिंग भी कर रहा था। उस समय करीब 10 साल 12 साल मैंने कंसल्टिंग करी। 2008 में भारत फोर्स से रिटायर हुआ और 2020 में कोविड आ गया, तो 12 साल मैंने कंसल्टिंग करी। तो कोविड के दौरान ये समाज सेवा का, जो गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से मुझे शुरू करने का अवसर मिला, क्योंकि घर बैठे थे, खाली थे, कोविड बहुत पूरी तरह फैला हुआ था, तो सोचा घर बैठे बैठे क्या क्या करेंगे। तो हमने ऐसे ही एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम शुरू किया और वो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमारा पहला
0: जी
1: जो प्रोग्राम था वो नो हंग्री चाइल्ड बेंगलोर के लिए था, जिसमें
0: जी
1: हमने फेसबुक लाइव में वी कुड कलेक्ट अबाउट 70,000 रुपीज फॉर नो हंग्री चाइल्ड। तो वहां से हमारी ये शुरुआत हुई जी।
0: बहुत खूब, क्या बात है। इंजीनियरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस की उस सब दुनिया से निकलकर माथुर साहब सुरों की और समाज सेवा की के इस रास्ते पर आना सचमुच बहुत खास है। आपने कॉरपोरेट जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने दिल के एहसासों और संगीत को जिस तरह जिंदा रखा, वो हम सबके लिए एक मिसाल है। आपकी इस शानदार जर्नी को सलाम करते हुए आइए फिर सुनते हैं आपकी पसंद की ये पहली खास गजल जो आपने हमें गाकर भेजी है। ये है, नजर नजर से मिलाकर शराब पीते हैं हम, उनको पास बिठाकर शराब पीते हैं। ये जगजीत सिंह साहब की गाई हुई है और
1: जी
0: आपने हमें ये गाकर भेजी है। तो आइए फिर आप और हम और अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं आप ही की गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल।

0: जी बहुत खूबसूरत नाथुर साहब, आपने कितनी सादगी से, कितने प्यार से ये गजल गाई है। आपकी आवाज का ठहराव सब नजर आता है कि आपने इसको कितने दिल से गाया है। बहुत खूब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नाथुर साहब, अब आप ये बताइए हमें कि
1: जी
0: आपकी बातें सुनकर सचमुच दिल में बहुत सामान सा भर जाता है। तो ये बताइए कि रोटरी क्लब के जरिए 300 जरूरतमंद लोगों को प्रोस्थेटिक लेग्स दिलवाने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? और फिर इससे साथ ही जुड़ा हुआ ये दूसरा सवाल है कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस, पोलियो अभियान और अनाथ बच्ची की तालीम, महाशांति मतलब जिसका नाम है कि जिम्मेदारी उठाने जैसे कामों ने आपके दिल को कितनी सेटिस्फेक्शन दी?
1: आरती जी, मैं पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि वो रोटरी में रोड सेफ्टी अवेयरनेस और पोलियो वैक्सीनेशन जो है, ये बड़े रूटीन, और ब्लड डोनेशन वगैरह, ये सब बड़े रूटीन से काम होते हैं। तो
0: जी
1: जब मैं रोटरी का प्रेसिडेंट बना 2016-17 में, तो ये तीन प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि वो एक तरह से मैंडेटरी से होते हैं ये प्रोजेक्ट्स, तो ये करने ही पड़ते हैं। तो इसमें मैं कोई खास अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये रोटरी का एक रूटीन
0: जी
1: है कि सर्विस बिफोर सेल्फ। और जहाँ तक ये अनाथ बच्ची को सपोर्ट करने का सवाल है, तो ये मैंने जब किया था बहुत साल पहले, जब मेरे ख्याल से कोई 15-20 साल हो गए होंगे जब मैंने इसको सपोर्ट किया था। और ऐसे ही मुझे
0: जी
1: वर्ल्ड वर्ल्ड विजन का मैंने एक पोस्ट कहीं देखा था, तो उन लोगों ने कहा कि आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहां मैंने बिना सोचे समझे एक 1,000 रुपीज पर मंथ का उनको बोल दिया कि मैं सपोर्ट करूंगा आपको, तो वो शुरू हो गया।
0: जी
1: उसके बाद फिर उस बच्ची के लेट बच्ची की चिट्ठियां मुझे आने लगी थ्रू वर्ल्ड विजन, कि ये बच्ची ने आपको थैंक्स किया है, आपको ये लेटर भेजा है, लिख करी है, उसने पेंटिंग करी है, ये उसके इस साल के उसके मार्क्स हैं। उससे मुझे फिर बहुत एनकरेजमेंट मिली, मुझे दिल ही दिल में बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ और वो रेगुलरली मेरे साथ टच में है। तो फिर मैंने वो 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन जो था हर साल, हर महीने का, वो मैं चालू रखा, उसको मैंने बंद किया ही नहीं। मुझे इतना अच्छा लगा,
0: जी
1: और मैंने बचपन से, मतलब एकदम इन्फेंट स्टेज से उसको सपोर्ट करना शुरू किया था।
0: अरे वाह
1: और जब तक वो लड़की ग्रेजुएशन करके वर्ल्ड विजन से निकल के कहीं काम करने लगी, तब तक मैंने उसे सपोर्ट किया। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे दिल से बहुत खुशी हुई कि मैंने किसी की मदद की, क्योंकि उस समय मैं अच्छा कमा रहा था, अच्छे पैसे थे मेरे पास, तो आई कुड अफोर्ड इट। तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई कि मैं किसी की मदद कर पाया। और उस बच्ची ने वर्ल्ड विजन छोड़ने के बाद भी उसने मुझे चिट्ठियां लिखी। अब तो खैर वो बिजी हो गई होगी, तो आई डोंट नो नाउ वेयर इज शी, लेकिन वर्ल्ड विजन वाले अभी तक मुझे थैंक्स के लेटर्स भेजते रहते हैं। तो ये तो हुआ उसके
0: बिल्कुल
1: बारे में।
0: जी
1: और जो आपका पहला सवाल था कि रोटरी क्लब के जरिए 300 जरूरतमंद लोगों को जो मैंने मॉड्यूलर प्रोस्थेटिक लेग्स प्रोवाइड किए, तो ये एक बहुत ही
0: जी
1: बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। और इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि एक बार हम नोबल हॉस्पिटल गए थे किसी काम से, मतलब वहाँ के कुछ डॉक्टर्स हमारे क्लब के मेंबर्स थे, तो उनसे मिलने के लिए हम लोग गए थे इसी ब्लड डोनेशन वगैरह के कैंप के सिलसिले में। तो
0: जी
1: वहाँ हमने उनका पूरा हॉस्पिटल जब देखा, तो एक सेक्शन उनका ऐसा था जहाँ पर वो ये प्रोस्थेटिक लेग्स बनाते थे। तो वहाँ के
0: जी
1: जो इंचार्ज थे डॉक्टर संजीव कश्यप, उनसे मैंने बात करी कि भाई हम लोग ऐसा एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि आपके साथ, तो उसने कहा हाँ जरूर ले सकते हैं, आज तक तो किसी ने किया नहीं है, आप करना चाहते हैं तो करिए। तो मैंने उनसे पूरी डिटेल्स वगैरह ली कि कितना इसमें कॉस्ट आती है, तो एक साल में हम कितने पेशेंट्स को कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास जो लिस्ट है वो करीब 300 लोगों की है जिनकी रिक्वायरमेंट है,
0: जी
1: ही ऑलरेडी हैड द लिस्ट विद हिम जिनको ये चाहिए
0: अच्छा
1: थे। तो आप इतने लोगों के
0: जी
1: लिए आप अप्लाई करिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो मैंने फिर वापस आकर मीटिंग में अपने मेंबर्स के सामने ये प्रोजेक्ट को रखा। तो पहले तो एज यूजुअल जैसे होता है, क्योंकि मैं एक नॉन महाराष्ट्रियन था क्लब में, बाकी सब लोग महाराष्ट्रियंस थे, तो तो बहुत जबरदस्त इस पे ऑब्जेक्शन हुआ, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, आज तक कभी किया नहीं है, हमारा क्लब तो अभी नया है, हमको बिल्कुल एक्सपीरियंस
0: जी
1: नहीं है। मैंने कहा भाई नए कब तक रहोगे, नए कब तक रहोगे, जब तक आपको बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करोगे आप लाइमलाइट में कैसे आओगे। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा
0: जी
1: होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट के सामने कुछ करके दिखाना होता है, तभी आपके क्लब को कुछ अच्छी
0: जी
1: रिकग्निशन मिलती है। तो मैंने कहा जब तक
0: जी
1: आपको बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो आपके क्लब को कौन जानेगा। लेकिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी, लेकिन हम माने नहीं, कि हमारे कुछ मेरे कुछ दोस्त थे जो इसमें इंटरेस्टेड थे इस प्रोजेक्ट को लेने में, तो हमने एक अलग अपना ग्रुप ग्रुप बनाया, विच वॉज वी कॉल्ड एज ए लीड मेंबर ग्रुप। उसमें हम पांच लाइक माइंडेड लोग थे जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थे। तो फिर हमने उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, पूरी फंडिंग बनाई, कितना होगा कैसे होगा, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई उसकी। वो बनाकर हमने फिर रोटरी डिस्ट्रिक्ट को भेजी, रोटरी डिस्ट्रिक्ट जो पूना में है, उसने इसको अप्रूव
0: जी
1: किया और फिर उन्होंने उसको रोटरी इंटरनेशनल में भेजा। फिर हमको वहां से 35 लाख रुपए का सेंक्शन मिला। तो लेकिन उसमें एक पेनल्टी क्लॉज ये था कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो आपको बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी डॉलर्स में। तो हमने कहा नहीं करने का तो कोई सवाल नहीं है, हम करेंगे जरूर। तो हमने उस प्रोजेक्ट पे काम जो था वो शुरू कर दिया। जब हमने शुरू कर दिया तो जो हमारे अपोजिशन वाले लोग थे, एक तरह से जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं ना पार्लियामेंट में भी, ऐसे हमारे यहाँ भी क्लब
0: काफी
1: में एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जिनका
0: सही होते हैं।
1: काम, हाँ जिनका काम ही ये था कि हर अच्छे काम को रिजेक्ट करना। तो हाँ, तो उनके ही ग्रुप में एक साहब थे जो किसी कंपनी के एमडी थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इनसे एग्री नहीं करता और मैं आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करूंगा, और जो इनिशियल फंडिंग आपको चाहिए 5 लाख रुपए की, वो मैं दूंगा। तो हमने कहा सर बड़ी अच्छी बात है, हमने उनको थैंक्स बोला, पार्टी वार्टी कर दी उनकी अच्छी तरह, तो सब काम शुरू हो गया। फिर सारा पेपर वर्क शुरू हो गया पूरा। फिर वो लास्ट, फिर रोटरी से हमको लेटर आ गया कि भाई आपने अभी तक वो 5 लाख रुपया जमा नहीं किया है जो आपके क्लब को देना था। तो हमने कहा ठीक है सर हम कर देते हैं। तो फिर हमने क्लब में मीटिंग करी, उनको बुलाया साहब को, मैंने कहा सर वो 5 लाख रुपए का चेक आप दे दीजिए। एट द सेम टाइम एग्जैक्टली एट द पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट ही बैकड आउट। ही
0: ओह
1: सेड
0: माय
1: नो नो नो
0: गॉड।
1: मैं तो नहीं कर सकता, आई डोंट एग्री विद दिस प्रोजेक्ट। देन दे स्टार्टेड ब्लेमिंग द नोबल हॉस्पिटल के वो करप्ट हैं, सब लोग पैसा बनाते हैं। मैंने कहा सर ये आप लास्ट मिनट पे क्यों बोल रहे हैं, आप पहले बोल देते हमको। वो नहीं माने, नहीं दिया उन्होंने। बट एनी वे वी टुक इट फॉरवर्ड। हम पांच लोगों ने मिलकर एक रात के अंदर अंदर 5 लाख रुपए इकट्ठा किया, कुछ पैसा अपना डाला, कुछ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मदद करी, और हमने वो प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। और वो शुरू करने के बाद फिर उस साल में जब गणपति आया तो हमने पहला पेशेंट जिसको हमने लेग्स प्रोवाइड करी थी उसको हमने स्टेज पे बुलाया, और वहां पे हजारों लोग सामने बैठे हुए थे गणपति के फंक्शन में, कम से कम 7-8 हजार लोग वहां बैठता था फंक्शन में आकर। उनके सामने
0: जी
1: हमने उसको
0: जी
1: चला के दिखाया, पहले बिना लेग्स के चला के दिखाया, फिर विद लेग्स चला के दिखाया। एंड ही वॉज आई
0: वाह
1: मीन पब्लिक ने बहुत तालियां बजाई, बहुत हमारा अप्रिसिएशन हुआ नोबल हॉस्पिटल का और रोटरी क्लब का। तो इस तरह से हमने वो प्रोजेक्ट पूरा किया, और उसके बाद फिर 2 साल के अंदर अंदर हमने जैसा हमने रोटरी को प्रॉमिस किया था वो 300 लोगों को हमने आर्टिफिशियल लेग्स प्रोवाइड किए, एंड वी
0: वाह
1: अकम्प्लिश दैट प्रोजेक्ट। और उसका जो रिवार्ड था वो हमारे क्लब को मिला, एंड वी गॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय रोटरी इंटरनेशनल, एंड आई गॉट ए साइटेशन अवार्ड फॉर दैट।
0: वाह बहुत खूब बहुत खूब। आपकी बातें सुनकर सचमुच बहुत मजा आया। किसी बेबस को चलने के लिए पैर देना और फिर अनाथ बच्ची की तालीम की जिम्मेदारी उठाना इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है माथुर साहब। और इतना जज्बा रखना हर एक के बस की बात नहीं होती। समाज सेवा का काम तो होता है, लेकिन अगर कोई इसको वो बहुत पायस तरीके से करने पर जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो सुकून जो है वो जमीन पर रहते हुए चांद सा हसीन लगने लग जाता है कई बार
1: बात तो है, मेरे ख्याल से
0: आपकी।
1: उससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी मैंने उस दिन जब उस इंसान को बिना पैरों के देखा, वो उठ भी नहीं सकता था, और फिर उसके बाद हमने उसको वो आर्टिफिशियल लेग्स पहनाया, फिर वो चला और अपने पैरों पर चला बिना किसी स्टिक के चला, तो उससे बड़ी खुशी क्या
0: जी
1: हो सकती है।
0: वाकई बिल्कुल। और आपकी इसी खूबसूरत एहसास से जुड़ती हुई ये गजल भी हम पेश करते हैं जो आपने हमें अपनी मखमली आवाज में गाकर भेजी है। और गजल के बोल भी ऐसे ही हैं कुछ चांद सा। जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, ये जमी क्या हमसे बेहतर
1: बेहतर नजर
0: नजर
1: आती है
0: आती
1: मुझे।
0: है मुझे। वाह
1: जी
0: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आप 2 लाइन गाना का चाहेंगे इसकी?
1: जरूर, क्यों नहीं।
0: हाँ जी।

0: ये जमी चांद से बेहतर नजर आती हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी
1: वाह क्या बात है। अगर अनप्लग्ड वर्जन इतना खूबसूरत है माथुर साहब, तो आपने क्या ही गाया होगा इसको म्यूजिक के साथ। बहुत खूब, बहुत मजा आया,
0: ये तो सुनने वाले
1: बहुत
0: ही बताएंगे,
1: सुंदर।
0: सुनने वाले ही बताएंगे।
1: नहीं, तो क्या बात है। तो चलिए फिर माथुर साहब, आपकी ये खूबसूरत सी गजल हम अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं।
0: जी।

0: वाकई वाकई वाकई माथुर साहब, मैंने आपको बोला था आपने बहुत खूबसूरत गाई है, तो गाई है ना बहुत मजा आया माथुर साहब ये बताइए अब कि साल 2022 में डबलिन में शिंगल्स वायरस के असर से चलने फिरने में आई बंदिशों यानी मोबिलिटी लिमिटेशंस के बावजूद आपने जिस सब्र और हौसले से काम लिया, आपके अंदर की इस इनर स्ट्रेंथ का राज क्या है? और इस मुश्किल दौर से उबर कर आगे बढ़ने में आपके परिवार की सपोर्ट, उनका सहयोग और संगीत का क्या योगदान रहा? कैसा रहा सब कुछ ये सफर?
1: 2022 में जो डबलिन में मुझे शिंगल्स का अटैक हुआ था, उसका जो इम्पैक्ट, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट मेरी मोबिलिटी पर पड़ा कि मेरा लेफ्ट
0: जी
1: हैंड और लेफ्ट लेग सडनली काम करना बंद कर दिया। मतलब
0: जी
1: तो मतलब इसका तो कोई रीजन पता नहीं चला, बिकॉज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो मुझे हुआ एज पर द डॉक्टर्स इन डबलिन, इट वॉज 1 in 4.5 million केसेस के शिंगल्स का ऐसा साइड इम्पैक्ट होता है। तो
0: माय गॉड
1: मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। लेकिन यह है कि शुरू से, जैसे कि आपने शायद मेरे कैरियर से या मुझसे बात करके या मेरी किताब अगर किसी ने पढ़ी हो, अगर वो देखेंगे, तो उसमें मुझे शुरू से ये मेरा एक डिटर्मिनेशन रहा है कि मैं जो सोच लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। शायद हो सकता है इसका कोई कनेक्शन मेरे जोडियक साइन से है, क्योंकि मैं एक्वेरियन हूँ। तो ऐसा कहा जाता है एक्वेरियंस के बारे में, मुझे तो मालूम नहीं, कि एक्वेरियन लोग जो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। और मैंने सोच लिया था कि मुझे खड़ा होना है, तो बस वो हालात उस तरह से बनते गए। मतलब मुझे, क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि मुझे इस कंडीशन में नहीं रहना है बिल्कुल भी, क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ ऑफ 72 ईयर्स आई वॉज एक्सट्रीमली एक्टिव, बहुत एक्टिव था मैं। मतलब
0: जी
1: रोज डेली छः
0: जी
1: किलोमीटर वॉक करना, डेली योगा करना, कोई बीमारी मुझे नहीं थी, ना हार्ट की, ना थायराइड की, ना शुगर की, कोई बीमारी नहीं थी मुझे। तो
0: जी
1: मैं जानता
0: जी
1: था कि मैं स्ट्रांग हूं और मुझे इससे बाहर निकलना है। तो कुछ अंदर की
0: जी
1: स्ट्रेंथ ऐसी थी जो मुझे मोटिवेट कर रही थी। और फॉर्चुनेटली इंडिया वापस आने के बाद डबलिन से जो फिजियोथेरेपिस्ट मुझे मिली, वो भी इतनी अच्छी मिली, उसने इतनी मेहनत की मेरे ऊपर कि दो दो ढाई ढाई घंटा मुझे वो फिजियोथेरेपी कराती थी और मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता था 2.5 घंटे के सेशन के बाद। और लेकिन उसने मुझे खड़ा कर दिया और मुझे इस लायक बनाया। तो मैं तो सबसे पहले अपनी फिजियोथेरेपिस्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद मेरी मेरी फैमिली वो डबलिन में, जो मेरा बेटा, मेरी बहू, उनके बच्चे, मेरी बेटी, मेरे दामाद, उनके बच्चे, इन सब, और मेरी वाइफ अबव ऑल, इतनी ज्यादा मेरी हिम्मत अफजाई करी है, हौसला अफजाई करी है कि मुझे निराश होने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। और फिर मेरे कुछ दोस्त, कुछ मेरे सुसंगम के दोस्त, कुछ मेरे वैसे पर्सनल फ्रेंड्स, देवर यू नो दिन रात वो दुआएं करते ही रहते थे कि नहीं आप खड़े हो जाओ, आपको सुरसंगम चला रहा है ये। तो इस तरह से मेरे पास मैसेजेस आते थे उनके। तो आई थिंक उन सब की दुआओं ने और मेरी फैमिली की सपोर्ट ने मुझे वापस

0: कर दिया, और मैं उन सभी का,
1: बिल्कुल
0: इसके माध्यम से उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं।
1: बनता है ग्रेटिट्यूड तो बनता है माथुर साहब। आपकी तो बातें सुन के ही सचमुच रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। जैसे आपने बताया कि इतनी इतनी लाइक वो अनबियरेबल जो पेन होती है उसके बावजूद भी आप मुस्कुराते रहे और परिवार के और संगीत के सहारे उस दर्द से आप उभर आए, और आपकी अंदरूनी ताकत को दिखाता है, आपकी विल पावर को दिखाता है। बेशक उस फिजियोथेरेपिस्ट को भी नमन है जिसने आपके ऊपर इतना टाइम लगा के और
0: जी
1: आपको
0: हाँ,
1: खड़ा कर दिया।
0: ये
1: बहुत बहुत
0: उनको
1: बहुत इंस्पायरिंग है ये भी।
0: और
1: आपकी इतनी मस्तमौला और सकारात्मक सोच को सलाम करते हुए सुनवाते हैं फिर ये बेहद मशहूर गजल, और उस बात को भूल जाते हैं जो वक्त बीत गया। तो आपने ये गजल गा के भेजी है बहुत खूबसूरत सी। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या
0: मैं क्या करूं
1: करूं
0: बताइए।
1: सिर पर आफत उठाए तो मैं क्या करूं, कोई जबरदस्ती ही
0: हाँ
1: पिलाए तो मैं क्या करूं तो चलिए दोस्तों, माथुर साहब की गाई हुई ये बहकती लहकती सी गजल सुनते हैं। आप भी हमारे साथ सुनिए।

0: वाह माथुर साहब, आपने तो वाकई माहौल को सुरमई और शराबी ही कर दिया। मजा आ गया सुन के बिना पिए ही नशा आ गया होगा सबको, आई एम श्योर अबाउट इट। तो माथुर साहब, अब आप हमें ये बताइए कि साल 2018 में आपने सुर संगम म्यूजिक ग्रुप की नींव रखी, मुफ्त सेवा और चैरिटी के लिए रखी थी आपने ये।
1: जी
0: तो ये अनूठा ख्याल, इतना यूनिक आइडिया आपके जहन में कैसे आया? और सुर संगम के जरिए लाखों रुपए जुटाकर ओल्ड एज होम्स, अनाथालयों और एनजीओस की मदद करने के बाद आज आपको कितनी खुशी महसूस होती है? क्या एहसास है? क्या अचीव किया आपने जैसे?
1: हाँ जी, सुर संगम की जो शुरुआत थी वो तो एक मतलब क्या कहूँ, मतलब वो एक चूंकि गाने का शौक था और 2018 में मैं यहीं डबलिन में ही आया हुआ था अपने बेटे के पास। अब यहाँ क्या है
0: अच्छा
1: कि कुछ म्यूजिक का प्रोग्राम तो मेरे कोई एकम्पनीमेंट तो मेरे पास था नहीं, ना माइक था ना कुछ था। मैं क्या करता,
0: जी
1: गा तो सकता नहीं था सिवाय इसके कि स्टार मेकर पे दो चार गाने गा लिए बस। तो मैंने कहा वापस जाकर हम क्या करेंगे, अभी बेटा तो यहाँ आ गया, सेटल हो गया। और वो तभी उसी साल ही वो डबलिन में आया था। मैंने कहा अब इसका तो मुझे लगता है ये वापस आएगा नहीं, तो हम अब क्या करेंगे पुणे जाकर, कुछ ऐसा करते हैं जिससे मन लग जाए हमारा, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका था। तो फिर मैंने वहीं से व्हाट्सएप पर एक नोट डाला कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग एक म्यूजिक ग्रुप बनाना चाहते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें ज्वाइन हो जाए। तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि उसी दिन काफी लोगों ने बोला हाँ हाँ हम चाहते हैं ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है ऐसा। तो मुझे बढ़िया मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हम जब जून में वापस आए तो हमने उन सबको अपने घर पे बुलाया, मीटिंग करी। हमने बताया भी देखो ऐसा है कि मन लगाने का एक साधन चाहिए, तो उन सबको प्लेटफॉर्म चाहिए था, हमें मन लगाने का साधन चाहिए था। तो दोनों लाइक माइंडेड लोग थे सब लोग, तो सबने बोला ठीक है। तो हमने शुरू में तो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम से ही गाना शुरू किया। हर महीने में एक बार एक प्रोग्राम करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, वहां पर गाना और खाना बस यही होता था। तो 5-6 महीने तो इसी में निकल गए। तो उसके बाद में फिर पता नहीं किस तरीके से हमको एक आश्रम में जाने का मौका मिला। तो एक्चुअली हाँ, हमारे एक दोस्त थे जो पियानो बजाते थे और वो पियानो पे खुद ही गाते थे, अकेले ही उनका गाना होता था। तो उन्होंने अपनी एक रिकॉर्डिंग हमको भेजी कि मैं यहाँ आश्रम में गया था गाने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सुना, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा, हमें भी बताओ कौन सा आश्रम है। तो उस आश्रम का उन्होंने नंबर हमको दिया, फिर हम उस आश्रम में गए, वहां जाके हमने गाया। तो लेकिन जहां जब वहां जाकर हमने उन लोगों को देखा तो हमारा दिल जो था बड़ा डगमगा गया। हमने कहा लोग इतनी बुरी हालत में यहाँ आते हैं बेचारे। और फिर उस आश्रम के जो मालिक जो चलाते थे, फाउंडर थे, वो थे मिस्टर अशोक खोसला, जो एक बड़े मशहूर गजल सिंगर हैं। तो उन्होंने फॉर्चुनेटली वो उस दिन वहां पर थे और उन्होंने हमारा पूरा प्रोग्राम सुना। उन्होंने फिर अपने सभी जितने भी वहां पर 50-60 जो उनके वृद्ध लोग वहां रुके हुए थे, उनसे हमको उनको बुलाया उन्होंने हॉल में सुनने के लिए। फिर हमने उनसे उनकी कहानी पूछी कि आपके पास कैसे आ गए ये लोग। तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जिनको उनके बच्चे छोड़ के बाहर चले जाते हैं और उनके लिए कभी कुछ नहीं करते, ना पैसा भेजते हैं ना उनको कभी हालचाल पूछते हैं। कई कई तो उनको घर में बंद करके चले जाते हैं क्योंकि वो बेचारे बहुत बीमार थे। तो आप तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। तो फिर एनीवे तो उस दिन से हमें ऐसा लगा कि नहीं हम तो बेकार में ही गा रहे हैं, हमको गाना है तो इसके लिए गाना चाहिए, इनकी मदद करने के लिए गाना चाहिए। तो उसी दिन हमने उनको डोनेशन दिया, जो भी कुछ हमारे पास था। तो इतने पैसे लेके तो नहीं गए थे, लेकिन जो भी कुछ हमारी जेब में था वो सब हमने उनको डोनेट कर दिया। तो हमने कहा सर हमने आपसे एक सीख ली है कि आगे से हम गाएंगे तो चैरिटी के लिए ही गाएंगे। तो उस दिन का दिन और आज का दिन है कि हम चैरिटी के लिए ही गाते हैं।
0: वाह,
1: इस तरह से ये शुरुआत हुई। और
0: बहुत खूब।
1: उसके बाद फिर हमको सोल्जर्स के लिए गाने का मौका मिला, पैराप्लेजिक सोल्जर्स के लिए गाने का मौका मिला जो व्हील चेयर पे थे बेचारे, तो उनके लिए भी गा के हमको बहुत खुशी मिली। कैंसर पेशेंट्स के लिए गाया, कैंसर पेशेंट्स तो इतने खुश हुए कि वो बेड छोड़कर उन्होंने हमारे साथ डांस करना शुरू कर दिया। तो
0: अरे वाह,
1: इस
0: क्या
1: तरह से
0: बात है।
1: जो, और वो कैंसर पेशेंट्स भी वो थे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में थे, जिनके बचने का कोई चांस नहीं था।
0: ओह माय गॉड।
1: तो ऐसा एक पुणे में एक इंस्टीट्यूट है विच इज कॉल्ड एज सिप्ला फाउंडेशन, वहां पर ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं जो जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो उनको वो इसी तरीके से,
0: अच्छा
1: वो लोग लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो
0: जी
1: उसमें हम लोग भी शामिल हुए और हमको इतना अच्छा लगा। हालांकि उनको पता है कि हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे उनको पता नहीं, लेकिन उन्होंने स्टेज पर आकर
0: जी
1: हमारे साथ गाना गाया, नाचे भी, सब कुछ किया,
0: क्या
1: और सोल्जर्स ने भी हमारे साथ
0: ही
1: आकर स्टेज पे
0: बात।
1: गाया। तो वो जो खुशी हमको मिली उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो तब से हमने सोच लिया कि हम गाएंगे तो सिर्फ चैरिटी के लिए ही गाएंगे, और तब से
0: चैरिटी के
1: लेके आज तक हम
0: लिए
1: यही कर रहे हैं, और करीब 4.5 लाख रुपए इकट्ठा करके एनजीओ को दे चुके हैं,
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: और हमारी कोशिश
0: बहुत।
1: जारी जारी है इसमें, हमारी कोशिश।
0: मैं समझ सकती हूँ आपका जज्बा। सुर संगम के माध्यम से संगीत को आपने समाज सेवा का साधन बनाया, और फिर ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज के लिए आपने लाखों रुपए जुटाए। ये एक वाकई बड़ी एक बड़ी पाक सोच है। आपकी बातों में जो परोपकार की मिठास है ना माथुर साहब, वो हवाओं में भी सुकून घोल देती है। वाइब्रेशंस जो आपकी आवाज से आती हैं, तो वो पता चलता है कि हम किसी बहुत ही नोबल सोल से बात कर रहे हैं। ये वाइब्स आती हैं आपकी इस खास सोच, और फिर राजेंद्र मेहता जी की इस खूबसूरत धुन पर ये रोमानवी गजल पूरी तरह से मुकम्मल बैठती है। मथुर साहब आपने गा के भेजा है क्या ये, जब आंचल रात का लहराए, तो इसके
1: जब
0: आगे क्या
1: आंचल
0: है, जब आंचल
1: चल रात
0: रात
1: का
0: का
1: लहराए,
0: लहराए और
1: और
0: कौन आलम सो जाए, तुम क्षमा जलाकर मुझसे मिलने ताजमहल पे आ
1: हाँ आ
0: जाना।
1: जाना। जी हाँ, वही तो मोहब्बत की
0: रोमांस की भी
1: सबसे,
0: क्या इंतहा
1: मोहब्बत की
0: है,
1: सबसे खास इमारत तो वही है
0: ताजमहल पे आ जाना। हम जो
1: जी।
0: आगरा में ना रहे वो कहाँ जाए।
1: उसका ख्याल करके ही आ जाए
0: हाँ, तस्वर में ले आइए ना ताजमहल और फिर आ
1: जी। हाँ
0: जाइए।
1: जी हाँ जी हाँ, वही
0: तो
1: मतलब है।
0: इसी नोट पर सुनते हैं दोस्तों, चांद माथुर साहब की आवाज में ये बहुत ही रूमानी सी गजल, आप भी सुनिए हमारे साथ, तुम शम्मा जलाने ताजमहल पर आ जाना। आइए सुनते हैं।

0: वाह माथुर साहब, आपने तो वाकई जला ही दी शमा, समा ही बांध दिया। कितना खूबसूरत आप गाते हो, बहुत खूबसूरत।
1: शुक्रिया
0: और
1: शुक्रिया।
0: बहुत खूबसूरत दौर रहा आपसे बातचीत का। माथुर साहब के साथ बातों का ये कारवां इतना रंगीन और सुहाना हो चुका है कि दोस्तों वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों ठहरिए, माथुर साहब की तवील जिंदगी के कई अनछुए पहलू, उनके तजुर्बे और गजलों का ये सुहाना सफर अभी यहीं खत्म नहीं होता। बातें अभी बाकी हैं, मुलाकातें अभी बाकी हैं, जो दिल को छू ले वो सब बातें अभी बाकी हैं। सिमट कर रह गई जो पहली बैठक में वो अनकही अनसुनी हसीन सौगातें अभी बाकी हैं। तो इसी नोट पर हम आपसे फिर मिलेंगे कल, और माथुर साहब की बाकी की जिंदगी, जिसमें कि उनके मेमोयर्स की रचना की उन्होंने, और पुणे पैशन आइकॉन और आइकॉन ऑफ इंडिया जैसे अजीम सम्मानों से उनको नवाजा गया, और दिव्यांग सैनिकों और कैंसर पीड़ितों और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए उनकी रूहानी परफॉर्मेंस का अनुभव कैसा रहा, ये सब बातें और माथुर साहब के जीवन की खास झलकियां और उनके आगे के विचार हम जानेंगे अपने अगले हिस्से में। तो कहीं मत जाइएगा, माथुर साहब के साथ इस बातचीत का अगला पड़ाव लेकर हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिएगा मेरे साथ यानी आरती रॉय के साथ, सिर्फ अल्फाज से एहसास तक। अभी हम इजाजत चाहते हैं। शबा खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, कल फिर मिलेंगे।
1: तो दोस्तों, गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और एहसास हमारे साथ ही रह जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ नई और कुछ दिल के करीब गजलों के साथ। आरती जी फिर से हाजिर होगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आपको हमले रहा है रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नो यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम आपन खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। तो किसान भाइयों, आपु रोज हाजे 6-8 वगे तक इना कार्यक्रम ने हमळी से अने आशा भी करी है कि इना कार्यक्रम ना माध्यम थी तमे घणी खरी महत्वपूर्ण जानकारियों हासिल करियो है अने घणा खरा किसानों ही अपना सवाल भी मोकलाया है। तीन थी अमू यूं मानिए है कि अपना किसान भाई कहीं ना कहीं हमारा इना कार्यक्रम थी लाभ ली रहा है। तो किसान भाइयों, आज फिर हम तुम्हारी अगाड़ी प्रस्तुत है, उपस्थित है एक हजू नवू बेहद नवू प्रोग्राम लेने। आज नो अपन प्रोग्राम है कूड़ा थी सूनू बनावानु प्रोग्राम। हाँ किसान भाइयों, की कम आपू जो अपन कसरू है, जो आपू जाता फेंकी दिए हैं, अगर आपू तिना कसरा ने व्यवस्थित रूप थी नाखवा शुरू कर दी, व्यवस्थित रूप से तिना कसरा नो आपू मैनेजमेंट करवा शुरू कर दी, ते आपण यू कसरू है जो आपण अधिकतर जो अपने रुपया में जो अपने खेतर में जितनी आखिर लागत लागी रही है, जितना रुपया लागी रहा है, तीन आपू कम करी सकी, ना केवल तीन आपू कम करी सकी लेकिन तीन आपू वेसी भी सकी। जेम के अपने किसान भाई जाने हैं अपने गोबरियों खाद कितनू लाभकारी है। हमारे किसान भाई घना खराब किसान भाई असल तरीके थी जाने हैं ना आजकल वाकिफ से कि खातर वालों खावाती बीमारियों आ रही ने अपन अगर पेलखाना जो लोग हता जो गोबरियों खातर ने इस्तेमाल करते ना और हर घेरों में डगरा होतेला है रेतेला रेतेला। तो किसान भाइयों, समय इतना नहीं बदलो है, अब हमें भी ये संभावना है कि आपणो मनक जो है अपने खेतर में जो अवशेष नकली रो है तिंतु भी आपू एक डगरू तो आराम था पाड़ी सके, लेकिन आर की अमूल जरूरत है कि जो दवाइयों आपू सारू मारवानी दवाइयों नाखी रहा है, फसलों ने मोटी करवा हरू दवाइयों नाखी रहा, हर जगह आपू दवा नाखी नाखी अपनी फसलों ने मोटी करी रहा है, तो तेज दवा खाई खाई आपू शरीर भी कमजोर अने बीमार थातु जाइ रहा है। तो किसान भाइयों, आर की आपू जरूरत है कि अमोन आपणो रख रुख बदलवानी जरूरत है। तो किसान भाइयों, आजना कार्यक्रम आपू जानिए कि कम तरीके थी आपू अलग अलग कचरा नो उपयोग करीन उपयोगी खाद की कम बनावी सकी, ली विस्तृत जानकारी इना कार्यक्रम मा।
2: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं।

को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन जल्द ही इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी और पानी को तो प्रदूषित किया ही, उपज को भी जहरीला बना दिया। इसलिए अब ऐसी खेती की बात की जा रही है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हो, लेकिन उपज के मामले में कोई कमी ना हो। जैविक खेती ऐसी ही तकनीकी है। इस तरह की खेती में कंपोस्ट खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। आज के वाद संवाद में हम कंपोस्ट खाद की उपयोगिता और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। जैविक खाद एक तरह से प्रकृति के लिए तेरा तुझको अर्पण जैसी ही है। इस पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर सोमपाल शास्त्री, साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्र, कृषि मंत्रालय में उप आयुक्त डॉक्टर एएस राजपूत और वरिष्ठ कृषि पत्रकार एसपी सिंह। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। खास बात ये है कि आज हमारे साथ दूर दराज से आए किसान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैविक खाद यानी कचरे से सोना, ये सोना कितना खरा और कितना खोटा है, इस पर वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।

0: कंपोस्ट एक तरह की जैविक खाद है जो पौधों, पशु अवशेषों, अपशिष्ट यानी कचरे से तैयार की जा सकती है। अपशिष्ट में गोबर, फसल अपशिष्ट या बूचड़खाना अपशिष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बिना छटाई का घरेलू कूड़ा करकट या सीवर साफ करने वाली इकाइयों से निकलने वाली गाद भी कंपोस्ट खाद बनाने के काम आती है। इन सब चीजों को धीरे धीरे सड़ाकर कोई भी किसान कंपोस्ट खाद तैयार कर सकता है। कंपोस्ट खाद मुख्य रूप से 6 तरह की होती है। ग्रामीण कंपोस्ट गोबर या खेती के कचरे से तैयार की जाती है। शहरी कंपोस्ट शहर की गलियों से निकलने वाली गंदगी और कूड़ेदान के अवशेषों से बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से तैयार होती है। नडेप कंपोस्ट मिट्टी, फसल अवशेष और गोबर से बनाई जाती है, जबकि संवर्धित कंपोस्ट रॉक फॉस्फेट या यूरिया के संवर्धन से तैयार की जाती है। अब सवाल उठता है कि कंपोस्ट खाद जरूरी क्यों है? दरअसल इसके कई फायदे हैं। इसमें 12-15% के बीच कार्बन होता है, जो पौधे की बढ़वार के लिए बेहद जरूरी है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में ज्यादा देर तक नमी बनी रहती है, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, पौधों को लंबे समय तक पानी भी मिलता रहता है। कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से उर्वरक का पौधों पर असर बढ़ जाता है। ये मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है, यानी मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाता है। इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये कूड़ा करकट जैसी बेकार और प्रदूषण फैलाने वाली चीज को भी उपयोगी बना देता है।
1: तो रिपोर्ट में देखा आपने कि कंपोस्ट खाद किस तरह से तैयार किया जा सकता है और उसकी क्या उपयोगिता है। आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले पूर्व कृषि राज्य मंत्री डॉ. सोमपाल शास्त्री जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हरित क्रांति जो समय की मांग थी, उस समय रासायनिक खाद थी और उसका इस्तेमाल भरपूर किया गया, लेकिन इसकी कीमत किस हद तक मिट्टी और पानी ने चुकाया है और कितना नुकसान हुआ है इससे?
2: जिस समय मैं कृषि मंत्रालय का प्रभार संभाल रहा था, उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत की गई थी
1: जी।
2: उसमें ये बात आई थी सामने कि जितने हरित क्रांति के तथाकथित अधिक उत्पादन के क्षेत्र हैं भारत के, उसमें 16 मिट्टी में उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 9 मुख्य हैं
1: जी।
2: जिसमें पहला नाइट्रोजन, फिर फास्फेट, उसके बाद पोटाश, उसके बाद मोलिब्डेनम, फिर सल्फर, फिर जिंक, फिर फेरॉन, फिर मैग्नीशियम और बोरॉन
1: जी।
2: ये 9 के 9 दीर्घकालीन दृष्टि से उनमें गिरावट आई।

0: अच्छा,
1: और नत्रजन की, नाइट्रोजन की अधिकता हो गई है, उसके कारण एक तो ज्यादा कीड़े और परजीवी फसलों को और उनके ऊपर बीमारियां लगने लगी। दूसरे, उससे सारी जितनी भी खाद्य श्रृंखला है जो आपने बात कही, उसमें विषैले तत्वों के अवशेष इतनी मात्रा में हो गए, तरह तरह की बीमारियां आने लगी। तो मिट्टी की जो प्रोफाइल थी, जो उर्वरकता थी, जो तत्व उसमें आवश्यक थे उत्पादन के लिए, वो घटे और नाइट्रोजन की बहुतायत हो गई, फास्फेट की भी हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि नाइट्रोजन तो नुकसान करती है पर फास्फेट नहीं करती, परंतु ये भी मिथ है, ये भी गलत है।
0: अच्छा।
1: फास्फेट के जो रेजिड्यू हैं, जितना वो दिल के ऊपर और शरीर की संरचना के ऊपर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, वो नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। नाइट्रोजन के कारण आपके जोड़ों के दर्द बढ़ना, आपकी कार्टिलेज स्टिफन होनी, आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस, आपके किडनी, गुर्दे और लीवर, सब चीज उससे खराब होती है। और ये बीमारियां ज्यादा आने के कारण कीटनाशक और परजीवी नाशक, जो रासायनिक विषैले पदार्थ हैं जिसे स्प्रे करके डालते हैं
0: जी।
1: आप आश्चर्य करेंगे कि सरसा, अबोर, फाजिलका, फरीदकोट, भटिंडा और गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो इलाका है और उधर नागपुर का जहां कॉटन कपास उगाई जाती है, 27-27 स्प्रे करते थे उनके ऊपर। और मालवा का जो रीजन है पंजाब का, जो सबसे तंदुरुस्त माना जाता था हिंदुस्तान में, पंजाब का इलाका, एक एक गांव में 250 से 500 कैंसर के मरीज हैं। और एक रेल है जो भटिंडा से बीकानेर जाती है, उसको वहां कैंसर ट्रेन का नाम दिया जाने लगा, ये बात सब जानते हैं। तो ये इतने सारे उसके दुष्प्रभाव हुए हैं, इससे जितना जल्दी बाहर आया जाएगा, एक समय लगा था कि उससे फसल का उत्पादन बढ़ा, परंतु फसल के उत्पादन के साथ जहर का उत्पादन भी बढ़ा, उसके साथ पानी भी प्रदूषित हुआ, उसके कारण जो सूक्ष्म जैविक संरचनाएं थी, जो माइक्रोब्स थी, जो इन उत्पादक पदार्थों को खाकर और बारीक करते हैं, वो पौधे में ऊपर चले जाते हैं, उनकी संख्या भी घटी है, वो सब मर गए इन जहरीले पदार्थों से। तो ये इतने दुष्प्रभाव हुए हैं, बड़ा भयावह स्थिति पैदा हुई है, उससे जितना जल्दी बाहर निकला जाए उतना बेहतर
0: है।
1: और एक बात आपने जो कही कि उत्पादन कम होता था, ऐसा नहीं है। तंजौर का और उत्तर भारत का, अल्बर्ट हावर्ड की एग्रीकल्चर टेस्टामेंट ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए आप, इतना उत्पादन विश्व में कहीं नहीं होता था। अगर जैविक सामग्री जमीन में जितनी आवश्यक है, जितनी आपने निकाली, और फसल चक्र आपका उचित है, जिसमें कभी दलहन की फसलें, कभी अनाज की फसलें, कभी गन्ने की, कभी कपास, ऐसे अदल बदल के और खेत को खाली करके रखें, तो कम लागत में इससे बेहतर और ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन हो सकता है। ये बड़ा भारी वैज्ञानिकों ने गलत फहमी फैला दी है कि इससे उत्पादन घटेगा।
0: बिल्कुल, तो खाद्यान्न की जो जरूरत थी उसे देखते हुए शिवादर जी, रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ एक वक्त पर, कब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि अब बहुत हो गया, दुष्परिणाम बहुत ज्यादा अब सामने आने लगे हैं और अब जैविक खेती का रुख किया जाए?
2: सबसे पहले ये देखा गया कि पहले शुरू शुरू में जब हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया तो लगा कि बहुत तेजी से पैदावार बढ़ रही है और ये लगातार टिकाऊ रहेगी, लेकिन 80 के दशक के बाद ये देखा गया, 80-90 के बीच में, कि धीरे धीरे जो हम जितनी नाइट्रोजन या जितनी भी ये उर्वरक डालते थे उसके तुलना में उससे दूनी भी डालने पे उतनी उपज नहीं बढ़ी
0: जी।
2: इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब हम जितनी पहले डालते थे, लागत लगाते थे, उससे दोगुनी लागत लगाने पे भी हमें उतनी बड़ी हुई उपज नहीं मिली,
0: नहीं मिल पाई।
2: तो तब से हमें लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसमें जो जो मुख्य कारण ये था कि हमारे किसान भाइयों ने 2-3 तरीके के ही पोषक तत्व प्रयोग किए, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रयोग किया, उसके बाद फास्फोरस कहीं कहीं प्रयोग हुआ और पोटास भी कहीं कहीं किसान भाई प्रयोग करते थे। अब पौधे को तो 16-17 तत्व चाहिए, अब 17 आजकल हो गए हैं एसेंशियल, पौधे को तो उतने चाहिए। और हमारी जमीन में जो मौजूद थे उस नाइट्रोजन और उसकी तो भरपाई आपने कर दी, अलग से दे दिया, लेकिन जो बाकी पोषक तत्व थे वो भी तो जमीन से निकले, तो माइनिंग हुई, मतलब जमीन में कम हो गए और धीरे धीरे जो संतुलन था एक वो बिगड़ता गया। तो हमारा जो पोषक तत्वों का जो जो पौधों को मिलते थे संतुलित रूप से वो मिलने बंद हो गए और उससे ये उपज घटनी शुरू हो गई, क्योंकि 16 में से अगर एक भी पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगा तो उपज घटेगी, तो इसके कारण घटने लगा और गुणवत्ता में भी कमी आने लगी।
0: तो एसपी सिंह जी, जैसे कि बता रहे हैं शिवाधर जी, 80 के दशक के बाद दुष्परिणाम जिस तरह से सामने आने लगे, उसके बाद के सरकारों ने किस तरह का प्रयास किया है इस दिशा में कि जैविक खेती को अब बढ़ावा दिया जाए?
3: अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एलेबोरेट किया और सोमपाल जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से पुराने इतिहास को पूरा दोहराया। और खेत की स्थिति क्या है, मिट्टी की सॉयल का हेल्थ किस तरह से डाउन गया है, मिट्टी कैसे बीमार हुई है, इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो सबसे पहला काम किया कि कैसे खेत की सेहत सुधारी जाए।
0: बिल्कुल,
3: इसलिए पहले उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की बात है, पहले इसकी जांचो, पता करो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आज का जो चर्चा का विषय है कि इसमें कंपोस्ट खाद की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, बाकी चीजें लोगों ने बता दिया है। भाई तीन चीजें प्रमुख होती है मोटा मोटी, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, जिसका प्रयोग किसान भाई खूब जोर शोर से करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि बढ़ रहा है रासायनिक खादों का प्रयोग, बढ़ने के बाद भी हमारा प्रोडक्टिविटी हमारी घट रही है, बढ़ नहीं रही है जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए। पहले अगर हम 10 किलो डालते थे कोई चीज तो उससे प्रोडक्शन अगर हमारा 100 किलो होता था और आज हम जब डालते हैं तो प्रोडक्शन 1/3 भी नहीं होता। उसकी वजह यही है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम आप किसानों को समझने के लिहाज से बताएं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई दवाई अगर हमें किसी इलाज के तौर पर देता है तो उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर विटामिन के गोलियां भी दी जाती हैं, विकासूल की, फला की, ढेका की, इसलिए दी जाती है ताकि वो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है बॉडी के अंदर खत्म हो रहा है वो उसको हो जाए। यही स्थिति कमोबेश जमीन की भी हुई है। जमीन के अंदर से अगर आप पर हेक्टेयर या पर एकड़ 12 टन 20 टन आप निकालते हैं, आप भूसा, अनाज, जितना चीजें निकलती हैं उसी रेशियो में उसमें जाना चाहिए। हो क्या रहा है कि हम अपनी खेती काटते हैं, खेती काटने के बाद उसमें से जो निकलता है उस रेशियो में ना हम गोबर डालते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कार्बन की कमी आ रही है। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ी कमी आई कार्बन, कंपोस्ट की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है पूरे इस रीजन में, जिसमें पहली हरित क्रांति आई उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब, इन स्टेट्स में सन 70 से पहले 1970 के पहले तक 0.5% कार्बन कंटेंट हुआ करता था। कार्बन मीन्स वही गोबर की खाद, ये जो कंपोस्ट खाद की जिसकी बात की, जिसके चलते 17-18% तक कार्बन मिलता है। कार्बन घट के आज की स्थिति में यह हो गया है कि 0.2% तक, अलार्मिंग, मतलब ये खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। आज देश का सबसे उपजाऊ इलाका कहा जाता है पंतनगर का इलाका, आज स्थिति में अभी डॉक्टर मंगला राय से बात कर रहा था आज सवेरे ही इस पर चर्चा करने से पहले, डॉक्टर साहब इसमें क्या हुआ है, तो बोला पंतनगर की स्थिति यह हो गई है कि वहां पर 0.7-0.8% तक कार्बन कंटेंट हुआ था, आज वो घट के हो गया है 0.5%। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और पूरे नॉर्दर्न रीजन में, सॉरी ईस्टर्न रीजन में हरित क्रांति की घोषणा की गई है, तो इसके लिए क्या होगा? तो उन्होंने कहा साहब वहां का कंटेंट 0.5% से आगे नहीं है और ये अलार्मिंग पोजीशन है, किसी भी हाल में अगर मिट्टी को स्वस्थ बनाना है तो 2% तक,
0: ऐसे में
3: 2% तक कार्बन कंटेंट होना चाहिए। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, और वो तब बढ़ेगा जब आप कंपोस्ट खाद डालेंगे और जो उसके निकाला जाता है जितना मिट्टी से उसी रेशियो में आप मिट्टी में डालेंगे।
0: बिल्कुल, तो इसके लिए किसानों को प्रेरित करना होगा राजपूत जी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है और आर्थिक सहायता भी क्या किसी तरह की मिल रही है इसके लिए?
4: जी मोनालिसा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जैसे कि शास्त्री जी ने बताया, इससे पहले कि मैं क्या क्या आर्थिक लाभ किसानों को दिए जा रहे हैं, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात है। संस्कृत में अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम वनोधम, यत्र तत्र दुर्लभ वस्तु, इसमें इसका सार छुपा हुआ है। संसार में ऐसा कोई, इसका जरा सा मैं भावार्थ बताऊं आपको, संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसे मंत्र ना बन सके, संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसके अंदर औषधि गुण ना छुपे हों, इसी तरह से संसार में ऐसा कोई किसान या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ना छुपी हों। हमारे किसान भाइयों ने खुद बहुत सारे काम, अगर आप देखें तो जैविक खेती के लिए बहुत सारे काम किए गए। मैनेजमेंट की जरूरत है, जैसा कि सर ने बताया, जैसा कि बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां भी हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको लेके स्कीमें बनाई, जैसे खासतौर पे आप बात कर रहे हैं, हम जिसके सिटी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं हम, जो तो सिटी कंपोस्ट के लिए 1500 रुपए पर टन की प्रावधान है। इसके अलावा और भी कंपोस्ट है, स्पेशली जैसे बर्मी कल्चर हैचरीज, बर्मी कंपोस्ट के लिए, बर्मी कंपोस्ट से अच्छी कोई कंपोस्ट नहीं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंपोस्ट हैं, फास्फोरिज कंपोस्ट, जो आईसीआर ने और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोगों ने कुछ आईटीकेएस भी डेवलप किए हैं, जो किसानों के साथ मिलके किए गए। तो सरकार इसी तरह की योजनाओं में अभी लगी हुई है। अभी परंपरागत किसी विकास योजना के अंतर्गत भी बहुत सारा प्रावधान है इसमें, उसमें लिक्विड बायोफर्टिलाइजर से लेके और इस तरह के कुछ आईटीकेएस बॉटनिकल एक्सटेट के लिए भी हम लोग उनको फंड यानी कि सहायता राशि दे रहे हैं। फिर अभी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट में भी पूरा किसान के प्रोडक्शन से लेके उत्पादन से लेके उस सब के लिए प्रावधान रखा गया है
0: जी। यानी कि सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। शास्त्री जी, हमें बताएं जरा, जिस वक्त आप कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान किस तरह के प्रयास इस दिशा में हुए और तब से लेकर अब तक आप कितनी प्रगति इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि हुई है?
5: दो मुख्य प्रयास हुए थे उस समय। एक तो हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जैविक कृषि की आवश्यकता, उसके लिए तकनीकी उपाय और उनको आर्थिक दृष्टि से लाभ कर कैसे किया जाए, उसके लिए एक समिति बैठाई थी, उसकी रिपोर्ट आई
0: जी।
5: वो कुंवर जी भाई यादव एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका पढ़कर आए थे, गुजरात के रहने वाले थे, उनकी अध्यक्षता में, और उस रिपोर्ट को लिखने में मैंने भी अपना बहुत सक्रिय सहयोग दिया था
0: जी।
5: वो रिपोर्ट आई, उसमें एक संस्तुति की गई थी कि एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान की हमारी जो व्यवस्था है आईसीआर सिस्टम, उसी के तहत एक केंद्र स्थापित किया जाए जिसमें हमारे अधिकारी भी रहे हैं। उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि का राष्ट्रीय केंद्र जो गाजियाबाद में स्थापित हुआ है। मेरा मन उसको गाजियाबाद में स्थापित करने का नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिकों की भी ये प्रवृत्ति हो गई कि वो भी बाबुओं की तरह काम करें, मुझे क्षमा करेंगे आप दोनों। हम चाहते थे कि वो कहीं दूर किसान के खेतों के बीच में हो, इतनी जमीन हो कि उसमें वो प्रयोग वहां करके दिखाए, वहां जाइए, एयर कंडीशन रूम बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई है, और अगर प्रयोग की बात करें तो सिवाय टीवी के और वो दूसरे की प्रस्तुति के कोई व्यावहारिक वहां उसका प्रयोग नहीं है। तो फिर भी वो एक बना, 100 करोड़ उसके लिए निर्धारित किया गया। मैं फिर योजना आयोग का सदस्य बना, वहां भी उसको हमने समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया। वो केंद्र काफी अच्छा काम कर रहा है, सभी राज्यों को उसमें ला रहा है, राज्य सरकारों की उसमें, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में इस विषय के ऊपर प्रतिबद्धता रही है सभी स्तरों के ऊपर, उनके जो आनुषंगिक संगठन है उसमें भी और पार्टी में भी, ये एक सुखद बात है। परंतु कोई बहुत विशेष प्रगति अभी नहीं हो पाई।
0: अच्छा,
5: जैसे शहरी कूड़े की बात है तो एक छोटी बात आपको बताऊं, जब मैं उपाध्यक्ष था सरकारी योजना आयोग का मध्य प्रदेश शासन का, तो उस समय ने प्रस्तावित किया था कि भोपाल जैसे शहर में, और उसकी भी एक तो जहां सरकारी अधिकारी रहते हैं चार इमली और एक बहुत पॉश कॉलोनी है अरेरा, उन दो में हम प्रयोग करें,
0: ठीक है,
5: कि डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को घर के स्तर के ऊपर छांट दें
0: जी।
5: उसमें जो डिग्रेडेबल मटेरियल है जिससे खाद बन सकता है, उसका एक सप्ताह या महीने में हमको अंदाज हो जाएगा कि यहाँ से 50 टन रोज निकलता है, 30 टन रोज निकलता है। उसके शहर के बाहर जो परती जमीन पड़ी है पहाड़ी, जहाँ कुछ कोई चीज पैदा नहीं होती, वहां गड्ढे बनाए जाएं, और इस तरह के अब आजकल हमारे पास जैविक पदार्थ है कि 15 से 30 दिन में उसका खाद डिकम्पोज होके बन जाता है, तो उसको रिले में डालें, तो शहर के सारे कूड़े का प्रबंध हो गया और किसानों को वहां छोटा 50, 51 या 100 रुपया का एक टोकन ले और वो वहां से भर के ले जाए।
0: अच्छा।
5: तो वो जगह भी, ये जो कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं दिल्ली में, गाजीपुर में आपने देखा, बादली में देखा है, सारा पानी खराब कर दिया, इसका स्थायी निदान हो जाएगा और किसान की रासायनिक उर्वरक के ऊपर निर्भरता न्यून हो जाएगी। और खेती में ये जो 16 तत्वों की चर्चा की मिश्रा जी ने, आपको आश्चर्य होगा कि गोबर की खाद अकेले
1: रैली ऐसी है जिसमें 17 के 17 तत्व उतने ही मात्रा में अनुपात में पाए जाते हैं जितनी जमीन को आवश्यकता है और किसी रासायनिक की जरूरत ही नहीं है।
0: बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद जैविक खाद बनाते हैं, आइए उनसे भी जरा बात कर लें। हमें बताएं कि आप में से कौन कौन जैविक खाद बनाते हैं खुद? बहुत अच्छी बात है, और किस तरह बनाते हैं, क्या है आपका अनुभव, कुछ बताएं।
6: मैंने वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जैविक खाद
0: तैयार किया है
6: और एक बार नेडप के द्वारा भी किया है।
0: अच्छा।
6: नेडप में ज्यादा हमें जो मिलती है उस ऑर्गेनिक जो तत्व है उसके नेडप के द्वारा जो तैयार खाद करी जाती है उसमें ज्यादा तत्व मिलते हैं।
0: अच्छा, ये कैसे आपने किया, जानकारी कहाँ से मिली, क्या कोई प्रशिक्षण भी लिया?
6: हाँ जी, कृषि विभाग के द्वारा प्रशिक्षण लिया था जिला स्तरीय, और उन्होंने ही हमें राज्य से दूसरी जगह भी भेजा है जहाँ पर हमने प्रशिक्षण लिया।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर और भी किसान मौजूद है, उनका भी अनुभव हम जान ले। जी बताएं।
7: ये नेडप तो करते हैं हमने, जो है 2009 में
0: जी
7: हमने राइस में हमारे में दिक्कत आई थी बहुत ज्यादा।
0: अच्छा।
7: मतलब धान की फसल में
0: तो
7: उसमें जो बकाणी रोग लगा था हमारे वहाँ।
0: अच्छा।
7: तो हम पूसा NCIPM से मिले, उन्होंने हमारे वहाँ पे जो है गए और हमने कुछ किसान इकट्ठे किए तो उस बकाणी रोग का हमें समाधान बताया।
0: अच्छा।
7: तो उस टाइम को हमको ज्ञान नहीं था, तो एक तो उन्होंने हमें ढेचा के लिए कहा।
0: अच्छा।
7: आज हम मेरा गांव बम्बावड़ है गौतम बुद्ध नगर में, 60% 70% मेरे गांव में ढेचा की खेती होती पहले।
0: अच्छा।
7: और उसकी जुताई करके जब राइस लगाते हैं और एक भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: बिल्कुल,
7: एक तो हमको ज्ञान होगा और पहले हमको पता नहीं था कि वैसे ही आता धुंध, दुकानदार हमको दे देता पोटली बांध के और हम स्प्रे कर देते।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमें, और इसी तरह से आपके अनुभवों से भी मुझे उम्मीद है कि जो बाकी किसान हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। साथ ही ये चर्चा जो हमारी है उसे भी हम जारी रखेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ।
8: कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान, मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर हमारा विशेष कार्यक्रम वाद संवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो विषय हमारा है वो है जैविक खाद यानी कचरे से सोना। आइए इस विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद है, साथ ही कई किसान भी हैं। शिवादर जी हमें ये बताएं कि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि यहां पर मौजूद किसानों से प्रशिक्षण की भी बात आई, तो जैविक खाद इस तरह की खाद है जिसे किसान खुद भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण की बात आती है, तो किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं किसानों को?
2: देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड ये बताना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई बहुत सारे बना रहे हैं
0: जी,
2: लेकिन आज भी आप किसी भी गांव में घुस जाइए और गांव के से जब शुरुआत करते हैं तो आपको एक बेतरतीब तरीके से गोबर के कूड़े के ढेर जिन पर पॉलीथीन फैली हुई है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, और आज भी मिलेंगे, और हमारे किसान भाई उसमें से ही उठा के और उसको खेत में सीधा डालते हैं, आधी सड़ी हुई आधी गैर सड़ी हुई। जो सड़ी हुई खाद होती है डिकम्पोज्ड होती है और थोड़ा बहुत असर करती है, और बाकी जो डालने के तरीके होते हैं फैलाने के उसमें भी होता है कि ऐसे डाल दिया, धूप उस पर पड़ती रही और 2-3 दिन में सारा का सारा उसमें नाइट्रोजन निकल गया और उसके बाद कह रहे हमने तो खाद डाली थी इसका कोई असर नहीं हुआ
0: जी,
2: और आधी कच्ची खाद पहुंच गई उसे कहीं दीमक लग रही है और सारे रोग लग रहे हैं। तो ये ना तो हमारा नुकसान ही हो रहा है, साथ साथ जो हाइजीनिक कंडीशन जो साफ सफाई का है जो मक्खियां और बीमारियां सब कुछ फैलती हैं, तो हम किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि थोड़ा सा तरीका बदलें, उसको डालने का सही तरीका बनाए। आजकल मैं बताना चाहूंगा गड्ढे के अलावा, जो गड्ढे में पहले डालते थे साल भर पड़ा रहता था, पानी की बरसात हुई न्यूट्रेंट सारे लीच होके नीचे चले गए तो उसकी जो गुणवत्ता थी वो भी उतनी अच्छी नहीं रह जाती थी, लेकिन आजकल एक नई तरीका निकाला है जिसको हम बिंडरो मेथड या बायवी तरीके से रैपिड कंपोस्टिंग, बहुत त्वरित कंपोस्ट बनने वाला जो होता है तरीका, इस तरीके में हम पूसा इंस्टीट्यूट में, पूसा अनुसंधान संस्थान में छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए, बहुत बड़ी लेवल पे जो म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट है उसको सबको किस तरीके से मैनेज करें, पूरा बायवी विधि से होता है। ना गड्ढा बनाने की आपको जरूरत है, ना कोई विशेष तैयारी की जरूरत है, आपको सीधा सरफेस प्लेन एरिया आपको चाहिए, उसमें आप 2.5 से 3 मीटर ऊंची और इतनी चौड़ी, जितनी आपके पास जगह हो उतनी लंबी लाइनें लगा लें, उस लाइनों की उल्टाई पलटाई करें बार बार, और साथ में एक माइक्रोबियल कंसोर्सियम आता है जिसमें हम कहते हैं कई तरीके के जीवाणु होते हैं जो कि सड़ाने में सहायक होते हैं, उनको डाल देते हैं शुरू में ही और वो अपना काम करते रहते हैं। वो बायवी वे से ये 30 से लेके, जैसा शास्त्री जी ने अभी बताया था, जिनका इनकी पहले की परिकल्पना थी वो अब साकार हो रही है कि वो 30 से लेके 90 दिन के बीच में किसी भी तरीके का खेती वाला जो भी पैदा हुआ अवशेष है वो सारा का सारा सड़ा के अच्छी खाद बनाई जा सकती है, और उसमें जो न्यूट्रेंट हैं, जो पोषक तत्वों की मात्रा जो आम कंपोस्ट हम गड्ढे में बनाते तो उससे भी थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि लॉस होने का टाइम कम मिलता है।
0: ठीक है,
2: तो इस तरीके के साथ में बर्मी कंपोस्ट भी कई तरीके लोग बताते हैं कि इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर पक्का हो, कच्चा हो, हमने इस तरीके का बताया कि किसान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेड़ की छाया है, हम उसमें भी बर्मी कंपोस्ट अच्छी बना सकते हैं।
0: अच्छा,
2: तो कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाली खाद कैसी बनाए, इस तरीके की हमारे पूसा संस्थान में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और भी बहुत जगह जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और भी अगर आपको चाह है तो बहुत सी जगह आपको मिल जाएंगी सीखने के लिए।
0: जी राजपूत जी, मैं चाहूंगी कि आप भी इसमें कुछ जानकारियां और जोड़ दे, प्रशिक्षण की कितनी आवश्यकता है, क्या कुछ कोशिशें चल रही है, साथ ही जैसे कंपोस्ट यूनिट की बात बताई है शिवादर जी ने, बहुत आसान है इसे बनाना, तो किसान खुद भी अपने स्तर पर ऐसा करके लाभ भी कमा सकता है।
4: सबसे पहले तो जो मिश्रा जी ने बात बताई
0: जी,
4: मैं बोलना चाहूंगा कि किस खाद क्या है ये पहले किसान भाई जान लें।
0: अच्छा,
4: हम सबको जानने की जरूरत है, गर्म है तो खाद नहीं, खाद है तो गर्म नहीं।
0: अच्छा,
4: बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, हम सोचते हैं कि हम डाल रहे हैं खाद लेकिन हम डालते हैं बीमारियां
0: जी,
4: तो उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे एनसीओएफ ने भी और हमारी दूसरी एजेंसियां आईसीआर वगैरह ने, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारी लेटेस्ट मेथड अभी आ गई हैं। जैसे कि आपको बताऊं, आपके पास कितना भी गोबर है, सबसे पहली बात खेती करना है तो गाय होना ही चाहिए, गाय से मतलब गाय बैल भैंस सब होना चाहिए। तो एक बहुत बहुत छोटी सी परिकल्पना है जिसको लेके अभी काफी मंत्रालय में भी बहुत सारा इस पे काम चल रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि बिना गाय के तो खेती अधूरी है, तो ये गोबर होगा, और गोबर मान लीजिए कितना भी है आपके पास, क्वांटिटी की कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए 50 किलो है, 60 किलो है, तो उसकी कैसी खाद बनाए, मैं अभी एक दो मिनट में इनको बताना चाहूंगा कि खाद जहां भी आती है आप उसको समतल कर लीजिए गोबर की खाद को, और उसमें 60 डिग्री पर आप किसी बांस से, किसी लकड़ी से उसमें होल कर दीजिए, और फिर उसमें आप करके देखिए, इतना अच्छा फायदा मिलेगा आपको, इतनी बढ़िया कंपोस्ट तैयार मिल जाएगी। हमारे पास जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, लिक्विड होता है, इसके अलावा हम जीवामृत बनाना सब जानते हैं, हमारे किसान भाई सब जानते हैं कि जीवामृत कैसे बनता है। अगर जीवामृत, और मैं तो कहूंगा कि गौमूत्र से अच्छी कोई खाद नहीं संसार में, अगर कोई अच्छी खाद है तो गौमूत्र है, उस गौमूत्र के को और जीवामृत को मिला के उन जो जो छेद आपने किए हैं होल 60 डिग्री पे, उसमें आप जो है उसको डाल दीजिए, एक एक एक होल में लगभग 200 ml के आसपास जो भी आएगा उसमें आप जीवामृत डाल दीजिए, गौमूत्र है तो गौमूत्र डाल सकते हैं आप लाइन से डाल सकते हैं, एक रो में आपने गौमूत्र डालिए, दूसरे में आप जीवामृत डालिए, तीसरी में आपके पास में हमारी जो राख होती है गांव घर की, उसमें पोटेशियम उससे मिलता है। ये जैविक खेती का एक अनुसंधान करके ऐसा हम लोगों ने डेवलप किया है, इसमें साइंटिफिक वैलिडेशन भी हो रहा है। तो ये सब करके 40 दिनों के अंदर, जैसा कि सर ने बताया, 40 दिनों के अंदर इतनी बढ़िया खाद किसान भाई बना सकते हैं, और आपको कहीं फैलाने की भी जरूरत नहीं है। आपका मान लीजिए खेत है, तो कुछ उस खेत में आप अलग अलग जगह पे, और गाय को आपको खेत पे रखना चाहिए एक शेड बना के, गाय बैल भैंस को कुछ आपको घरों में नहीं रखना चाहिए, वहां रखिए, तो ताकि गोबर आपका वहीं खेत पे रहे, लाने की जरूरत नहीं, वहां पर आप अलग अलग जगह पे रखिए और उसको इस तरह से समतल करके, और वहीं पर आप आठ दस एरिया मान लीजिए एक एकड़ में करना है तो आप चार पांच जगह पे करिए फिर उसको फैलवा दीजिए वहीं पे, इतनी बढ़िया खाद आपके उसमें पहुंच जाएगी जमीन में अपने आप, और फिर उसमें केचुए भी आ जाएंगे उसमें अपने आप अच्छे, जैसे हम कहते हैं अगरबत्ती लगाते हैं तो अच्छी चीजें आ जाती हैं, ऐसे अगर हमारा गोबर की खाद पहुंच गई तो सारे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो सर ने बताया कि बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म जीव बहुत बड़ा काम करते हैं। आप कहते हैं कि जैसे बात थोड़ा गाय की आ गई इसलिए मैं बताऊंगा कि जो सबसे अच्छी खाद होती है वो गाय की, देसी गाय की क्यों होती है, आप जरूर पूछना चाहेंगे कि गाय की ही क्यों होती है, क्योंकि गाय के सीकम में जो कहते हैं कि 34 करोड़ देवताओं का वास होता है, वो 34 करोड़ देवता एक्चुअली ये सूक्ष्म जीव होते हैं
0: जी।
4: जो उसके जो किसी दूसरे जानवर में नहीं होते, तो इसलिए
0: तो कई फायदे हैं इस तरह से जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्री जी आप ये बताएं कि ये एक मानसिकता बदलने की भी बात हो जाती है, हम चर्चा कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि बहुत सारे फायदे होते हैं जैविक खाद से, लेकिन एक आदत पड़ी हुई है लोगों की कि वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी उपज आ जाएगी, तो ये जो आदत पड़ी हुई है ये कैसे आदत बदलेगी और ये कितना आसान है?
5: आदत डाली किसने? आदत डाली वैज्ञानिकों ने, आदत डाली अधिकारियों ने, पहले उनकी आदत बदलने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, माफ कीजिए मैं एक भद्दा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है फर्टिलाइजर के ऊपर एक साल के अंदर। अगर इतना पैसा आप जैविक खेती के लिए दे दें और ये सब्सिडी खत्म कर दीजिए, किसान को आदत पड़ी है 360 रुपए का एक यूरिया का कट्टा मिलता है, उठा के उसे फेंक देते हैं, फसल उससे काली हो जाती है, देखने में उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है फोलियर वो अच्छी लगती है, तो हमें भी आसान काम हुआ हुआ है। उसी का केवल अगर 15 या 10 किलो यूरिया पानी में घोल के स्प्रे करें तो वो उससे बेहतर काम करेगा। किसान की आदत बदलने के बजाय जो नीति निर्धारक हैं और ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है जिसमें सारे फर्टिलाइजर के उत्पादक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सरकारों से पैसा चो रहे हैं, ये पहले इनका जो हित है जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे, जब तक सरकार की और नीति निर्धारकों की आदत नहीं बदलेंगे, किसान की आदत बाद में बदलेगी, बदलेगी नहीं तो विलंब से बदलेगी। सरकार की नीति की समीक्षा हम यहाँ कर रहे हैं तो पहले सरकार की नियत और नीति बदलने
0: की। सिंह जी आप इस विमर्श को किस तरह से देखते हैं?
3: देखिए सरकार की नीतियां और सरकार के काम जो पहले से हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी इस देश को? कटोरा लेके भीख मांगते थे हम देश देश घूम के अनाज के लिए और लाइन में लग के अनाज लेते थे। वही हरित क्रांति जो हरित क्रांति उस समय लाई गई हमारे वैज्ञानिकों ने लाया तो पूरे देश ने ताली बजाई और खुशी जताई और डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी भी उस कतार में रहे होंगे ताली बजाने वालों में। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका बिल्कुल ये कहना है कि उस समय संतुलन बनाने में गलती हुई
0: जी।
3: जितना प्रयोग होना चाहिए जिस अंधाधुंध प्रयोग किया गया, एक शब्द यूज कर रहा हूँ, अंधाधुंध दोहन किया गया उस मिट्टी का, उस जमीन का, संसाधनों का,
0: कमी रही कि इसके दुष्परिणाम
3: मैं बता रहा हूँ, दुष्परिणाम उसका यही हुआ कि जब हम दोहन किसी चीज का ज्यादा करेंगे और इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे करेंगे क्या, देखिए असंतुलन किस लेवल पे हुआ, सिर्फ संसाधनों का नहीं हुआ, मिट्टी का हुआ, पानी का हुआ, यही नहीं आप दाल और तेल, खाद्य तेल, आज स्थिति है कि हम लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं सिर्फ उसी असंतुलन के चलते, क्योंकि सारा का सारा जोर हमने अपने किसानों पर इस बात के लिए दिया कि साहब गेहूं और चावल पैदा करो देश भर में, और गेहूं चावल पैदा करने के चक्कर में जिस पंजाब और जिस हरियाणा में मोटे अनाजों की, दलहन की, तिलहन की खेती हुआ करती थी और बाकायदा फसल चक्र के तौर पर खेती होती थी और मिट्टी की उपजाऊपन को, उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की क्षमता थी उस मिट्टी में, आज वो मिट्टी बांझ होती जा रही है, वहां की पैदावार घट रही है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन बढ़ाए नहीं बढ़ रहा है। तो हरित क्रांति के दौरान जब उसे ठीक है उस समय की जरूरत रही होगी, और आज जितने डॉक्टर साहब बैठे हैं और ये हमारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और अधिकारी बैठे हुए हैं कृषि मंत्रालय के, मैं इनसे जानना चाहूंगा, जरा समझिए एक्सटेंशन के नाम पर क्या हुआ, यहां हम ज्ञान दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब और ये सारे लोग, मैं सबसे जानना चाहूंगा ये सारे ज्ञान, सारी जानकारी क्या किसानों तक पहुंची है? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि कुछ ही किसी स्टेट के पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक ये जानकारी हो,
0: ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं,
3: पूरे देश में जानकारी होगी।
0: लैंड टू लैब टू लैंड की बात तो कहीं नहीं पहुंची है, लेकिन ये गैप का जो की जो शिकायत है वो लगातार आती रहती है।
4: ऐसा है, हमारा पूरा एक एक्सटेंशन डिवीजन है, इसके लिए हर एक मंत्रालय में अपना एक डिवीजन होता है, सर को पता है और आपको भी पता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट इनको पता होना चाहिए, होगा कि एक पूरा एक डिवीजन होता है, वो यही काम करता है, मैंने जो कुछ भी नई स्कीम्स आ रही हैं वो सबको उनको किसानों तक लैब टू लैंड पहुंचाने का काम वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारा काम तो किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेके उसको बनाने का काम हम देखते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम देख रहे हैं, पर हमारा जो एक्सटेंशन डिवीजन है वो आपको डिटेल में बताएंगे, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो काम चल रहा है इसमें।
0: बिल्कुल शिवाधर जी, आपका भी मैं जरूर मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इतने वैज्ञानिक है, लेकिन शिकायत यही रह जाती है कई बार कि जो लैब टू लैंड का जो गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा।
2: जहां तक तकनीकी जानकारी का सवाल है, हम कह रहे हैं कि बहुत हद तक पहुंची हुई है हमारे किसान भाइयों के पास। इनमें से कौन सा किसान भाई ऐसा है जिसे ये पता नहीं कि जैविक खेती या जैविक पदार्थ प्रयोग करने से, जैविक पोषक तत्वों का प्रयोग करने से ज्यादा फायदा है? सबको पता है, लेकिन उसके कई ऐसी भी समस्याएं हैं जिससे कि प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
0: जैसे कि
2: गोबर की खाद बनाना, आजकल जब प्रेशर है कि हम ज्यादा पैसा कमाएं, इनका एक होड़ लगी हुई कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ऐसी फसलें उगाएं जिसमें तुरंत पैसा मिल जाए।
0: बिल्कुल।
2: तो उसमें दूसरी बात, जो श्रमिकों की कमी है, खेती के लिए श्रमिकों की संख्या पहले क्या थी, आज क्या है, और आज उसकी रेट क्या है, पहले क्या रेट थे, इन दोनों को देख ले तो 50 किलो का कट्टा यूरिया का डालना बहुत आसान है, खुद ही जाके डाल आएगा, लेकिन जब गोबर की खाद जब 50 किलो की जगह जब हमें 5 टन या 10 टन डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें बुग्गी भी चाहिए होगी, ट्रैक्टर भी चाहिए होगा, हमें 4 आदमी भी चाहिए होंगे, वो कहां से आए?
0: तो इसका कुछ व्यवहारिक समाधान,
2: उसका व्यवहारिक समाधान ये है कि हमारे सब किसान भाई एकजुट होके इसके दूरगामी परिणाम को अगर ध्यान में रखें,
0: अच्छा,
2: तो धीरे धीरे उसे फसल चक्र में भी अपनाएं, तुरंत लाभ पे ना जाएं, हमें अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ियों को क्या खिलाना है उस पे जाएं।
0: जैसे एक सोच ये भी है कि अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो जो उत्पादकता है वो घटती है, क्या ऐसी भी कोई बात है क्या?
2: नहीं, ऐसा इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैविक खाद का प्रयोग अब जैसे हम जमीन में डालते हैं, अब ऐसा एकदम जैसे आप दे रहे एलोपैथिक दवाई से एकदम आयुर्वेदिक दवाई पे आ जाएं, मैं एक सीधा सा एक उदाहरण ले रहा हूं,
0: अच्छा,
2: तो एलोपैथिक में कहते हैं एकदम असर होता है, इसमें जो यूरिया में और जिसमें भी ये फर्टिलाइजर तुरंत उपलब्ध होती है पौधों को, तो सीधा असर एकदम काली फसल दिखाई देने लगती है, और इसमें धीरे धीरे इम्मोबिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं, पहले शुरू शुरू में थोड़ा कम रिलीज होता है, बाद में एक स्तर आ जाता है जबकि प्रचुर मात्रा में सभी कुछ उपलब्ध होने लगता है, तो उस गैप को आप चाहें कि यूरिया वाला एकदम असर दिखाई पड़े वो तुरंत नहीं दिख सकता, उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा डालनी पड़ेगी जो कि आजकल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी फसल अवशेष हैं उन सब का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रयोग होने लगा है, और उनको हम जानवरों के चारे के अलावा भी बाकी और चीजों में जगह बेच रहे हैं, और कुछ किसान भाई तो जल्दी में जला भी देते हैं जिसकी बहुत अच्छी खाद बनाई जा सकती है, लेकिन वो भी श्रमिक ही उसके पीछे कारण है।
0: पर्यावरण को नुकसान हो रहा वो अलग बात है, लेकिन क्या अनुभव है किसानों का?
5: एक विषय छोटा सा, ये सारा किसान की अर्थव्यवस्था जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है, जैसे आपने कहा लागत ज्यादा आती है, परंतु अगर आप जैविक खेती की उत्पादन देखें, मान लीजिए गेहूं जो है वो 12 क्विंटल हुआ, दूसरा खाद डालने से 14 हुआ, इससे अगर 14 आप करेंगे तो इसमें लागत कम आएगी दूसरे के बजाय, और लंबी अवधि में इसकी लागत रासायनिक खेती की ज्यादा रहती है जैविक खेती के मुकाबले में, पोषक तत्व तो बेहतर आते हैं, पानी कम लगता है, अगर आप रासायनिक खाद डालेंगे तो पानी आपको गेहूं में 5 से 6 चाहिए, देसी खाद डालेंगे तो 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 में काम हो जाएगा, तो उससे जल स्तर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो भी एक सवाल है, फिर विषैले तत्वों के अवशेष है उससे जो शरीर के, जैसे पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जहां मनुष्य का स्वास्थ्य पूरे भारत में सबसे बेहतर माना जाता था, केवल जिंक की कमी होने से डायबिटीज इतनी हो गई गांव में, जिसको कोई जानता नहीं था मधुमेह को, वो
1: जिंक जो है वो गोबर के खाद डालेंगे तो कम नहीं होगा, और कितने भी आप सॉयल हेल्थ कार्ड बना लें, हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता कि एक एक चीज नाप के आप इतना जिंक डालना, इतना बोरोन डालना, इतना मोलिब्डेनम डालना, इतना सल्फर, आप देसी खाद डालिए, सब अपने आप जितनी जरूरत है सब पड़ जाएगी, पानी की आवश्यकता घट जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी, किसान का प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
9: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, हमने आप एक सुंदर छू प्यारू छू आपड़ भीली गीत ने सांभळ्यू। इना गीत ने बाद अपना कार्यक्रम ने आगाड़ी बढ़ाई है। एक बार फिर तो हूँ स्वागत करूँ है तमार सबूनों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। अना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में किसान भाइयों आप लगातार जैविक खाद ना बारा में आप चर्चा कर रहा है कि कम तरीके थी जो बाकी खाद की तुलना में जो आप जैविक खाद है जो आप गाय नु गोबर है वो कितरो गुणकारी है तेना बारा में आप लगातार जानकारी हासिल कर रहा है। किसान भाइयों ने इन जानकारी ने आगाड़ी बढ़ाता जाइए जानिए हजू महत्वपूर्ण जानकारियों ने।
2: आज हम जैविक खाद पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैविक खाद यानी कचरे से सोना, ये सोना कितना खरा है और कितना खोटा है, इस पर वाद संवाद का सिलसिला फिर से शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: इसी साल 20 जनवरी को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की मीटिंग में नगर कंपोस्ट योजना को मंजूरी दी। इसके तहत ये तय किया गया कि सभी उर्वरक कंपनियों के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ नगर कंपोस्ट की मार्केटिंग भी जरूरी होगी। प्रोत्साहन के तौर पर सरकार 1500 रुपए प्रति टन के हिसाब से देती है। इसका मकसद किसानों को सस्ती दर पर कंपोस्ट खाद उपलब्ध कराना है। सरकार की ये भी कोशिश है कि किसानों को नजदीकी उर्वरक विक्रय केंद्र पर ही कंपोस्ट भी उपलब्ध हो जाए। साथ ही सरकार ने कंपोस्ट के फायदों के बारे में किसानों को जानकारी देने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी इस कोशिश में सहभागी बनाया। लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इस दिशा में शोध कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तो कम समय में कंपोस्ट तैयार करने के लिए सूक्ष्म जैवीय टीका भी विकसित किया है। इसके इस्तेमाल से 70 से 75 दिन में अच्छी कंपोस्ट तैयार की जा सकती है। आम विधि से कंपोस्ट तैयार करने में 4 महीने यानी 120 दिन लगते हैं।
2: तो आपने देखी ये रिपोर्ट। आइए इसके बाद इस चर्चा को हम आगे ले जाते हैं। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है उसमें शामिल हुआ और अपने सवाल पूछे। जी पूछे अपना सवाल।
4: डॉक्टर साहब, जो अभी आप लैंड टू लैंड की जो बात कर रहे थे, लैब टू लैंड
2: जी,
4: उसमें कहीं ना कहीं कड़ी टूटी हुई है या अविश्वास पैदा हुआ है साइंटिस्ट और किसान के बीच की जो कड़ी है। आप लैब में काम कर रहे हो, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, बीच में कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ है और इस वजह से वो चीज किसान तक नहीं पहुंची। किसान अगर जाते हैं तो डॉक्टर साहब किसान को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता वहाँ पे जिस तरह से होना चाहिए। अगर मैं 50 किलोमीटर चल के जाता हूँ तो हो सकता है आपका ऑफिस का गेट ही ना खुले, आप अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं, बाहर वाले नहीं जाने दें। उसके लिए डॉक्टर साहब मैं किसान हूँ, हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 15,000 किसान है हमारे ग्रुप में सर, 1,000 उसमें कृषि विशेषज्ञ हैं, आप जैसे साइंटिस्ट भी हैं, और शुगर केन ग्रोअर्स ऑफ इंडिया के नाम से है, उसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं। आप जो हमें एक चैनल के थ्रू नहीं बता पाते हो वो हमें फटाक से आप कमेंट करते हो, हम आपको प्रॉब्लम दी, हमने आपने कमेंट कर दिया और हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, मैंने किया ठीक हुआ, मैंने दूसरे साथी को बता दिया, पूरे ग्रुप में वो चीज़ फैल जाती है। तो इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल रहा है सोशल मीडिया का। दूसरा सर, प्रिंट मीडिया है, आप बहुत सारी मैगजीन निकालते हो, पूसा से बहुत सारी मैगजीन निकलती हैं, मैं भी मेंबरशिप ले रखी है, साल में 2 या 3 पहुंचती हैं, वो वहां से डिस्पैच करते हैं, मुझे रिसीव नहीं होती, बीच में खो जाती है। क्यों ना फिर इसका हम तरीका बदला जाए, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया पे आ जाए।
2: मतलब जो एक गैप है, जो कड़ी टूटी हुई है लैब टू लैंड का, वो उसे कैसे पाटा जाए, अगर कोई सुझाव आपके पास है या आपको क्या लगता है?
5: जहाँ तक सवाल है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं और आजकल एक MGMG है, मेरा गांव मेरा गौरव। हम सब लोगों ने कम से कम एक वैज्ञानिक के पास कम से कम 5 गांव, हम लोग गांव में जाते हैं सुबह से शाम तक, सबसे उनकी समस्याएं सुनते हैं, जो उनके लिए सुझाव हमारे पास तुरंत उपलब्ध होता है वो हम बताते हैं, और अगर उपलब्ध नहीं है तो हम अपने और वैज्ञानिकों से डिस्कस करके अगली विजिट में जाके उन सब बातों पे समाधान की बात करते हैं। इतने सारे किसान मेला लगते हैं, हमेशा किसान भाई वहां पे आते हैं और बहुत सारे किसान भाई मुझे रात में अगर 8 बजे 10 बजे 11 बजे भी मेरे पास फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें क्या करें, तो मैं तो कभी आलस नहीं करता हूँ। हमारी समझ से लोग आलस नहीं करते हैं, लेकिन कितने लोग संपर्क करते हैं और कितने कर, क्योंकि जितने किसान है उतने वैज्ञानिक तो नहीं है, तो 1-to-1 तो नहीं हो सकता है
2: जी।
5: तो जो जहाँ पे कलेक्टिव जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो हमारे ग्राम विजिट है, मेला है, इनमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर सहयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो मुझे लग रहा है आपको सारी जानकारी हो सकती है। ये आप ध्यान रख के चलिए कि जितने किसान हैं उतने वैज्ञानिक नहीं हैं, तो 1-to-1 आपको नहीं हो सकता
2: जी। अगला सवाल लेते हैं हम लाइव। अगला सवाल,
6: मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ, संजीव कुमार रूपबास दादरी गौतम बुद्ध नगर से। जैविक खेती करने में हमको अपना एक जैविक उत्पाद तैयार करने में अपने खेत में 4-5 साल लग जाते हैं। जैसे कि अभी बात आ रही थी कि भाई हम अगर रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दें और जैविक पे ले आएं तो एकदम पैदावार घटती है, उसके लिए हमें 4-5 साल का इंतजार करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको रासायनिक खाद की मात्रा घटानी पड़ती है और जैविक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। अब हमने जैविक खाद तो हमने डाल के खेत में उत्पाद तो तैयार कर लिया, लेकिन समस्या आती है किसान के सामने जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, एक रासायनिक खाद के द्वारा प्रयोग किया हुआ प्रोडक्ट है हमारा और हमने जैविक से किया है, और रेट जब जाते हैं तो हमें दोनों के बराबर मिलते हैं, उसका हमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती, उसके ऊपर सरकार।
2: ठीक है, दो महत्वपूर्ण सवाल आपके निकल के आए हैं। एक तो वक्त लगता है, सूक्ष्म जैविक टीका भी विकसित की गई है ताकि कम समय लगे, जहां तक मेरी जानकारी, अगर आप इसके बारे में और भी विस्तार से बता सकें।
5: देखिए ऐसा है कि जो एक भ्रांति है, मुझे लग रहा है कि उपज बहुत ज्यादा कम हो जा रही है। आप जैसे रासायनिक खादों से, रासायनिक खाद का मैं ये कह रहा हूँ कि प्रयोग जब करते हैं तो एकदम असर दिखाई, इसका असर नहीं दिखाई देता हो, और हम जो पहली साल या दूसरी साल या तीसरी साल अगर भरपूर मात्रा में हम उनका प्रयोग करेंगे खादों का, जैविक खादों का, तो ऐसा नहीं कि उपज में बहुत कमी आएगी, उपज उतनी ही रहेगी। आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये एक भ्रांति है, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा उपज कम हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि अगर सड़ी हुई खाद नहीं डालोगे, अगर सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं करोगे, तो हो सकता है आपके खेत में जाके वो सड़ने में जो बैक्टीरिया वगैरह वो काम करते हैं उसे सड़ाने का, तो सारी एनर्जी उधर लग गई, तो जो न्यूट्रिएंट रिलीज एक होता है कि पहले सड़ता है उसके बाद उसमें से पोषक तत्व निकलते हैं।
2: सही विधि जानना भी बेहद जरूरी है।
5: तो आपके पास जानकारी तो पूरी उपज मिलेगी।
7: मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो मुझे सरकार के अंदर हो रहा है, मैं उसके भी थोड़ा सा आ रहा हूँ। किसान ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। निश्चित रूप से प्रोडक्शन कम होता है डॉक्टर साहब जो भी कहें, लेकिन पहले दूसरे तीसरे साल में घटता है, चौथे पांचवें साल पे वो आता है। सरकार ने एक योजना अभी शुरू की है, उसमें क्या है कि पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल पे पर हेक्टेयर में 20, 15 और 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है उस किसान को, लेकिन तब दी जाएगी जब वो किसान क्लस्टर बना के कम 50 किसान एक साथ हो, और एक निश्चित है कि भाई 50 किसान हो या एक निश्चित रकबा हो खेत का, इतने लोग क्लस्टर बना के अगर आएंगे तो उनको इस तरह की सुविधा दी जाती है, और उन्हें बैंक से बेहतर मतलब रियायती दर पे उनको लोन भी उपलब्ध हो रहा है। उन किसानों के प्रोडक्ट को एक ऐसे डेडिकेटेड मार्केट के लिए वो सरकारी तौर पर इन्होंने व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये कितनी कारगर होगी ये तो आने वाले दिन बताएंगे,
2: राजपूत जी बताएंगे, क्योंकि बाजार और मूल्य इसकी भी चिंता है जो वाजिब है।
8: जहाँ तक जैविक खेती के उत्पादों की बिक्री की बात करें, अपन मार्केट की बात करें
2: जी,
8: तो अभी सरकार ने कुछ बहुत अच्छी स्कीम अभी एक मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग लेके आए हैं। उत्पादन से लेके वैल्यू एडिशन से लेके उसका सर्टिफिकेशन भी करा रहे हैं, और उसको जो एजेंसियां हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनके माध्यम से एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा रही है
2: जी।
8: इसके अलावा कुछ प्राइम अच्छी लोकेशंस जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर और आपके दिल्ली, आपका चेन्नई, इस तरह की मेट्रो सिटीज में इनके आउटलेट्स भी खोले जा रहे हैं। कुछ मॉल्स में अभी इवन हमने एक कृषि भवन में भी एक शॉप खोल रहे हैं, अभी उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसमें सिक्किम या जिस तरह के और भी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वहां हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जैसे, जहां पर पूरा जैविक ही होता है, जहां कोई केमिकल नहीं डाला जाता, उन सब के प्रोडक्ट्स को वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग भी की जा रही है। पर एक बात मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, हर पूरे हिंदुस्तान के नॉर्थ केबल जैविक नॉर्थ ईस्ट के आप एफपीओस बनाइए। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे आपने बताया क्लस्टर्स। जब आपके 100-500 हजार किसान मिलके कोई काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो क्वांटिटी में ज्यादा आता है, बल्क में आता है। और जब बल्क में आता है, जब आपके पास बल्क में जब कोई प्रोडक्ट आएगा तो मार्केट चल के आता है। जैविक खेती करने वाले किसानों को मैं ये कहूंगा कि आपका मार्केट आपके घर चल के आता है, आपको मंडी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे शास्त्री साहब बैठे हुए हैं जो जैविक खेती करते हैं, उनके खेतों पर लोग जाके पहले से बुकिंग करा देते हैं।
2: बिल्कुल,
8: ऐसे बहुत सारे किसान हैं, मैं जानता हूं आपके यहाँ बुलंदशहर में है कुछ किसान, जैसे मिस्टर त्यागी करके हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं, करीब 1000-1200 किसानों को तो मैं बाई नेम जानता हूं, जो जिनके पास लिस्ट होती है उनको बाजार में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी को गेहूं चाहिए, हर आदमी को फल चाहिए, हर आदमी को सब्जियां चाहिए, उनके पास लिस्ट पहुंच जाती है और वो हमें भरोसा होता है।

0: छूट नहीं है किसान को सब जगह। अगर मेरा गांव जमुना के ऊपर है, मैं अपना गन्ना जमुना के पार हरियाणा के मिल को दे दूं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। अगर अपनी मंडी के बाहर ले जाके बाहर बेचूं तो मंडी टैक्स की चोरी में गिरफ्तार हो जाऊंगा। एक तरफ सारी सरकारें दम भर रही हैं कि हम वैश्वीकरण कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का किसान एक मंडी से दूसरी मंडी के क्षेत्र में ले जाकर बेच नहीं सकता।
1: ये मैम इस दिशा में एक सराहनीय पहल है कहना पड़ेगा केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना।
0: वो जो एक टैली उस पे किया है, किसान के पास इतना साधन नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि बल्क जब तक नहीं होगा, न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा न राष्ट्रीय व्यापार होगा, उसके लिए आप खोल दीजिए, वो स्वतः ठीक हो जाएगा। जब तक आप सब चीज में कंपटीशन कर रहे हैं तो किसान में क्यों नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, कहा भी जाता है एकता में बल है, तो इसमें भी सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। जब सब किसान सामूहिक तौर पर आएंगे और इस तरह से अगर प्रयास करेंगे तो उसका फल भी जरूर अच्छा मिलेगा।
2: किसान भाइयों, आज नाना खेती बाड़ी कार्यक्रम थी, आप ये घनी खरी महत्वपूर्ण जानकारी ने जानियो है, तो मुझे जानियो है कि कम आपड जो जैविक खातर है तिनी बनावानी अलग अलग विधि कहींयो कहींयो है। जरूरी नहीं मले कि आपू रासायनिक खाद ही आपू प्रयोग करिए, बाकी जो आपड घेर में पशु है तिनाथी भी, आपड सब्जियों ना कचरा थी भी, आपड फसलों ना कचरा थी भी, और भी अलग अलग जो आपड़ मानिए कि आपू अपना झाड़ू ना पैडा है तिनाती भी आपू जो खातर बना सकिए, तो ये विधि आपू जानवानी जरूरत है। विधि अगर आपू जानी गया तो आरंभ था इना तीनों प्रयोग करें आपड जो रासायनिक खाद नी जो समस्या है तिनता आपू वसी सकी। तो किसान भाइयों, आज ना इना कार्यक्रम में बस इतनु, तमारती फिर काल मुलाकात था है इना समय पर। इतरे बनेलारो हमारी हाथे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नी हाथे झाबवानी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, एक बारी फिर तो बहुत बहुत स्वागत करूं से तमार सबूनो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नू यू खेतीबाड़ी कार्यक्रम आपड़ हंगड़ा किसान भाइयों हरू खेतीबाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। किसान भाइयों, तमु भली बाती वाकिफ है कि आपड़ जावानो जो किसान है वो मुख्यतः जिनी आय नो जो स्रोत है वो कृषि ही है, तो आप खेती ने खेती में अधिक से अधिक मुनाफो आपू की कम ली सकें, क्योंकि आपू जानी है अपनी जगह जो है उबड़ खाबड़ है, पथरीली है, ने इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं मले है, तो इन्हीं जगह में आपू कई नहीं फसल करी सकें ली सकें तीन थी अधिक से अधिक आपू मुनाफो मिली सके, तिना बारा में आपू चर्चा करूँ जाणूँ इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज नो जो खेतीवाड़ी कार्यक्रम नो हमारो जो विषय है तो बेहद अलग ही विषय है, क्योंकि आज आपू जाणूँ कि जो हमारा किसान है किसान विक्रय मूल्य जिन्हें आपू की है MSP तिनके है, तो तिनी MSP ने किकम जाणवो कि तिनो डिसीजन किकम था है, किकम तिनो निर्णय ले है, कौन निर्णय ले है, जो अपने किसान भाइयों ने क्या हूँ हूँ समस्या है तिना बारा में भी आपू विस्तृत जानकारी आज ना इना कार्यक्रम ना माध्यम थी हमणूँ। तो किसान भाइयों, आशा करूँ है कि यू कार्यक्रम आप सबू हरू लाभकारी था है, अने आज ना इना कार्यक्रम में वधु थी वधु चर्चा थवानी है कि हूँ सही है हूँ गलत है, इनी पर आपू चर्चा करूँ आज ना इना विषय पर। तो किसान भाइयों, आप हर वात आपून रेडियो टांडिया भील नो इनो खेतीवाड़ी कार्यक्रम थी कहीं ना कहीं सीजे आपून हमेशा हिकवा मले है, तो किसान भाइयों आशा करिए है कि इना कार्यक्रम ने आपू आखिरी तक देखूँ अने जानकारी लूँ हिकूँ आपू इना कार्यक्रम थी, ते तमारो वधु समय नहीं लेते हुए आज इना कार्यक्रम ने आपू आती शुरुआत करी से।
3: आज जो हमारा विषय है वो MSP से जुड़ा है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से। आपको पता ही है कुछ दिन पहले खरीफ के जो है MSP घोषित किए गए हैं, तो वो MSP कैसे पता लगते हैं, कैसे तय होते हैं, कितना किसानों को फायदा होता है, कितने किसान उससे जुड़े हैं, इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज का हमारा विषय है MSP क्या मिला किसानों को। देखिए, इस विषय को और अच्छी तरह हम समझेंगे, और ये सबके लिए जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कि किसान ही इससे जुड़े हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि MSP जो है वो किसान के लिए आता, लेकिन इससे सब कुछ प्रभावित होता है पूरे जीवन पे। सच कहें तो किसानों के जीवन पे इसका असर पड़ता है, उनकी आमदनी पे इसका असर पड़ता है, इसलिए थोड़ा MSP को और समझते हैं और ये जानने के लिए देखते हैं ये लघु फिल्म।
4: इस बार केंद्र सरकार की बड़ी पहल रही है कि दलहन के MSP को बढ़ाने के साथ इसमें 200 रुपए का बोनस देना, जो पहली बार हुआ है। देश में दालों की आवश्यकता

0: करीब 23 से 23.5 करोड़ टन की है, लेकिन देश में दालों का उत्पादन करीब 17.3 करोड़ टन होता है और हर वर्ष लगभग 5 करोड़ टन दालों का आयात होता है। देश में अधिकतर दलहन उत्पादक किसान छोटे व सीमांत हैं। सरकार के इस फैसले ने इन किसानों के चेहरों पर खुशियां जरूर ला दी होंगी। सरकार के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो किसान दलहन की खेती की ओर मुड़ेंगे, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में इजाफा होगा और साथ ही विदेशों से आयात की जाने वाली दालों की मात्रा में वक्त के साथ साथ कमी आएगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचेगी। कृषि उपज के दाम तय करने की शुरुआत तब हुई जब खाद्यान्न उपलब्धता में कमी होने लगी और सूखा व बाढ़ के साथ अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के कारण खाद्यान्न के मूल्यों में उतार चढ़ाव देखा जाने लगा। सरकार को लगा कि किसानों को कृषि उपज के उचित दाम मिलने चाहिए और उपभोक्ता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित साधने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1965 में APC यानी कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जो कृषि उपज का मूल्य तय करने पर सिफारिश देता था और फिर 1985 में जिम्मेदारियां बढ़ाते हुए सरकार ने APC का नाम CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया। कृषि उत्पादों के मूल्य तय करने में बस तभी से CACP की सिफारिशों पर सरकार गौर करती रही है। सरकार का मानना है कि सही और उचित मूल्य से ही कृषि पैदावार और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। आज CACP करीब 24 कृषि उपजों का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। MSP तय करने के लिए CACP मोटे तौर पर उत्पादन की लागत, निवेशी मूल्यों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्यों में फर्क, बाजार भाव में ट्रेंड, अंतःफसलीय मूल्यों में फर्क, मांग व आपूर्ति हालात, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य कीमतों के स्तर पर प्रभाव, जीवन शैली पर प्रभाव, राष्ट्रीय विपणन मूल्य स्थिति, किसानों द्वारा चुकाई गई और प्राप्त की गई कीमतों में फर्क आदि पैमानों पर गौर करती है। किसी फसल को तैयार करने में कितनी लागत आ रही है, इसे C2 में कहा जाता है और फिर इस C2 में अतिरिक्त 10% जोड़कर C3 तैयार किया जाता है और ये C3 ही रबी या खरीफ की फसलों के MSP की सिफारिश होती है। लेकिन MSP से कई किसान कम ही संतुष्ट हैं और कई बार तो सरकार व किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि CACP द्वारा तय किया गया MSP उस फसल की उपज लागत से भी कम था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या MSP तय करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है? क्या किसानों की बढ़ती लागत, जिसमें खाद, बीज, डीजल के दामों से लेकर श्रमिकों पर बढ़ रहे खर्च के सही आकलन में CACP से चूक हो रही है? क्या एक ही MSP अलग अलग राज्यों के लिए मान्य हो सकता है? क्या राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बोनस या राज्य परामर्शी मूल्य को खत्म किया जाना सही है? सवाल कई हैं, लेकिन एक ओर जहां MSP ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने में महती भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी ओर कई फसलों का MSP के दायरे से बाहर होना भी परेशानी का सबब है। MSP कैसे देश के 86% छोटे व सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दे सकता है और उपभोक्ताओं का हित भी कैसे सुरक्षित रहे, इस पर विचार विमर्श आवश्यक है।
1: तो आपने देखा कि MSP जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये जो है किसानों की आमदनी तो तय करने में मदद करता ही है, पर साथ ही कोई भी वस्तु आप बाजार से खरीदते हैं, खाद्य वस्तु, तो उसके दाम क्या होंगे। वैसे तो कपड़ा वगैरह जो है, कपास, वो भी इसमें आता है, तो उसमें भी बहुत कुछ एमएसपी की भूमिका रहती है। इसी को थोड़ा समझते हैं और एमएसपी के दाम कैसे तय होते हैं, कैसे ये तय किया जाता है कि किसान की इतनी लागत है, उसको इतना मिलना चाहिए पैसा, और उसमें बहुत सी शिकायतें रह जाती हैं, वो शिकायतें भी क्या हैं, उसको भी थोड़ा समझते हैं, और सही तरीका क्या होना चाहिए एमएसपी तय करने का, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कई विशेषज्ञ हैं जो इस विषय पर बताएंगे, आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर टीहक साहब। प्रोफेसर साहब जो हैं पूर्व अध्यक्ष हैं सीएसीपी के, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो एमएसपी तय करता है। आपसे प्रोफेसर साहब हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये तय होता है एमएसपी, और बहुत सी शिकायतें किसानों की रह जाती हैं, खरीफ पे भी चर्चा करेंगे और पूरा एमएसपी को भी समझेंगे। साथ में हैं प्रभाकर किलकर जी, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, किसानों के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और एमएसपी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभाकर जी। हमारे साथ किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी भी हैं, किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एमएसपी से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान। आपसे इसी विषय पर चर्चा रहेगी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे तिवतिया जी हैं, सुंदरपाल सिंह तिवतिया जी, जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आए हैं, खुद किसान हैं, किसानों के मुद्दों की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। एमएसपी से कितना लाभ उन्हें पहुंचता और कितना नहीं, इस पर चर्चा रहेगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष सिंह जी हैं फतेहपुर यूपी से, किसान नेता हैं, खुद किसान हैं, खेती किसानी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और एमएसपी ये जो नया आया है इसमें और पुराने में क्या फर्क रहा, कैसे किसानों की मदद करता है एमएसपी, इस पर आपसे बातचीत करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत जो है डॉक्टर हक आपसे मैं करना चाहूँगा, थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये तय कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है?
2: जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो तय करने का पद्धति है या तरीका है, उसमें एक तो है कि कृषि में लागत, उस फसल का लागत क्या है, वो लागत देखा जाता है। दूसरी बात है कि मार्केट में उस फसल का क्या दाम है, देश के बाजार में और विदेश के बाजार में, वो भी देखा जाता है। उस फसल का आज के दिन में देश को कितनी ज़रूरत है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है, किसकी कमी है या ज़्यादा है, वो देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को अगर इनपुट खरीदना है या दूसरी और चीज़ खरीदना है इंडस्ट्रियल सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से, तो उनका दाम और फसलों का दामों में एक तालमेल हो, कि बहुत ज़्यादा कम बेसी होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी, तो वो भी ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखना होता है कि फसल का दाम इतना हो कि रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज का है, जैसे केन का है, शुगर मिल्स का है, कॉटन का, कॉटन मिल्स हैं, वो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं, तो भी देखा जाए कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए उनका रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी एक रीजनेबल हो। ये भी देखा जाता है कि जो आपका इनपुट प्राइसेस में, खास करके ओवर टाइम, इस साल अगर फसल का दाम तय करते हैं तो पिछले साल क्या लागत था और अभी कितना चेंजेस हुआ, वो देखना होता है। फिर इन्फ्लेशन में क्या असर होगा, ये सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी
1: इतनी सारी चीजें
2: उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मेंशन है, उसमें कितना किसको वेट देते हैं वो डिपेंड करेगा चेयरमैन के ऊपर या मेंबर्स के ऊपर या बाकी किस तरह का एटमोसफियर है उसके ऊपर।
1: लेकिन सब आप क्योंकि सीएसीपी से जुड़े रहे हैं, एक चीज जो अभी दो दिन पहले खरीफ के मूल्यों की घोषणा हुई है, उसको आप किसान की तरह से अगर देखें तो किसान को उसमें क्या फायदा होगा? जैसे कुछ अगर हम मान लीजिए चावल की, धान की बात करें, तो धान में उस हिसाब से 50 रुपए का इजाफा किया गया है
2: जी,
1: तो आपको क्या लगता है सरकार एक सोच समझ के कि कदम उठा रही है, क्योंकि धान का हमारे पास स्टॉक भी बहुत है और धान जो है उस चक्र से भी हम निकलना चाहें, तो ये आपको कुछ एक रणनीति उसमें एक दिखती है?
2: बिल्कुल है, क्योंकि कई सालों से ये चर्चा में है कि धान की खेती से, खास करके पंजाब हरियाणा के इस सिचुएशन में देखें तो वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर का, काफ़ी नीचे चली गई है
1: जी।
2: वो लगता है कि फसल आगे, अगला कोई फसल,
1: गेहूं धान के चक्र से किसान निकल नहीं
2: चक्र से निकल नहीं रहा है। तो कई सालों से चल रहा है कि चावल गेहूं का अभी स्टॉक भी अच्छा है, अभी जैसा कहा गया ना कि स्थिति अभी देखना है, तो उसके बाद अगर उसको डायरेक्शन बदलना है, जैसे पल्सेस में हमारी कमी है देश में
1: जी।
2: ऑयल सीड्स की कमी है देश में, खासकर केडेबल ऑयल हम 10 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस भी 3 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोत्साहन देना है आपको पल्सेस के लिए भी और ऑयल सीड्स के लिए भी। तो लेकिन हो नहीं रहा है कई कारणों से, कि अभी भी इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी जिसको हम कहते हैं कि असंतुलन बना हुआ है, और जब तक दूसरे फसलों का दाम ठीक ना हो, रिटर्न्स ठीक से ना मिले किसानों को, और दूसरी बात है कि अगर फसल का दाम आपने तय कर भी दिया और आपने खरीदा नहीं और खरीद के कुछ आगे डिस्पोज ऑफ करने का मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किया
1: तो भी बिल्कुल वो संकट। अब तक हक साहब अभी हम और इस पे चर्चा करेंगे।
2: 65 से जब से ये हुआ है हम शुरुआत किया है इसको, तो उसके बाद से ही एक और इसमें दिक्कत एक आई है किसानों के लिए, चूंकि जानना जरूरी है, बाद में फिर कहीं मैं ही भूल जाऊं
1: इसको बिल्कुल बताएं,
2: जानना जरूरी है। एक सारे देश से आंकड़े इकट्ठे करके एक औसत रूप में जो लागत होता है उसको दिया लिया जाता है। मान लीजिए कि किसी स्टेट में 700 रुपये पर क्विंटल पैडी का दाम है, खर्चा आता है, किसी स्टेट में 900 आता है, किसी में 1200, किसी में 1300, किसी में 1400 आता है। आपने उसके बेसिस पे अगर 900 फिक्स कर दिया तो जो
1: 1400 वाला है वो तो
2: मरेगा, मर गए। इसीलिए आज के दिन में ज्यादातर किसान इस देश में किसानी व्यवस्था को लाभकारी नहीं समझते हैं और परेशान हैं, और इसीलिए जब तक काफी परिवर्तन नहीं लिया जाएगा इस जो हम जिस
1: तरह प्रक्रिया,
2: प्रक्रिया में, और जब तक ठीक से आकलन नहीं होगा और मेथड्स को हम बदलेंगे नहीं, तब तक मेजोरिटी फार्मर्स को प्रॉब्लम रहेगा। तो असली बात यह है
1: प्रभाकर जी, अभी जो दो दिन पहले खरीफ के दाम आए हैं, आप किसानों के लेके अगर हम बात करें तो आप कैसा सोचते हैं, क्या उनके लिए अच्छे दाम आए हैं, उनको लाभ होगा इससे?
3: देखिए, किसान को अच्छे दाम तो तभी माने जाएंगे जब उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा
1: जी।
3: आज लागत इतनी अधिक बढ़ गई है जिसके आधार पर उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वो तो सरकार अभी उससे कोसों दूर है, और इसलिए 50 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये बढ़ा देना, ये एक सरकार को अपनी तुष्टिकरण का बात लगती होगी हमने किसानों के लिए कुछ किया, पर किसानों को लगना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया।
1: क्योंकि प्रभाकर जी ये बात भी आ रही थी कि लागत बहुत है, जैसे अभी हक साहब ने भी बोला कुछ क्षेत्र हैं जो भले ही वहां बारिश ना हो पर ट्यूबवेल वगैरह बिजली वगैरह से डीजल का पंप चला के वो अपना सिंचाई कर लेते हैं, उससे लागत जो है बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो औसत है अगर उस हिसाब से लेंगे तो किसान को बहुत नुकसान हो जाएगा।
3: उस हिसाब से भी नुकसान होगा, और आज भी कटु सत्य यह है कि जहां अभी बोला गया कि 86% छोटा किसान है
1: जी,
3: वो उसको सीएससीपी से कोई मतलब नहीं है, उसका खरीदारी कुछ नहीं हो पाती है। आज हमारे देश के अंदर मुश्किल से 7-8 राज्य ऐसे हैं जहां खरीदारी की कुछ थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था भी नहीं कह सकते उसको, और इसलिए जब तक खरीदारी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, सीएससीपी घोषित करना अपने लिए समाधान मानना है कि हमने किसानों के लिए कुछ किया, किसान तक वो बात पहुंचती नहीं है
1: जी।
3: पंचायत स्तर तक जब तक खरीदी अच्छी नहीं होगी तब तक वो एमएसपी का पूरा लाभ भी किसान को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित करें, साथ में खरीदारी की भी चाक चौबंद
1: किसानों को उस दायरे में तो लाएं, किसान उसमें हो तो सही। ये बात जो प्रभाकर जी ने किया, और रामलाल जी मैं आपसे, क्योंकि आप तो इस विषय पे बहुत लिखते रहे कैसे लाभकारी मूल्य दिलवाया जाए, आपको क्या लगता है कि एमएसपी से किसान का भला होता है कुछ?
4: प्रोफेसर हक साहब
1: जी,
4: जिन मापदंडों की चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले अन्यायकारी वो मापदंड है
1: जी,
4: जिनके कारण से किसान को एमएसपी मिल ही, एमएसपी से लाभ मिल ही नहीं सकता। मैं ये कहता हूं, दुनिया का हर उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य तय करता है लागत पर लाभांश जोड़कर, यही फार्मूला है।
1: बिल्कुल सही।
4: और किसानों के लिए जो फार्मूला दिया उपभोक्ता पर क्या फर्क पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर क्या
1: फर्क पड़ेगा? उपभोक्ता खुद किसान है,
4: उपभोक्ता है ही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मूल्य में क्या फर्क पड़ेगा, महंगा भी क्या फर्क पड़ेगा, कच्चे जो कच्चा माल मिलता है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, सभी ठेकेदारी हमारी है क्या? और यदि ये फार्मूला लागू करना है तो हम तैयार हैं, यही फार्मूला औद्योगिक जगत के लिए लागू कर दो। ये नहीं हो सकता, औद्योगिक जगत को तो कॉस्ट और प्रॉफिट के आधार पर आप फार्मूला देंगे, और हमारे लिए 10 तरह के बाध्यकारी मापदंड अपनाएंगे। ये जो अन्यायकारी मापदंड है सबसे पहले बदलने की जरूरत है इन अन्यायकारी मापदंड को। इसलिए मापदंड होना चाहिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जितनी लागत आई उस पर लाभांश जोड़ो और कीमत तय करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हो ही नहीं सकता। ये अब तक छलावा सिद्ध हुआ है, आगे भी ये छलावा सिद्ध होगा, और हर सरकार किसी भी पार्टी का ही हो वो किसानों के लिए उनका उपजों का लाभकारी मूल्य मिले इसके प्रति गंभीर ही नहीं है।
5: सही,
4: इसलिए मैं कॉट करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने 2003 में लाल किले से घोषणा की थी हम किसानों के लिए ऐसा आयोग बनाएंगे जैसा चुनाव आयोग है, उसके लिए संविधान में संशोधन करेंगे, वो ही पूरा नहीं कर सके। तो यहां तो घोषणा तो हो जाती है, उनका जो क्रियान्वित आते आते तो वो जो किसान आयोग निकला वो तो कुछ नहीं था। तो जिस किसान आयोग ने कल्पना की थी वो किसान आयोग नहीं बन पाया, और अभी जो भी MSP तय हुए इस वर्ष भी
5: जी,
4: और जिसका प्रचार किया जा रहा है धान पर 50 रुपए की बढ़ोतरी, अरे भाई किसमें तुमने बढ़ोतरी की हमको तो समझाओ। देश में एक वर्ष में महंगाई बढ़ी है 17%। इसका आधार पर 2014 में कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया गया।
5: बिल्कुल सही,
4: हम भी तो भाई इसी देश के नागरिक हैं, हमें क्यों छोड़ते हो, हमें भी 17% लाभांश दो ना। अभी सारी MSP की सूची देख लो, अभी जो घोषित की है कृषि में भी बढ़ोतरी 9% ज्यादा नहीं है, केवल जो दलहन है उस पर 9% 9.5%, और ये जिसका अभी प्रचार किया जा रहा है 200 रुपए बोनस दे दिया, अरे 500 तो 9010 में दिया था, नई बात क्या किया आपने। और ये तो 1965 जब से न्यूनतम मूल्य समर्थन हुए तब से दिया जाता रहा अलग अलग फसलों अलग अलग। तो आप दलहन की बात करते हो, प्रतिवर्ष आया जो दलहन का और तिलहन का दोनों मिलकर 73,834 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, विदेश में भेज देते हैं, और हमारा देश का किसान है जिसको मूंग लागत से कम बेचना पड़े, उड़द लागत से कम बेचना पड़े, अरहर लागत से कम बेचनी पड़े,
5: पर उपभोक्ता के लिए तो दाम बहुत ज्यादा है।
4: हाँ निश्चित, हम ये कहना चाहेंगे हमसे दाल खरीद मूंग खरीदा जाता है 40 रुपए किलो, पिछले वर्ष जो लागत उसका MSP था 40 रुपए किलो हमसे खरीदा गया, और उपभोक्ता को मिली 120 रुपए किलो दाल। अरे भाई मूंग को दाल बनाने में करने क्या पड़ता है, एक मूंग के दो टुकड़े करो वो दाल हो गई, कितनी लागत आएगी, 1 किलो पे 1 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, तो आप 40 का 50 वसूल कर लो। तो जहां उपभोक्ता लुट रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसका हम ध्यान हटाने के लिए सारा दोषारोपण कर देते किसानों पर, और कहते हैं किसानों का MSP बढ़ गया इस कारण से गरीब उपभोक्ता मारे जा रहे हैं। अरे गरीब उपभोक्ता को तो वो बिचौलिया मार रहे हैं जो 40 रुपए में मूंग खरीद कर 5 रुपए भी खर्च नहीं करते और
5: 120 रुपए
4: 80 रुपए का फायदा लेते हैं। अभी हमारे टिंडा की कहानी बताऊं आपको
5: जी,
4: टिंडा जिसने उत्पादन किया उसको मिला 4 रुपए, जो उपभोक्ता खरीद रहा है 20 रुपए से 40 रुपए तक, यानी जिसने टिंडा पैदा किया खेत उसका, पैसा उसका, जमीन उसकी, मेहनत उसकी, दिमाग उसका और पूरा वर्ष उसका, उसको तो मिले 4 रुपए लागत भी नहीं, और जिसने टिंडा इधर खरीदा इधर रखा 1 किलो में 16 रुपए का लाभ।
5: टिंडा वगैरह तो लेकिन उसका तो MSP तय भी नहीं होता ना।
4: तो मांग कर रहे ना कि हर फसल का 109 फसलें हिंदुस्तान में, 109 फसलों का तय हो MSP
5: जी।
4: तो जब तक सब, और ये जो बात करते हैं कि भाई ये आपस में कोई फसल गेहूं का चावल बढ़ गई, अरे बढ़ तो इसलिए गई तुम इनका सबका MSP घोषित करो ना। आप 109 फसलों का घोषित करो तो अपना आप फसलों में अपना संतुलन हो जाएगा, अपना आप साम्यता हो जाएगी, आप वो तो करना नहीं चाहते। और फिर एक जो पक्ष और है अनुराग जी,
5: रामपाल जी इस पे आएंगे क्योंकि पक्ष बहुत हैं और अभी सारे उठाने हैं, आपने कई मुद्दे बताए। ये जो चर्चा हमारी रामपाल जी से हो रही थी, आपने सुना कि वो तो MSP पे ही पूरा सवाल उठाते हैं, जो क्राइटेरिया हमें डॉक्टर हक साहब ने भी बताया उस पर और चर्चा करेंगे। थोड़ा और समझना पड़ेगा कि ये फसल का जो हम मूल्य तय करते हैं इसके क्यों तय करते हैं, पहली बात तो क्यों उसको हम बाजार की ताकतों पे नहीं छोड़ सकते, उसका नुकसान किसान को होगा या फायदा होगा इसको भी समझेंगे कि इससे किसानों को क्या लाभ।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: हुआ बात इसमें जो निकल के भी आ रही है कि बहुत कम किसान हैं जो MSP का लाभ ले भी पाते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो इसमें बहुत सी चर्चाएं हैं। अभी जैसे ये भी पता लगा रहा है कि बहुत सी फसलें तो MSP में आती नहीं हैं, उनके दाम किसान को कम मिलते हैं, उपभोक्ता को ज्यादा मिलते हैं, जो आती भी हैं वो भी किसानों से कम दाम पे ली जाती है, उपभोक्ता को उसके कई गुना ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। ये पूरा एक गड़बड़ी सी है जो पूरी प्रणाली में बनी हुई है। इस पे चर्चा जो है हम अपनी जारी रख रहे हैं और कई और मुद्दे हैं जो आते जाएंगे इसमें। तेवतिया जी, जैसे रामपाल जी ने बताया कि एमएसपी तो किसानों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, उनको उसका कुछ भी लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है, आप क्या सोचते हैं इसमें?
7: रामपाल जी ने बहुत अच्छा विषय रखा, ध्यान आकर्षित किया है। एमएसपी एक भ्रामक शब्द लगता है मुझे। कोई भी व्यापार करता है, दुकान करता है।

0: है वो लाभ के लिए करता है।
1: बिल्कुल सही।
0: अगर उसको किसी काम में लाभ ही नहीं है वो क्यों करेगा?
1: बिल्कुल सही है। बहुत से किसान इसलिए, अब तो नया आंकड़ा बता रहा है कि 40 से भी ऊपर फीसदी लोग हैं जो खेती से अलग होना चाहते हैं।
0: किसान के पीछे भी एक परिवार है, खेती करना ही काम नहीं है। आपने लागत मूल्य लगा दिया, उसको उसका प्राइस दे दिया, बाकी परिवार को कहां भेजे वो? उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, परिवार को पढ़ाना है, मकान बनाना है, शादी करनी है, उसी खेती में से। तो अगर लाभ नहीं है तो खेती का मतलब क्या रह गया? इसलिए किसान पीछे, इसलिए किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता।
1: बिल्कुल सही।
0: इसलिए पूरे देश का कोई भी आदमी अपना काम छोड़कर खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि लाभ का काम है ही नहीं। खेती 50 रुपए बढ़ाए हैं, वो तर्क क्या है? 55 क्यों नहीं बढ़ाए, 45 क्यों नहीं बढ़ाए? 50 रुपए जो बढ़ाए हैं उसके पीछे तर्क क्या बढ़ाने का? कौन सा गणित है?
1: किसान की लागत जो है तेवतिया जी, क्या इस 1410 रुपए, 1450 रुपए जो भी मिलेगा दाम, उसमें पूरी हो जाती है?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, आसपास भी नहीं है।
1: और अभी का जो समय है जिसमें हम, एक आशंका है कि बारिश भी हो सकता है, कम हो तो लागत और बढ़ सकती है किसान की, ऐसे में क्या इतना मूल्य जो है वो?
0: अगर कुछ भी नहीं होता है, फसल को कीड़ा भी नहीं लगता है, तब भी नहीं है। अगर वो लग गया तो फिर तो बात ही अलग है, और कई गुना उसकी लागत बढ़ गई है खेती की। कम, और खेती तो सरकार भी कराती है, उसके बड़े बड़े फॉर्म है
1: जी,
0: उनको खुद बताएगा कितना उसमें लाभ होता है, कितना पैदा होता है, उसको वो क्यों सब्सिडी देती है? जितने सरकारी फार्म है, सरकार उनको बहुत ज्यादा सब्सिडी देने के बाद में उनको जिंदा रखे हुए, वरना उनके फार्म बंद हो जाएंगे। सरकार को देखना पड़ेगा कि जो इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य,
1: ठीक है, उसका मतलब तेवतिया जी यही है कि कम से कम इतना मिलेगा, इससे ऊपर जो,
0: लेकिन मैं कहता हूं ये अधिकतम मूल्य है, किसान को इससे ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मैं कहता हूं ये अधिकतम समर्थन मूल्य है, इससे ज्यादा किसान को मिलेगा। कायदे में यह होता है कि इससे नीचे किसान की फसल नहीं बिकेगी, अगर उसके नीचे मूल्य जाता है तो सरकार उसको खरीद लेगी, लेकिन मैं कहता हूं इससे ज्यादा कहां आज तक बिका है
1: जी?
0: इससे ज्यादा किसान को समर्थन मूल्य मिला ही नहीं, ये अधिकतम समर्थन मूल्य है, अधिक न्यूनतम नहीं है। ये बड़ा भ्रम का शब्द है, इसको समझना पड़ेगा।
1: तेवतिया जी हमारे एक कॉलर हैं उड़ीसा से, वो कुछ बताना चाह रहे हैं जी। हेलो, हेलो,
2: हाँ जी
1: जी, आप कुछ हमसे बातचीत करना चाह रहे थे एमएसपी पे, बताइए आपका शुभ नाम क्या है?
2: ऋषिकेश जैना है।
1: हाँ जैना जी, आपको क्या लगता है एमएसपी कितना बढ़िया रहा?
2: बहुत बढ़िया रहा, ये किसान को लिए अच्छा दिन आ गया, जो हमारे भी उड़ीसा प्रदेश में वो सारे भारत में जो किसान के लिए जो रेट बढ़ा है, असिस्टेंस बढ़ा है, इसलिए वो किसान को लिए अच्छा दिन आ गया
1: जी। अच्छा जैना जी, आपको धान की प्रमुखता से, आप खेती जो है मुख्यतः तो धान की करते होंगे, चावल की खेती करते होंगे?
2: हमारे यहाँ पर ज्यादा चावल की खेती होते
1: जी, तो चावल का जो एमएसपी में जो इजाफा हुआ है उससे किसान जो है वहाँ खुश हैं?
2: बहुत खुश है, बहुत खुश है, 50 रुपया बढ़ा है
1: जी
2: चावल के लिए, इसलिए किसानों को बहुत खुश भी है।
1: जना जी, जो लागत है वो आराम से लागत निकल के और लाभ भी हो जाता है इस दाम में?
2: लाभ तो इतना नहीं है, लेकिन जो पहले नहीं था वो जो असिस्टेंट मिला है ज्यादा 50 रुपया है मिला है, इसलिए तो थोड़ी सी किसान को लाभ है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद जना जी हमसे बात करने के लिए। संतोष जी, जो जना जी से भी बात हुई, ये तो एक खुशी की बात है कि चलिए कुछ बढ़ के मिला, लाभ कितना होता है कितना नहीं वो एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि एमएसपी से कितना फायदा किसानों को होता
3: है? अनुराग जी, इससे कितना लाभ होगा या हो रहा है ये विषय नहीं है, विषय ये है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया
1: जी।
3: आज 50 रुपए मिले हैं, कल हो सकता 100 हो जाए, 150 हो जाए, और मैं हक जी की बात से भी सहमत हूँ। और चूंकि किसानों के बीच में मैं काम करता था और मैं भी किसानों के बीच में जाता था कि भैया किसी भी तरह से अपना समर सेबिल लगा के आप धान की खेती मत करिए। तो आपने जो कहा कि हो सकता है कि सरकार की मंशा ये भी हो कि थोड़ा सा धान कहीं ना कहीं हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है और तमाम तरह के ये हमें लगता है हर जनपद में दो चार ब्लॉक ऐसे होंगे जहां पे ड्राई जोन घोषित कर दिया गया,
1: डार्क जोन पे चला गया, पानी बहुत नीचे चला गया।
3: तो शायद कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा जरूर रही होगी कि धान पे एमएसपी ज्यादा ना बढ़ाया जाए, शायद मुझे ऐसा लगता है।
1: संतोष जी ने भी कहा ये थोड़ा समझ आता है कि गेहूं धान के चक्र से किसान को निकलना होगा, विविधीकरण अपनाने की बहुत समय से बात चल रही है कि डाइवर्सिफाई करें, और उसमें दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मिट्टी को भी जो है वो उर्वर बनाती हैं, और उसके अलावा छोटा ही किसान आमतौर पर सीमांत किसान ही थोड़ा बहुत दालें लगा लेता था, बड़े किसान भी अब उस ओर आकर्षित होंगे। उस हिसाब से जो 200 रुपए का बोनस दिया गया है वो एक लाभकारी चीज नहीं है किसानों को दलहन की ओर मोड़ने के लिए?
0: मैं इसमें दो बातें आती है, एक तो कॉस्ट के हिसाब से देखना, लागत के हिसाब से, दूसरा कि डाइवर्सिफिकेशन का जो नीड है वो उस हिसाब से, और तीसरी बात है कि जैसे इन्होंने कहा हमारे रामपाल जी ने कि अभी जैसे अपने एमएसपी फिक्स किया 4,850 रुपये मूंग का, और मार्केट में आज के दिन में अगर प्राइस देखे मूंग की दाल का तो 12,000-13,000 करके है क्विंटल, है ना। ये जो गैप है तो वो गैप क्यों है
1: जी?
0: इस गैप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? किसान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना
1: जी।
0: तो किसान को अगर आप कंज्यूमर से को कहते हैं कि खरीदे 12,000-13,000 रुपये क्विंटल में, तो 10,000 रुपया क्यों नहीं दे देते किसानों को? वो फिर जाएंगे पल दालों की ओर। दूसरी बात एक और है इसमें कि पंजाब और हरियाणा में खास करके मैं जहां तक जानता हूं, पंजाब में तो मैं काफी फार्मर से इंटरेक्ट भी करते रहा, उनके डिमांड था कि और एक्सपर्ट कमेटी के उनकी रिकमेंडेशन भी है कि एक तो दाल अब दूसरा मेज मक्का पंजाब में काफी अच्छी तरह से हो सकता है और अगर मक्के के दाम अच्छा किया जाता, इसमें भी मक्का को उतना एनकरेजमेंट नहीं दिया। पहले जैसे ज्वार बाजरा मक्का ये तीनों का एक करीब करीब प्राइस होता था, और मक्का को अगर अब थोड़ा सा और एनकरेज करोगे तो उसका मक्का का डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है, हर चीज के लिए चाहिए उसको,
1: सिरप वगैरह बनता है, शुगर सिरप बनता है, सब कुछ
0: बहुत कुछ बनता है, मतलब ऐसा कुछ
1: पोल्ट्री
0: फीड में तो डिमांड है ही। तो मक्का को एनकरेज किया जा सकता था और उसके लिए थोड़ा सा 15 रुपया बढ़ोतरी नहीं करके कम से कम 50 करते, तो ज्वार में अगर 40 किया तो उसमें 50 करना चाहिए था, तो उस तरह से एक बैलेंस थोड़ा सिग्नल।
1: एक चीज जो रामपाल जी ने भी सवाल उठाया कि जब हम किसानों के लिए तय करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया, आपने बोला एक क्राइटेरिया उसमें यह भी है कि गोदामों में कितना पहले से पड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यानी किसान अगर अधिक उपज कर देता है तो उसको दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। उसको जो किस्में दी जा रही हैं कि ये उन्नत किस्में हैं, ये आपको ज्यादा उत्पादन देंगी, वो लगा के अगर ज्यादा उत्पादन कर ले तो मरता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम जानते हैं कि बहुत से विकसित देश हैं जो सीधी सब्सिडी देते हैं, उनका गेहूं भारतीय किसान जितना गेहूं पैदा करता है जितनी कम कीमत पे, वो नहीं हो सकता पर उनका सस्ता है, उसके बावजूद हम उस बाजार को भी ध्यान में रख रहे हैं, क्या ये क्राइटेरिया गलत नहीं
0: है? ये बिल्कुल गलत है, वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो शुरू से इस बातों का खिलाफ रहा और मैं ये कहूंगा कि दुनिया में कहीं भी
4: नहीं, लेकिन हमारा इसमें ही कहना है कि ये क्यों आप सोच रहे, जो पैदा कर रहा है उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल
4: वही को मिल नहीं रहा, वो मर रहा है,
0: मर रहा है,
4: और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार आजू बाजू चारों तरफ घूम रहे हैं, कौन सा नीति?
0: ज्यादा पैदा हो रहा तो निर्यात क्यों नहीं करते? अच्छा एक तो है, दूसरी दो बातें इसमें, एक तो है जैसे आपने निर्यात की बात,
1: मेरे को लेना है ब्रेक के बाद आके इसी चर्चा को,
0: अच्छा,
1: आप ये विचार को थोड़ी देर रोक लीजिए, आप इसे शुरू करेंगे।
0: ठीक,
1: देखिए एमएसपी पे चर्चा हो रही है और बहुत से मुद्दे हैं और थोड़ा हमें भी समझना होगा कि कैसे एमएसपी दिया जा रहा है किसानों को। जैसे कई किसानों के फोन भी आए, किसान खुश भी है, कुछ ना मिलने से कुछ मिल रहा है उसी पे हो सकता है उसे संतुष्टि हो, लेकिन उसमें बहुत से मुद्दे हैं, उनको समझते हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: पे और इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है, इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा और समझते हैं इस मुद्दे को और देखते हैं ये लघु फिल्म।
2: कृषि उपज के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना आवश्यक है। इससे अत्यधिक उपज होने पर दामों को नीचे गिरने से रोकने में मदद मिलती है और साथ ही बिचौलियों के चंगुल में भी किसान फंसने से बच जाता है और भुगतान तो सुनिश्चित रहता ही है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि NSSO का एक सर्वेक्षण कहता है कि देश के करीब 40% किसान खेती छोड़ने को तैयार है। क्यों मंडियों तक किसानों की पहुंच कम है? क्यों करीब 30-35% ही सरकारी खरीद होती है और बाकी निजी कारोबारियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है? अगर हमारी विपणन नीतियों में कुछ खामी के कारण हमारे भंडार खाद्यान्न से भरे रह जाते हैं तो इसमें किसानों का क्या दोष? क्या इस बात का बहाना लेकर हम बढ़ती महंगाई के बीच MSP में इजाफे को नकार सकते हैं? जो फसलें MSP के दायरे से बाहर हैं, जैसे अंडे, दूध, सब्जियां, फल आदि, उनके दाम MSP के दायरे में आने वाली फसलों की तुलना में कई गुना बढ़े हैं, तो फिर महंगाई का दोष MSP के सिर क्यों? जिन राज्यों में फसल खरीद में निजी कारोबारी अधिक हैं, वहां के किसानों को सरकार द्वारा तय MSP से काफी नीचे दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है। MSP ने किसानों को अच्छे दाम दिलवाने में सार्थक भूमिका निभाई है, लेकिन इसका लाभ आज भी करीब 70% किसानों को नहीं मिल रहा है। MSP की अवधारणा में शायद कोई कमी न हो, लेकिन इसे तय करने के साथ खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाना भी आवश्यक है। इस सब के बीच एक राय ये भी बन रही है कि MSP के कारण किसान उन्हीं फसलों को उगा रहे हैं जिनके दाम अच्छे और सुनिश्चित हैं, जिससे विविधीकरण न होने से कीटों का प्रकोप, अधिक संसाधनों की आवश्यकता, मिट्टी की घटती उर्वरता जैसी कई परेशानियां सामने आ रही हैं और साथ ही किसानों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम हो रही है। अब इन तर्कों के बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई खेती को बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ा जाना चाहिए या संसाधन विहीन किसान की मदद के लिए MSP का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है? खेती को अगर लाभकारी बनाना है तो MSP अहम है। जरूरत अधिक सरकारी खरीद केंद्र खोलने की है और वो भी ग्राम या पंचायत स्तर पर, क्योंकि मंडी तक जाकर MSP का लाभ लेने की क्षमता हर किसान में नहीं है और परिवहन लागत को बचाने के लिए भी अधिकतर किसान अपने खेत में ही कृषि उपज किसी कारोबारी या निजी कंपनी को बेचने के लिए विवश है और कई मामलों में अगली फसल की तैयारी में देरी के कारण भी किसान औने पौने दामों पर फसल बेच देता है और गरीबी व कर्ज के चंगुल में फंसता चला जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के करीब 14 करोड़ किसानों की आवश्यकता है और सभी को इसका लाभ पहुंचे ये सुनिश्चित करना होगा, किसानों के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, देश के लिए।
1: ये जो MSP पे बात हो रही है, देखिए आपने देखा कि कितने मुद्दे से जुड़े हैं। बात एक ये भी है कि जब 80% किसान इस दायरे से ही बाहर हैं तो MSP जो घोषित किया जाता है उसका लाभ कैसे मिलेगा। देखिए बहुत से आज भी देश में ऐसे किसान हैं जो MSP से काफी नीचे दामों पे अपनी उपज को बेचते हैं और ये हम जानते हैं गलत है, गैरकानूनी भी है कई जगह, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। उसके कई कारण हैं। देश में 86% किसान जो हैं छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके पास ये क्षमता ही नहीं है कि वो अपनी छोटी जो उनकी उपज है उसको ले जाके कहीं मंडी में बेचें। उसमें तो खर्चा परिवहन का ही बहुत हो जाएगा, आने जाने का ही बहुत हो जाएगा, तो वो भी अपने पास के किसी को दे देते हैं, वही आगे जाके बेच के आए। बहुत सी बातें हैं जो इससे जुड़ी हैं। हमारे साथ सुभाष निगम जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। निगम साहब आपको क्या लगता है कि ये जो MSP है ये कितना किसानों की मदद कर पाया?
3: किसानों की ज़्यादा मदद नहीं हो पाई है और इस वर्ष भी जैसे 12 जून तक 2.46 लाख टन जो है हेक्टेयर में दलहनी फसलों को लगाया गया है। सरकार ने ज़रूर ये जो 200 रुपये का बोनस दिया है तो उनको उम्मीद है कि ये तीनों प्रमुख जो दलहन फसलें हैं ये उड़द मूंग अरहर का इसकी तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, किसान इसकी खेती बढ़ाएंगे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भी यह है कि जो इन तीनों दलहनी फसलों की जो नई किस्में जो ज़्यादा पैदावार देती हैं उसकी तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित होगा और शायद वो ज़्यादा पैदावार करके दलहन की बढ़ा लें। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है दालों का आयात करने पे का फैसला लिया है, ये खुद ही स्पष्ट कर देता है कि दलहन फसलें जो है हमारे यहाँ मांग से बहुत
1: नहीं बढ़ेगा।
3: हाँ, एकदम बढ़ेगा भी नहीं और मांग कहीं ज़्यादा है, उसके उसको देखते हुए जो है हमारे यहाँ उत्पादन जो है उतना नहीं हो पा रहा है और ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है।
1: ये MSP की जहाँ तक बात है निगम साहब, और अन्य फसलों की भी अगर बात करें तो उन फसलों में क्या MSP का लाभ किसान ले पाते हैं जब इतने लोग ही MSP से नहीं जुड़े हैं? किसान 80% तो बिल्कुल अलग है, हो सकता है और ज्यादा हो यह आंकड़ा, तो उसका फिर कैसे हम MSP से कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है ये आकलन कैसे करें?
3: जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हमारे यहाँ जो किसान है लघु और सीमांत किसान जो है उनका 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं
1: जी,
3: और उसमें भी जब परिवार बढ़ रहा है तो और टुकड़े होते चले जा रहे हैं
1: जी,
3: तो उसकी वजह से क्या है कि ना खेती और नई युवा पीढ़ी जो है वो खेती पे ज़्यादा उनका लगाव भी नहीं है, वो खुद ही खेत से पलायन कर रहे हैं, शहरों में आके नौकरियां कर रहे हैं अपने, तो उसकी वजह से है ना ये नहीं हो रहा। और फिर दूसरे किसान का भी जो बिचौलिए जो होते हैं जो उसके साथ लूट मार होती है मंडी में, उसके साथ जो धोखाधड़ी होती है ये सब, तो उससे बहुत परेशान होता है किसान, खुद ही बिजली पानी इससे परेशान है और वो जो है अपने जो ये कारपोरेट घराने वगैरह जैसे हैं
1: इसमें भी तो कई शिकायतें हैं, कई जगह हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखा जो पूरी तरह फेल हो गई है। वहाँ किसानों को वो पैसा नहीं मिला। और ये क्या कल को ऐसा तो नहीं कि आप एक सिस्टम से बाजार उनके हाथ में जाएगा उसके बाद मोनोपोली शुरू हो जाएगी, ये भी तो एक जो है हमेशा संदेह रहता है कॉर्पोरेट के साथ
3: बड़ा जो है ना,
1: तो उसमें एक मुद्दा यही है कि MSP से कैसे
4: नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट घराना कभी भी खेती में आएगा कोई लाभ नहीं होने वाला।
3: बिल्कुल
4: जी, आखिर हमने समर्थन मूल्य इसलिए घोषित करना शुरू किया कि व्यापारी उनकी लूट मार करते थे
1: जी।
4: हमने APMC कृषि उपज मंडियां इसलिए शुरू की कि वहां पर एक सामने सबके सामने सब कुछ स्पष्टता से हो, और आज फिर से कारपोरेट घराने यदि घर पर जाकर खरीदारी कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बीच में लेकुना फिर से आ रहा।
5: उसका एक समाधान हो रहा है।
4: एक बात और केवल मैं कहना चाहता हूँ, जो MSP घोषित करता है उसने खरीदारी की भी गारंटी लेनी चाहिए,
1: ये सबसे
4: इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
5: जब सारी वस्तुओं पर
1: आप हक साहब इसमें क्या सोचते हैं, क्योंकि किसान अपनी चीज बेचे तो उसको वो केंद्र भी तो खुले होने चाहिए ना, कपास का
5: बिल्कुल सभी चीजों का अगर लोकल लेवल पे केंद्र नहीं होगा खरीदने की और व्यवस्था नहीं होगी उसको ट्रांसपोर्ट स्टोरेज का तो दिक्कतें आएगी, तो पहला तो वो जरूरी है और मेरे ख्याल से करना चाहिए, सरकार ने कहा भी है कि हम करेंगे और करना चाहिए।
4: जो कम दाम पर खरीदता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
5: अच्छा, दूसरी बात है जैसे मार्केट का बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने भी कहा कि मार्केट के ऊपर अपने छोड़ा तो मार्केट एक्सप्लॉइट करते थे, इसीलिए ही एक्चुअली सारा सिस्टम डेवलप किया गया था। लेकिन अगर इस सिस्टम को आप परफेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो आएंगे, वो भी आएंगे और उसको रोकने के लिए रोकना भी जरूरी है, क्योंकि पहले तो आज के दिन में सभी लोग कहते हैं भाई मार्केट पे छोड़ दो मार्केट टेक्स केयर, तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत ही क्या है?
6: नहीं भट्ट साहब, इसमें मेरा एक
5: क्वेश्चन ये है कि मार्केट हम चाहते हैं, सॉरी कि मार्केट नहीं चाहते, लेकिन मार्केट में इस तरह का लोग जब एक्सप्लॉइट करें, अभी देखिए अभी क्या हुआ, दलहन के दाम आप मूंग का दाल जो है आप 40 रुपये किसान को देते हैं, आप बाजार में आज का दाम 1300
6: नहीं
5: 13000
6: इसका हिसाब है अनुराग जी, उसका सबसे ये है कि जैसे आपने हम कहे कारपोरेट को आप खरीदारी से बाहर कर दो, क्यों कर दे?
1: एक विकल्प किसान के पास होना चाहिए।
6: नहीं, सारी दुनिया खरीदे, कारपोरेट हो चाहे सामान्य हो, सबको खरीदारी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन MRP लिख दो। आप जब सारी चीजों पर आप अधिकतम मूल्य
1: विषय से इधर जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है MSP जो है
6: MSP
1: अगर हम इस पे रहे उसका फायदा किसान को कैसे मिले?
6: MRP लिख करके
7: बताता हूँ,
6: MRP लिख करके
7: MRP एक मिनट
6: आप MRP घोषित कर दो ना।
7: 200 रुपए की चर्चा की गई बोनस की, 500 रुपए बोनस 9-10 में दिया गया था दलहनों पर, और उसी साल मूंग 3670 था MSP, बाजार में बिका 1800, और हमने अच्छा। लगातार किया आंदोलन, हम 2010 से अब तक आंदोलन कर रहे हैं, सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। तो एमएसपी घोषित कर भी देंगे तो किस काम की है जब तक खरीद नहीं हो, जबकि ये सीएसीपी ये कहते हैं ये गारंटेड मूल्य है, ये भारत सरकार की गारंटी है। यदि सरकार से सरकार नहीं खरीदेगी, किसानों को कम दाम में बेचना पड़ा, तो सरकार उसकी अंतरराशि देकर भरपाई करेगी। हमने क्लेम किया पिछले वर्ष ही, 3 फसलें नहीं खरीदने से राजस्थान में अकेले में 11,75,00,000,000 रुपए का घाटा हुआ किसान को। हम मांग कर रहे हैं सरकार से इसको दे, पिछले 5 सालों में 80,00,000,000 रुपए का घाटा हुआ अकेले राजस्थान के किसान को 7 फसल नहीं खरीदने से। किस एमएसपी की बात कर रहे हैं हम? ये और ये जो कह रहे हैं हम 200 रुपए हमने दे दिए, जो सरकार प्रचार कर रही है 200 रुपए दे दिए इसलिए दलहन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो तब तो खरीदोगे।
5: हाँ बिल्कुल,
1: खरीदना भी जरूरी है। संतोष जी आपके क्षेत्र में आप क्या सोचते हैं? किसान जो है उसके साथ समस्या ये है कि एमएसपी की घोषणा तो हो गई, उसने उपज भी ले ली, बेचने के लिए जो केंद्र है वहां पर भी तो बहुत गड़बड़ियां हैं।
4: ये
1: पूरा एक साथ मिलके ही होगा।
4: शुरुआती दौर पे ये कह चुके कि एमएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है खरीदारी, और चूंकि जहां से हम आते हैं वहां तो हम 2-3 वर्षों 4 वर्षों से देख रहे हैं, बल्कि पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं कि जिन्हें शुद्ध रूप से आप कह दे बिचौलिए
5: जी वही खरीदते होंगे।
4: आप आज सूचना के अधिकार में किसी भी तरह से जानकारी कीजिए कि वहां पे कितनी खरीद हुई है, खरीदारी पूरी दिखा रहे हैं और किसान से एक बिदाना नहीं खरीदा गया। तो एमएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण कि हमारा गेहूं वहां खरीदा जाए, हमारा धान खरीदा जाए, हमारी फसल खरीदी जाए।
8: हमारे यहाँ कहावत है बोले सो कुंडी खोले, आपने बोला है आपको खरीदना चाहिए
5: जी। मैं एक ये
4: व्यवस्था नहीं, ये चीज कह चुके ना कि इसके लिए प्रदेश सरकारों को कहीं ना कहीं आगे आना होगा।
7: ऐसा ऐसा प्रदेश सरकार नहीं, इसमें जो एमएसपी घोषित करता है वो खरीद के
1: जिम्मेदार,
7: और जो प्रदेशों को दे रखी है वह विकेंद्रित खरीद योजना एक आपने लॉन्च की हुई है, उस विकेंद्रित खरीद योजना में कुछ इंसेंटिव देता है सेंटर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इट्स अ बाउंड ऑन ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एमएसपी घोषित करके वो खरीदेगा। इसलिए आज एक विषय बना दिया, पूरी एमएसपी ने ये विषय बना दिया, ये खरीदे वो खरीदे ये खरीदे, खरीद की जिम्मेदारी किसकी?
1: कई सारी एजेंसीज का
7: यही
5: सेकंड जरा, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जब से शुरू हुआ उसका एक पर्पस यही था कि मार्केट में उससे नीचे बिकना नहीं चाहिए, जब भी मार्केट में उससे नीचे जाएगा सरकार को खरीदना पड़ेगा। तो जब सरकार व्यवस्था करेगी उस तरह के खरीदने की तभी खरीदारी होगी। तो वो अभी तक एक्चुअली 2-3 फसलों को छोड़ के बाकी है ही नहीं व्यवस्था।
8: तो
5: उसके बाद हम ये नहीं कहते प्राइवेट वाले ना खरीदे, लेकिन प्राइवेट वाले खरीदे तो कम से कम न्यूनतम मूल्य जो है उससे कम में ना खरीदे, उससे ऊपर दे के खरीदे।
7: इसका तरीका है,
1: मेरा कहना है
4: अभी
1: मेरा छोटा सा एक ब्रेक ले रहा है,
7: वहां तो बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है
5: बिल्कुल,
7: और किसान बिचौलियों को दे रहा
1: है। तो जी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। देखिए अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और चर्चा जो है वो एमएसपी पे हो रही है। आप सब जानते हैं बहुत सी बातें हैं जो उसमें उभर के आ रही है, थोड़ा आगे ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एमएसपी का दायरा भी बढ़ाएं और किसान को उसका सही लाभ पहुंचे ये कैसे तय करें। देखिए ये बहुत अच्छी एक खबर रही लोगों के लिए कि एमएसपी में जो खरीफ के एमएसपी आए उसमें दाम बढ़े और 200 रुपए का जो दलहन के लिए बोनस दिया गया वो भी एक अच्छी पहल है, लेकिन बहुत से किसान अभी एमएसपी के दायरे से ही बाहर हैं। अगर एमएसपी का सही लाभ हमें देना है तो उन किसानों को भी उस दायरे में लाना होगा, और उससे भी बड़ी चीज खरीद केंद्र हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रामपाल जी कैसे आपको लगता है कि एमएसपी की अवधारणा से हमें कोई शिकायत नहीं है, किसान को लाभ हो यही एक कोशिश थी, कैसे वो लाभ पहुंचे इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए?
7: अनुराग जी सबसे पहला काम होना चाहिए देश की मंडियों में जो नीलामी बोली शुरू होती है वो शुरू हो न्यूनतम समर्थन मूल्य से। दूसरा खरीद केंद्र हो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति। तीसरा जो ई उपार्जन पद्धति मध्य प्रदेश ने शुरू की
1: जी
7: वो हो सब फसलों के लिए लागू हर स्टेट में। चौथी यदि सरकार खरीदने में अक्षम रहे, किसी भी प्रकार से खरीद नहीं पाए, तो जितना कम दाम एमएसपी से किसानों को मिला है वह अंतर राशि

0: देश का जो किसान है वो इस हालत में नहीं है कि वो सारे संकट को झेल पाए। पूरे देश की फसल एक साथ आती है और एक साथ ही वो बिकती है, बाजार उसका शोषण वहीं से शुरू हो जाता है क्योंकि फसल आ गई, उसको क्या करेगा? भंडारण की अगर व्यवस्था हो जाए, अब चूंकि भंडारण करेगा उसके पास में इतना, उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उतने जितने का उसने भंडारण किया है बैंक से बिना ब्याज के उसको पैसा मिल जाए, उसका धन जो उसका भंडारण हुआ है उसने रख दिया है, जब उसको उचित मूल्य लगा बेचेगा।
1: तो वो तो वेयर हाउस की स्कीम है,
0: वो नहीं है, किसी किसान को नहीं मिलती, वो व्यापारियों के लिए होगी बड़ी बड़ी जगह, और कहां कि सरकार के पास भी कहां सारा खेत खुले में रखा है सारा अनाज भी।
2: दो साल
0: छोटे छोटे वेयर हाउस बने
2: एक्ट है जिसमें कोई भी अपनी फसल को
0: नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, छोटे छोटे बने
2: पूरे हिंदुस्तान,
0: बड़े बड़े नहीं है
2: उसका, इसको एग्जीक्यूशन नहीं
0: और है, और बैंक उसको पैसा दे, बैंक उसको उसका सारा पैसा दे दे तो वो अपना काम चला लेगा और समय पर उसको बेच देगा, उसका शोषण नहीं होने का है, मजबूरी क्या है? मंडी में ले जाना है उसको, मंडी में ले जाने के बाद जो भी रेट होगा उसको बेचना पड़ेगा, मंडी में शोषण होता है, मुझे पता है कि किसान से बात करते हैं कि उसको मंडी शुल्क नहीं देना पड़ता लेकिन किसानों से लिया जाता है
1: जी,
0: हमारे कहने के बावजूद भी वो देते हैं 2% पैसा काट कर उसको पैसा देते हैं व्यापारी, यदि आज पैसा चाहिए तो आपको 2% काट कर भी दे देंगे हम, उसको सारी जानकारी
1: वो हर तरीके का, सच कहें तो किसान को हर तरीके की परेशानी जो है वो सच कहें तो बुआई से लेके और बेचने तक हर स्तर पे आ रही।
0: दूसरा उनको जैसे हमने कच्चा दाल है बेच दी, उसको प्रोसेसिंग की क्रिया और उसको छोटे छोटे कल कारखाने दाल भी वो बनाना शुरू कर दे, अगर किसान अपने माल का
1: प्रसंस्करण जो है उससे भी किसान को जोड़ा जाए उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी।
0: हल्दी बुआ दी हमारे यहाँ, हल्दी लेने वाला कोई नहीं है, उसको उचित मंडी नहीं मिली तो बिचौली आकर के उसको सस्ती में बेचना पड़ा, इसको मैं ले कहां जाऊंगा।
1: संतोष जी आपको क्या लगता है कि किस तरीके के प्रयास होने चाहिए कि एमएसपी का लाभ वाकई में किसानों को मिल पाए?
3: पी के लाभ के लिए सबसे पहले भाई साहब जी जो कह रहे हैं नए पंचायत स्तर पे, ये सच है कि नए पंचायत स्तर पे खरीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए और भंडारण की व्यवस्था भी हो सके तो वहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि हम खरीदते हैं भंडारण करते हैं और फिर उसी को वितरण प्रणाली में भेजते हैं।
1: और एमएसपी का क्राइटेरिया भी बढ़ाना चाहिए,
3: एमएसपी का क्राइटेरिया इसलिए बढ़ाना चाहिए कि जो हमारा भंडारण का खर्चा है, जो किसान चाहें वो जैसे मई जून में नहीं बेच रहे हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब भी बेचें, तो जो भंडारण का खर्चा है गवर्नमेंट सरकार वो भंडारण का खर्चा उन किसानों को प्लस करके दे। और जो आप कह रहे हैं कि बैंक से उनके लिए ऋण की व्यवस्था कराई जाए, ये सत्य है, उनको पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा तो अपना बेचेंगे, और जो सरकार के भंडारण में नुकसान हो रहा है लाखों टन गेहूं गल्ला
1: है। निगम जी आपको क्या लगता है, जैसे हमने सुना क्या क्या तरीके हैं, आपको क्या लगता है कि एमएसपी में एक तो इस दायरे में और भी फसलें लानी चाहिए, सब चीजें जो है उसके दाम न्यूनतम तो सुनिश्चित होंगे, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कैसे इसका लाभ और किसानों को दिया जा सकता है और ज्यादा किसान इससे जुड़े,
4: इसका जैसे इसके लिए क्या करना? सभी हमारे साथियों का कहना था कि खरीदारी पे ज्यादा होना चाहिए, अब नेफेड है उसको खरीदारी का, लेकिन उसके पास आते ही नहीं, वो खरीदारी जितना लक्ष्य होता है वही पूरा नहीं कर पाते,
3: नहीं खरीदारी वो करते नहीं क्योंकि वो सब बिचौलिया किसान सीधे नहीं पहुंचते।
4: वो दूसरे पंजाब में उन्होंने कुछ जिलों में ऐसा किया है
3: बहुत बड़ी समस्या
4: कि किसानों ने अपने ही है ना बिक्री केंद्र बना दिया, खेत के पास ही बना दिए हैं और वो अपना सामान वहीं रखते हैं, वहीं बेच देते, वो सरकार को ही नहीं देते, वो अपने कहने लगे कि सरकार से ना तो पैसे मिलने, आज अगर हमसे खरीद लिया तो पैसा मिलेगा 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, उसमें भी कटौती हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि 2% इसमें, तो इस तरीके से ये जो
1: वो बाजार की एक बात हो गई निगम जी की, बाजार के तो कई विकल्प देने, एक डायरेक्ट सेलिंग की भी हम बात करते हैं किसान, और उसकी कोशिश भी हो रही है कि किसान को बेचने के लिए सीधे बाजार मिले, लेकिन मुख्य बात इसमें यही है एमएसपी के दायरे में सब आ पाए,
4: इसमें और भी फसलें आनी चाहिए, है खाली यही नहीं है कि आपने जो है गिनी चुनी जो 2-4
0: सब्जियां
4: हैं वो ही अपने कर दिया, अब प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाता है किसान, वो इतना परेशान हो जाता है, उसके सारी फसल चौपट हो जाती है, अब पता चला कि उसने फसल बोई भी कर्ज लेके वगैरह, अब आपने आगे एमएसपी भी घोषित कर दी, जब उसकी फसल ही नहीं है तो वो क्या बेचेगा और क्या करेगा,
1: और उसमें कृषि बीमा वगैरह ये सब बातें भी उसमें आ रही हैं।
4: हालांकि इन्होंने अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान में किसान जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, एसएमएस से भी प्राकृतिक उसकी मौसम की जानकारी देनी वगैरह शुरू किया, लेकिन ये कितने किसान, हमारा किसान ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब आपने तो कह दिया जी कंप्यूटर पे या फलाने उस पे आ जाएगी, वो उसको पता ही नहीं, वो तो अपने पुराने परंपरागत जो तरीके हैं उन्हीं को अपना रहा, उसी से खेती कर रहा है, उसी
1: उन सबसे जोड़ने के जो प्रयास है वो चले जाए।
4: तो ये सब
1: जी आपको क्या लगता है कि एमएसपी जो है कितना प्रासंगिक है, कितना सार्थक उसको और कैसे बनाएं और क्या तरीके होने चाहिए?
5: देखिए जो

0: आदरणीय रामपाल जी ने कहा है और बाकी सब लोगों ने कहा, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। और इसके अंदर मेरा जो आज बार बार चर्चा आ रही कि दलहनी फसलों की हमारे यहाँ कमी है
1: जी।
0: तो उसका जो दूसरा पक्ष है, हमारे यहाँ के यहाँ पर जो जलवायु है वो गेहूं और चावल के लिए बहुत अनुकूल है। दलहनों के लिए उसके प्रकार के जितने खोज होकर के उनको जितनी सुरक्षा चाहिए और कुल मिलाकर के किसानों को जितनी सुरक्षा चाहिए वो आज उपलब्ध नहीं है। किसान पग पग के ऊपर खतरे से खेलता रहता है और इसलिए उन सारों को भी इसके अंदर जोड़ करके उसका आकलन जब होगा और जब तक उसको खरीदने की गारंटी नहीं रहेगी। अभी ये कहा गया कि कुछ कुल 24 फसलों की यहाँ पर एमएसपी घोषित होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जबकि 109 फसलें ऐसे, अब मुझे समझ में नहीं आता कि हल्दी है, आलू है, प्याज है, ये तो नॉन पेरिशेबल है, कभी खराब बहुत देर में होते हैं, इनकी एमएसपी क्यों नहीं घोषित होती है।
2: और आलू किसान की तो हम व्यथा जानते हैं, कितनी बुरी
0: किसानों की तो हम जानते हैं क्या हालत होती है
2: जी।
0: तो इसलिए एमएसपी का दायरा कई अन्य फसलों तक जाना चाहिए, कम से कम जो मुख्य फसलें हैं, चाहे वो बाग बगीचे वाले हों, चाहे सब्जी के अंतर्गत आती सब्जी वर्गी हो, या फिर मुख्य फसलें हों
2: जी।
0: और 100 से आसपास, कुल मिलाकर 100 के आसपास कृषि जिनसों का कृषि समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए
2: जी। हक साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार एमएसपी की घोषणा करे? बहुत अच्छी बात है, खरीदने का भी इंतजाम करे।
3: बिल्कुल करना चाहिए, उसके बिना तो इसका मतलब ही नहीं रह जाता। फिर
2: क्या तरीका है एमएसपी का दायरा और बढ़ाने का?
3: जैसे हमने पहले भी बताया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। पहले तो आपको डिसीजन लेना होगा कि हर एक चीजों का, जब भी मार्केट से, मार्केट में उनका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो आपको खरीदना ही है, और खरीद के आप डिस्पोजल कैसे करेंगे उसका भी एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। राइस एंड व्हीट में सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि तीन चीजें साथ साथ हुआ, तो उस समय आपको ध्यान में होगा 65-66 में सरकार ने तीन बड़ी चीज की थी। एक तो कि CACP को क्रिएट करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की, फिर FCI क्रिएट करके उसको खरीद के स्टोरेज करके, फिर PDS का सिस्टम क्रिएट करके उसको डिस्पोज ऑफ करने की बात की, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी हुआ उस टाइम, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, राइस टाइप आया, तो एकाएक फिर रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, तो ये तीनों का फल था। और अभी भी वही ऑब्जेक्टिव है कि हम कई चीजें में अभी भी हम उत्पादन कम करते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारे अभी भी लो है, तो किसानों को इंसेंटिव्स देना है, और इंसेंटिव्स के साथ साथ तभी इंसेंटिव होगा कि पल्सेस का दाम तो आपने फिक्स कर दिया, पल्सेस को प्रोक्योर नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा नहीं होगा किसानों को। इसलिए हर एक, मैं तो कहूंगा हर एक फसलों का इसी तरह से इंसेंटिव देकर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। और प्रोडक्शन खाली बढ़ाने से नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ा के आपने मार्केट प्राइसेस कम कर दिया तो फिर किसानों को नुकसान हो जाएगा, तो उनका इनकम सपोर्ट
2: जी
3: के रूप में देना है, इनकम एक उनका इनकम कभी भी कम ना हो। किसी का इनकम कम नहीं होता, अब सरकारी नौकरों का सिर्फ किसानों का ही होता है। हम तो हरदम 10% 15% 17% करके DAV ले लेते हैं जब दाम बढ़ता है, लेकिन उनका जब चीजों का दाम बढ़ता है, इनपुट्स का दाम बढ़ता है, बाजार में ज्यादा दाम से खरीदना पड़ता है, तो उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण जब तक पॉलिसी बनेगी नहीं और एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वे में सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो किसानों की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। और दुनिया में हर जगह इस बात को जानते हैं और होता भी है, आपके अमेरिका में भी फसल नहीं बोने के लिए भी गवर्नमेंट
2: पैसा मिलता है,
3: पैसा मिलता है। तो यहाँ फसल इतना मेहनत करके फसल बो के भी उसका अगर राइट प्राइस नहीं मिलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे नीति में, नियत में और लोगों की मतलब सोच समाज में कमी है
2: जी।
3: तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो
2: मेरे ख्याल से कुछ समाधान भी इसमें जो है वो निकले हैं और लोग भी समझेंगे। और मुझे जो इसमें एक बात लगी कि देखिए किसान की आय बढ़ाने में किसान तो मेहनत कर ही रहा, सरकार भी MSP दे रही, थोड़ा जो खेती से अलग लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। हम महंगाई और उन सब का दोष देके अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। किसानों को दुनिया भर में बड़े देशों में जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया सब्सिडी दी जाती है, पैसा दिया जाता है खेती ना करने का भी, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम तो अन्नदाता मानते हैं, हम तो भगवान के तौर पर किसान को देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हमें समझनी होगी, उनके साथ जुड़ना होगा। और MSP एक मुद्दा है, उससे जुड़े और भी बहुत मुद्दे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई कि आपको दाम बढ़ा के मिले, एक अच्छी शुरुआत है कि 200 रुपए का बोनस भी मिला दलहन में, और उसमें जो किसान है उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन ये फायदा और बढ़े, इसका दायरा और बढ़े MSP का, ये कोशिश रहेगी। और उम्मीद करते हैं इस सब कोशिश में आप भी हमारे साथ हैं। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
4: तो किसान भाइयों, आजना इना कार्यक्रम ने जेम के अमुए शुरुआत में कह दिलो के आजनो कार्यक्रम है जो थोड़ा अलग थवा वालों है, तो बिल्कुल आजना यू कार्यक्रम काफी अलग हतु बाकी कार्यक्रम होती। आजनी इना कार्यक्रम में आप ये जानियो के किकम जो आप मूल्य है તેનું નિર્ધારણ કેમ થાય છે અને આપણું ભલી વાતી વાકેફ હે કે આપણા કિસાન ભાઈ કેટલા દુઃખી હે એની વાત થા કે જો આપણ જો મૂલ્ય હે અમારા કિસાન ભાઈ એટલી મહેનત કરે હે ખેતરોમાં અને તેનું મૂલ્ય હે આપણ ફસલોનો મૂલ્ય એટલો આપણને નહીં મળે હે તો કંઈ ને કંઈ કે આપણ કિસાન ભાઈએ હતાશ થઈ જાય હે નિરાશ થઈ જાય હે તો કંઈ ને કંઈ એ ખરી વાત હતી અને આપણ અમલ કરવાની જરૂરત હે આપણ એમની કે હાર માનવાની જરૂરત હે આપણ અમલ કરવાની જરૂરત હે અને અમલ કરીને યું દેખવું હે કે આપણથી કહાં પર ભૂલ થઈ રહી હે આપણ કહાં પર આપણ આપણી ખુદની સુધારની આવશ્યકતા હે કહાં અમુન હદરવાની જરૂરત હે તો એની વાતોને આપણે ધ્યાન રાખવાની જરૂરત હે કિસાન ભાઈઓ આજના એના કાર્યક્રમમાં બસ એટલું જ કેમ કે સમય થઈ ગયો હે તમારથી વિદા લેવાનો તમારથી ફેર કાલ મુલાકાત થાય એના સમય પર એટલે બણેલા રહો અમારી હાથે રેડિયો ટાંડિયા ભીલ 90.8 FM ની હાથે જાવવાની આવાજ પર.

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड लेके हम हाजिर हैं। आज जो कलाकार, जो टैलेंट, जो प्रतिभा हमारे साथ हैं वो हैं राज भाई। बाकी राज भाई अपने बारे में खुद बताएंगे तो बहुत मजा आएगा। राज भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के कलाकार की फैमिली को ज़रा बात कीजिए, अपने बारे में बताइए, कहाँ हैं आप, कौन हैं आप, क्या करते हैं आप?
1: अच्छा, मैं अभी अपने बारे में तो क्या ही बताऊं, बस गाता हूं और लोगों को सुनाता हूं। मेरा नाम राज है और मैं प्रॉपर उदयपुर राजस्थान से हूं, और लास्ट कुछ लगभग 20 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूं। अभी तो मतलब सीख रहा हूं और गा रहा हूं, बस चल रहा है ऐसे।
0: वेरी नाइस। तो प्रोफेशनली क्या करते हैं राज भाई आप?
1: प्रोफेशनली मैं देखिए आज के टाइम में तो मैं वैसे गाता भी हूँ, और शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि मैं प्रोफेशनली यहाँ पे आया था और शेप का काम मैंने शुरू किया था यहाँ पे 2007 में। कुछ लगभग 10 साल मैंने काम के साथ में, मुझे रुचि था शुरू से, मतलब बचपन से ही था कि मुझे सिंगर बनना है, मगर कुछ हालातों की वजह से मैं यहाँ पे शुरू किया था। तो शेप के साथ में मैंने धीरे धीरे ये सीखना शुरू किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखे और वोकल के लिए भी धीरे धीरे कड़ी जुड़ती गई, और कोई ना कोई आगे से आगे टीचर्स मिलते गए, और अभी आज के टाइम पे मैं प्रोफेशनली गाता भी हूँ और ये सब पार्टीज वगैरह के ये सब भी करता हूँ, कुकिंग का वगैरह भी सब, कैटरिंग का ही।
0: बहुत खूब, अमेजिंग। तो दोस्तों आपने जाना कि राज भाई दो कलाओं में पारंगत हैं, एक तो कुकिंग और दूसरा सिंगिंग। कितनी खूबसूरत बात है। और जाहिर सी बात है, राज भाई ने जब बताया कि वो उदयपुर को बिलोंग करते हैं तो मेरा एक इमोशनल टच उनसे हो जाता है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूं तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं राज भाई के ही गाए हुए इन गीतों से, और फिर इसके बाद राज भाई को और बेहतर समझने के लिए हम वापस आते हैं।
2: हेलो
3: हेलो
2: राज भाई।
3: हाँ भाई,
2: पार्टी का मूड है यार।
3: अच्छा, पार्टी का मूड है,

0: बहुत खूबसूरत राज भाई, चलिए आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, दो अलग अलग तरीके के स्किल्स लेकिन बहुत मैच करती हुई। हम लोग बहुत सारे लोग हमारे रेडियो स्टेशन को खाना पकाते हुए ही सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए आपके संगीत के बारे में क्योंकि उस वक्त हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता ना, हमें स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं होती है, बैकग्राउंड में रेडियो चलता रहता
1: है। मैं कई बार प्रैक्टिस खाना पकाते हुए कर लेता हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
1: कई बार कई शोज की रिहर्सल से पहले मैं खाना पकाते हुए ही सब प्रैक्टिस करके रिहर्सल में पहुंचता हूँ। कई बार कोई प्रोग्राम में पहुंचता हूँ तो ऐसे ही होता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो राज भाई मुझे ये बताइए, आपकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई, आपकी संगीत की जो जर्नी है उसके बारे में मुझे बताइए।
1: हाँ जी, देखिए सर, संगीत की जर्नी तो ऐसा है कि मैं एक मतलब फार्मर फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी किसान है और मैं मतलब छोटे से गांव से आता हूँ। उदयपुर में एक गांव है छोटा सा, वहां से। तो बचपन में मुझे यूं जब पिताजी बात करते थे, अभी 15 साल का हो गया, अभी तुझे कुछ ना कुछ काम करना है, अभी मतलब उस टाइम में ऐसा नहीं था कि नहीं ऐसा फुल एजुकेशन के बाद नहीं, बस अभी तो 8th 9th हो गया है, एजुकेशन बस हो गया, अभी उसके बाद में कुछ ना कुछ काम करना है। तो काम क्या करना है, तो मतलब बहुत बहुत लोग हमारे मतलब फैमिली से, रिलेटिव से, और बहुत लोग ये सब शेप लाइन में है। मेरे बड़े पापा मुंबई में मतलब शेप का काम करने वाले, वो साइड के मतलब वो पूरे प्रांत के फर्स्ट आदमी थे जो फर्स्ट टाइम कोई शेप का काम करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो मेरी भी शुरुआत के लिए मैं यहाँ पे आया, मगर मुझे इतना मालूम नहीं पड़ता था कि मतलब सिंगर बनने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता, मतलब वो गांव वाले जगहों में वो सब नहीं होता था उस टाइम पे। मगर मैं बोलता था, ऐसा कहीं सुनते थे ना किसी सिंगर को, तो ऐसा लगता था कि, तो मैं बोलता था नहीं मुझे तो सिंगर बनना है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने मतलब कुछ लोगों के पास में काम करते करते धीरे धीरे मतलब पता चला कि नहीं इसको तो सिंगिंग में इंटरेस्ट है और ये सब म्यूजिक में इंटरेस्ट है। तो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब गिटार सीखने के लिए थोड़ा दिलचस्पी किया था किसी के साथ में, मतलब शेयर किया कि मुझे गिटार सीखना है। तो उनका नाम है अनुराधा श्रीधर, उन्होंने मुझे उससे कॉन्टेक्ट करवाया था किसी से, मतलब जो गिटारिस्ट थे इंडियन आइडल वगैरह में, सब अच्छे रियलिटी शोज में बजाते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करवाया था। तो मैं उनके पास में गिटार सीखने गया, उनके लिए खाना भी बनाता था और उनसे गिटार भी सीखता था। फिर धीरे धीरे धीरे वोकल के लिए भी उनसे ही रेफरेंस मिल मिल के ऐसा जुड़ता गया। करीब 2015 से मैंने वोकल सीखना स्टार्ट किया, वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। और अभी मतलब सब कोई पार्टीज में मैंने खुद के एल्बम्स भी बनाए हैं कुछ ऐसे सिंगर्स के साथ में, और अभी सब लाइव शोज भी करता हूँ, सीख भी रहा हूँ। खैर सीखने की जर्नी तो ये फील्ड में कभी खत्म होती नहीं है,
0: कभी नहीं खत्म होती।
1: तो जी म्यूजिक तो मतलब जिंदगी खत्म हो जाती है मगर सीखना खत्म नहीं होता।
0: दैट इज राइट,
1: दोनों जगह भी यही है। आज खाने में कितनी चीजें, आज सीखते जाओ सीखते जाओ, कभी खत्म होगा नहीं, तो वही म्यूजिक में भी है।
0: राइट, बहुत खूब
1: जी जी।
0: तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई राज भाई की, खाना पकाने के साथ साथ दोनों ही कलाएं बहुत जबरदस्त होती हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के गाए हुए गीत सुनते हैं जिन्होंने हमारे लिए तैयार किए।